मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। शुभ प्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकलेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा

0: सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशकान से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। वंदना में लीजिए अब सुनिए बालाजी राजेंद्र सिंह व साथियों के स्वर में ये शब्द।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। वंदना में लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन।

0: ज्योतिका रॉय के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत स्वाध्याय विषय पर श्री जगदीश तोमर के विचार। वाचन राजेंद्र कुमार का है।
1: स्वाध्याय जीवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए प्राचीन काल में जब विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर गुरुकुल से विदा होता था तो आचार्य उसे अंतिम रूप से उपदिष्ट करते हुए कहते थे, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना आदि। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में प्राचीन आचार्यों का यह उपदेश औपचारिक रूप से ही सही दोहराया जाता है। इस परंपरा में स्वाध्याय की महत्ता स्पष्टतः प्रतिपादित है। उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से समृद्ध और संपन्न करता रहे, क्योंकि जब वो प्रज्ञावान होगा तो समाज भी विकासमान और समुन्नत होगा। हम अपने दैनंदिन जीवन में भी स्वाध्याय की उपयोगिता सहज अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विशिष्ट जन कितने ही व्यस्त हों, किंतु वे स्वाध्याय के लिए समय निकाल ही लेते हैं। कितने ही महानुभाव प्रातः अथवा रात्रि को शयन पूर्व कोई पुस्तक अवश्य पढ़ते हैं और उसमें प्रकट विचारों से स्वयं को लाभान्वित करते हैं। स्वाध्याय के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र का उल्लेख प्रासंगिक होगा। आजादी की लड़ाई के दिनों में एक किशोर ने नेताजी को एक पत्र लिखकर पूछा था कि वो स्वयं को देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस प्रकार तैयार करे। इस पर नेताजी ने उसे पत्र लिखकर बताया था कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ देश के लिए 1.5 घंटे का समय अवश्य दे। इस 1.5 घंटे में 15 मिनट योगासन या व्यायाम

0: 15 मिनट ध्यान और 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा था कि वो स्वाध्याय के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई ज्ञान संपन्न कराने वाली स्फूर्तिदायक एवं प्रेरणादायी पुस्तक का चयन करे। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद की पत्रावली और उनके भाषणों का संग्रह लेक्चर्स फ्रॉम कोडरम्बो टू अल्मोड़ा का चयन किया जा सकता है। स्वामी जी के उन भाषणों का हिंदी अनुवाद हो चुका है और अब वे भारत में विवेकानंद पुस्तक में उपलब्ध हैं। नेताजी स्वयं एक गंभीर अध्येता थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों से शक्ति एवं प्रेरणा प्राप्त की थी। इंडोनेशिया के स्वर्गीय राष्ट्रपति सुकर्णो अपने शयन से पूर्व स्वामी जी के शक्तिदायी विचारों का इंडोनेशियाई अनुवाद स्वरय विवेकानंद नियमित रूप से पढ़ा करते थे। महात्मा गांधी भी एक गंभीर स्वाध्यायी थे। गीता को तो अपनी माता कहते थे। उन्हें एक छोटी पुस्तक अनटू द लास्ट बड़ी प्रिय लगती थी। उसके लेखक रस्किन ने उसमें हर व्यक्ति, फिर वह वकील बैरिस्टर हो, अध्यापक आचार्य हो या मंत्री प्रशासनिक अधिकारी, सबको हाथ से काम करने की सलाह दी थी। इससे गांधी जी बड़े प्रभावित हुए। उससे उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा का मूल्यवान पाठ सीखा। हमारी अपनी भाषाओं में भरपूर जीवनोपयोगी साहित्य उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्री रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथों के अतिरिक्त प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे अनेक महान साहित्यकारों की कृतियां भी हमें ज्ञान संपन्न करती हैं। जीवन और जगत को देखने समझने के लिए वे हमारे अंतरचक्षु उन्मीलित करती हैं और हमारे समाज सापेक्ष जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वाध्याय विषय पर श्री जगदीश तोमर के विचार। वाचन राजेंद्र कुमार का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज की कृषि चर्चा। बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय के रूप में करें। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। बकरी के दूध में पौष्टिक गुण होने के साथ साथ लोह तत्व की अधिकता, प्रोटीन और वसा की मात्रा लगभग माँ के दूध के बराबर पाई जाती है। बकरी के दूध में वसा के कण छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे यह दूध गाय भैंस की तुलना में शीघ्र पाचनशील होता है। जो व्यक्ति दमा और खांसी रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए बकरी का दूध दवा का कार्य करता है। बकरी गाय और भैंस की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, इसलिए आवास व्यवस्था बनाने में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और कम पूंजी में व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है। बकरियों की यदि सही तरह देखभाल की जाए और उन्हें संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियां शीघ्र ही आय का स्रोत बन जाती हैं। बकरियों की प्रमुख रूप से दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जमुनापारी और बरवरी। जमुनापारी बकरियां अक्सर सफेद रंग के साथ साथ काले और कत्थई धब्बों के रूप में पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा और कान बड़े लटके हुए होते हैं। पिछले पुट्ठों पर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। ये बकरियां दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका औसत दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। बरवरी बकरियां प्रमुख रूप से दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं। बकरी खरीदते समय बकरी की उम्र लगभग 3 वर्ष हो, माथा लंबा मध्यम चौड़ाई वाला हो और माथे पर घने बाल न हो, आंखें बड़ी और चमकीली हो। जिस उद्देश्य से बकरी पालन करना चाहते हैं, सुविधा अनुसार नस्लों का चयन करना चाहिए और स्थिति के अनुसार जितनी बकरियों को सफलतापूर्वक पालन पोषण कर सकें, शुरुआत कम बकरियों से करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। बकरियों के लिए आवास व्यवस्था इस प्रकार बनानी चाहिए कि बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जानवरों से बचाव किया जा सके। साथ ही आवास ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी न ठहरता हो, क्योंकि बकरियां कीचड़ और गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करती। आवास ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर स्वस्थ हवा और प्रकाश का आवागमन होता रहे। बकरियों को स्थान का अभाव महसूस न हो। जहां पर बकरियों को रखते हैं वहां पर लगातार साफ सफाई करते रहें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें, जिससे किलनियां, मक्खी, मच्छर पैदा न होने पाए। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से बकरियों का बचाव करें। संतुलित और सुपाच्य आहार दें। स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं। अंतः

0: परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर दवाएं पिलाते रहना चाहिए। बकरियों में रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। यदि बकरियों की चाल में परिवर्तन दिखाई दे, भूख कम हो जाए, नथुने और थूथन सूखने लगे, नाड़ी की धड़कन कम या अधिक हो जाए, श्वसन गति में अंतर आ जाए, गोबर और मूत्र में परिवर्तन दिखाई दे, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कहीं भी और किसी भी मौसम में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। अगर बकरियों की सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आर्थिक आय का एक स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर सामयिक चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: राजाधिराज भगवान महाकाल अवन

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
2: राजाधिराज भगवान महाकाल अवन

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: ए भाई,
0: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें।
2: ये था सूचना पर कार्यक्रम दर्पण का आज का अंक। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः सङ्घर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तरभारतपर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
4: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
3: निरंतर क्रियमाणानाम् आलोचनानां प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रुपयाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ SRCC महाविद्यालयस्य पूर्वछात्रान् अतिविशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्ववित्तमन्त्री अरुणजेटली अपि SRCC महाविद्यालयस्य पूर्वछात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्वछात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालरूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपतिभवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,2000 अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालरूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्रकुमारजोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिपदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धारदलानि चिलिमे सुरंगे उद्धारकार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धारकार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वारपर्यन्तं सम्पर्कमार्गस्य निर्माणकार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तरपूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिमबंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्यप्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु, पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की

0: परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्यों को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। प्रातः 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगे तन्वी अर्जरिया। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा और प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दिन में 11:00 से इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें दिन 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 श्रोता आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। ये तीनों ही कार्यक्रम आज आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दिन में 2:00 श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। दिन में 2:50 पर आप पुनः आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। इस सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भजन संध्या। शाम 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भवती माँ का कैसा हो पोषण आहार। साथ ही चर्चा होगी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर।

ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता संतुलित पोषण आहार। सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव से निशा मोरे की ये बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। रात्रि 8 बजे से पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र का प्रसारण आप सुनेंगे, जिनमें रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों से कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम डगर विकास की। रात्रि 8:30 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती प्रदर्शित करती है जीडीपी में 7.8% की तिमाही वृद्धि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की इंदौर में मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को। इंदौर में कल मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर मेट्रो रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक चलेगी। इंदौर मेट्रो नागरिकों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी और रोजाना 70 से अधिक फेरे लगाएगी। मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेट्रो के दूसरे चरण के शुरू होने से आवागमन और सुगम होगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार होगा।
1: इंदौर के इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया कि जब मेट्रो इस रूट पर चली है और इसका जनता को जितना लाभ मिलने वाला है ये अच्छा याद रहेगा। एक बड़ी जनरेशन ऐसी है जो मेट्रो को सवारी के नाते से लाभ उठाएगी, उनका जीवन जो है उसमें ईज ऑफ लिविंग के नाते से सरल बनेगा, उनका समय बचेगा, पंक्चुअलिटी आएगी। अभी आने वाले 3 साल के बाद ये मेट्रो जो है जो अंडरग्राउंड मेट्रो के साथ जब जुड़ जाएगी तो जो शहर के पुराने बाजार हैं उनके साथ जुड़ेगा, रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ेगी, मेट्रो जो है एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा। इंदौर शहर के अधिकांश लोगों को इसके अप्रोच मिलेगी।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो का यह सुगम सफर कई कारणों से महत्वपूर्ण होगा जिससे यातायात में भी मदद होगी।
2: मनोहरलाल खट्टर साहब ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर का दूसरे चरण की परियोजना का प्रारंभ होना ये इंदौर के लिए नहीं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे आवागमन की दृष्टि से मेट्रो का सुगम सफर कई कारणों से बहुत महत्व करेगा। जब आबादी के बड़े यातायात के साधन में ये मदद होगी और आधुनिक तरीके से भी हमारे लिए गौरव की बात है। मेट्रो अब हमारे लिए ये रूटीन का सफर होने जा रही है।
0: गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक मंडल

0: की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश सहित 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में 15 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 6 शिक्षकों और शिक्षाविदों को भी सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में डॉ. अर्चना शुक्ला, शैलेंद्र प्रताप सिंह, संगीता यादव, प्रोफेसर सौरभ दत्ता, रीना गुप्ता और ज्योतिबाला राठौर शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों ने अपने नवाचारों, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। वहीं धार में भी 208 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 13 विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 10:30 बजे सिविल अस्पताल मंडीदीप पहुंचकर पौधरोपण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1 बजे ओबेदुल्लागंज के शासकीय सांदीपनी स्कूल पहुंचकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम तथा मेधावी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को कल 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए मात्र 56 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचरणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं भारत ने महिला एशिया कप के ग्रुप ए के इस मैच में पाकिस्तान को 18 ओवर 1 गेंद में सिर्फ 55 रन पर ही समेट दिया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय के इतिहास में पाकिस्तान का यह सबसे कम स्कोर था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल पक्षी भ्रमण एवं गिद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को गिद्धों की पहचान, उनकी जीवन शैली, भोजन, आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञ डॉ. संगीता राजगीर ने बताया कि गिद्ध प्रकृति के महत्वपूर्ण सफाईकर्मी हैं। वे मृत पशुओं के अवशेषों को शीघ्रता से समाप्त कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। श्योपुर का आवदा डैम अपनी 45 फीट की भराव क्षमता के बाद ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं विजयपुर में बारिश से क्वारी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। नदी पर बना पुल डूब जाने से विजयपुर टेटरा मार्ग बंद हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। सतना के चित्रकूट में हाल में आई बाढ़ के बाद अब मुख्य सड़कों और प्रभावित इलाकों में जमा गाद एवं मलबा हटाने के बाद आवागमन बहाल हो गया है। जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई, पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधा और भोजन तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्ट्रेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार और उनके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त कटनी जिले के शिकारू शेरू पारधी और शेरू सिंह को शहडोल जिले के ब्योहारी से कल गिरफ्तार किया। गोगा नवमी के अवसर पर कल छड़ियां निकालने की 128 वर्षों की परंपरा के तहत खंडवा और आगरमालवा में वाल्मीकि समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में कल जल और वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के संदर्भ में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तथा प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। शिवपुरी में मलेरिया विभाग और न्यायपालिका की संयुक्त टीमों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। अशोकनगर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल माय भारत के तहत 30वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हो गया है और रविन्द्रनाथ टैगोर।

विश्वविद्यालय में टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय एवं विश्वरंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय टैगोर नाट्य महोत्सव का शुभारंभ आज होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती को प्रदर्शित करती है GDP में 7.8% की तिमाही वृद्धि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की इंदौर में मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ साथी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक राकेश रोशन के द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ यादगार गीत। हम आपको बता दें कि आज ये अभिनेता अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्मों से कुछ यादगार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म घर घर की कहानी से, स्वर किशोर कुमार का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
5: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
4: मतलब?
5: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के।
6: अभिनीत फिल्मों से कुछ यादगार गीत आज उनके जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पराया धन से। स्वर एक बार फिर

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें, राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर सन 1949 को हुआ था। उनके पिता रोशन लाल नागरथ प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनकी माँ इरा मोइत्रा एक बंगाली गायिका थी। राकेश के परिवार में उनके छोटे भाई राजेश रोशन भी हैं, जो एक जाने माने संगीतकार हैं। बता दें कि जब राकेश जी का जन्म हुआ, उस समय उनके पिता म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राकेश ने जिंदगी के शुरुआती दिनों को लेकर कई सारे बातें बताई हैं, जिनमें कहा है कि उनका जन्म एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुस्न लाल भगत राम के गैराज में हुआ था। उन्होंने बताया है कि मेरे पिता दिल्ली से मुंबई आए थे और वहाँ गैराज में ही रहते थे, इसलिए मेरा जन्म उसी गैराज में हुआ था। जब मेरे पिता को काम मिलने लगा तो हम सांताक्रूज शिफ्ट हो गए और उनका बचपन वहीं पर बीता। राकेश रोशन जब 17 साल के थे, उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद परिवार को सहारा देने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई उनके हिंदी फिल्मों से में करियर की। आइए सुनते हैं इन्हीं की एक और अभिनीत फिल्म से ये गीत। फिल्म है देवता, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत गुलजार का है और संगीत आरडी बर्मन का।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म धनवान से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। गीत साहिर का है और संगीत निर्देशन हृदयनाथ मंगेशकर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म आंखों आंखों में से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने अभिनेता राकेश रोशन के द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्मों से कुछ यादगार गीत, आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत हमने लिया है फिल्म खट्टा मीठा से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, गीत गुलजार का और संगीत राजेश रोशन का।

0: कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी।

0: कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
6: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
7: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने

0: साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI। मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं, चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
6: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
5: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
6: Deshi defense manufacturing अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
5: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
6: हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
5: The Prime Minister highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector.

0: Suzuki launches new Baleno at base price of 6.09 lakhs, says a report in Financial Express. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month. Over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं तन्वी अर्जरिया। आप सुनेंगे इनके गाए लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार ढोलक पर हैं अब्दुल हनीफ खां और सारंगी पर साथ दे रहे हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खां। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तन्वी अर्जरिया के गाए लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये मल्हार।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं तन्वी अर्जरिया, आप सुन रहे हैं इनके गाए लोकगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये देवी गीत।

0: इस कजरी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम में कलाकार थी तन्वी अरजरिया, आप सुन रहे थे इनके गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 6 शिक्षकों और शिक्षाविदों को दिल्ली में सम्मानित किया। इंदौर में कल मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और नगरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल पक्षी भ्रमण एवं गिद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं विश्वरंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय टैगोर नाट्य महोत्सव का शुभारंभ आज होगा। प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्योपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। विजयपुर में बारिश से क्वारी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। और महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में कल भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए मात्र 56 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सुबह की चाय की चुस्कियों का साथ हो, रविवार की सुकून और राहत भरी सुबह का आगाज़ हो, साथ ही रिमझिम फुहारों से मौसम का खुशनुमा अंदाज हो, और आपका हमारा ऐसे में साथ हो तो बस फिर क्या बात हो। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो मित्र विशाल। जी हाँ दोस्तों, रविवार की राहत भरी सुबह और खुशनुमा मौसम दोनों ने मिलकर आज की सुबह को कुछ खास बना दिया है, और ऐसे में आपके कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत यदि अच्छी हो तो उस काम में हमारा मन भी खूब लगता है और सफलता का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। अब जैसा कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, रक्षाबंधन हमने मनाया, अभी विगत दिनों जन्माष्टमी का पर्व मनाया, और अब हम सभी को इंतज़ार है गणपति जी के आगमन का, यानी गणेश उत्सव की धूम के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। आप सब भी अपने अपने तरीके से इस उत्सव की तैयारी कर रहे होंगे, और उत्साह उमंग का जो रंग अब हम पर चढ़ चुका है वो आने वाले त्योहारों में और गहरा होता जाएगा, यानी ये त्यौहार हमें उत्साह से भर देंगे। लेकिन श्रोताओं, इस उत्साह उमंग में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान दें, और ये आज की ज़रूरत भी है। श्रोताओं, गणेश उत्सव पर हम जो भी गणेश प्रतिमा अपने घर लेकर आएं वो इको फ्रेंडली हो। आप हमारे कहने का मतलब समझ ही चुके होंगे, यानी ऐसी प्रतिमाएं हम अपने घर लाएं जिससे हमारे आसपास हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान न पहुंचे। गणेश उत्सव में प्लास्टर ऑफ पैरिस यानी POP से बनी हुई मूर्तियों को हम अपने घर ना लाएं, और साथ ही साथ उन मूर्तियों को जल स्रोतों में विसर्जित भी ना करें, क्योंकि ये विसर्जित होंगी ही नहीं। प्लास्टर ऑफ पैरिस से बने होने के कारण ये हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करेंगी, साथ ही साथ ये नष्ट भी नहीं होंगी। ऐसे में हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि आप जो भी प्रतिमा अपने घर लेकर आएं वो शुद्ध रूप से मिट्टी की बनी हो, और हो सके तो आप अपने घर पर भी ऐसी प्रतिमा बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश बहुत ही सरल हैं, वो अपने सभी भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और उनको बनाना बड़ा ही आसान है। हालांकि हमारे अंचल में, हमारे जो देश में कई जगह पर आजकल इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाने का एक कल्चर भी डेवलप हो रहा है, और ऐसे में यदि हम अपने घर पर ही इको फ्रेंडली यानी मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं तो उससे हमारा एक अलग ही जुड़ाव भी होगा, और साथ ही साथ उस प्रतिमा को जब हम विसर्जित करेंगे तो हमारा प्रदूषित वातावरण, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचा रहेगा। और हम तो यही कहेंगे कि जितनी छोटी मूर्ति आप बनाएं और उसे घर पर ही शुद्ध जल में विसर्जित करें, और उस मिट्टी के जल को आप अपने गमलों में रख सकते हैं ताकि जो गणेश प्रतिमा हैं, गणेश जी हैं, वो आपके घर में ही विद्यमान रहेंगे। वैसे भी हम तो यही कहेंगे कि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि का होना आवश्यक है, इसलिए गणेश प्रतिमा को अपने घर पर ही विसर्जित करें। हालांकि आज हम ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं, हमारी जो पुण्य सलिल नदियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, आज वो प्रदूषित हो रही हैं, और कारण वही है कि हम उनकी पूजा तो करते हैं और हमारे उनके प्रति आस्था विश्वास भी है, लेकिन जब बात उनको प्रदूषण से मुक्त रखने की होती है तो हम लापरवाह हो जाते हैं। हम अपनी इन पवित्र नदियों को, इन पावन नदियों को प्रदूषण से बचाने में कोई भी कार्य नहीं करते। हमारा ये कर्तव्य है कि इन नदियों को, इन पावन नदियों को हम प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि यदि ये नदियाँ प्रदूषित होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो भी प्रदूषित होती है। हमारी संस्कृति में हम नदियों को माँ कहते हैं, और यदि हम अपनी माँ को ही नुकसान पहुँचाएंगे तो ये कतई सही नहीं है।
इसलिए हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आने वाले त्योहारी सीज़न में जहाँ तक संभव हो अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं, नदियाँ हैं, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने में आप सहयोगी बने। और इसके लिए जो एक सार्थक जो प्रयास है वो यही है कि आप मिट्टी के गणेश अपने घर पर बनाएं और उन्हें घर पर ही विसर्जित करें। तो ये एक छोटी सी अपील है आप सभी के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले त्योहारी सीज़न में अपने जो भी पर्यावरण है उसको प्रदूषण मुक्त रखने में भी पूरा सहयोग देंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आपका जो आसपास का पर्यावरण है वो प्रदूषण मुक्त रह सकता है। पॉलिथीन या जो हमारे पूजा का जो वेस्ट निकलता है उन्हें उसे कतई जल स्रोतों में ना बहाएं, क्योंकि कई बार उन जो पूजा के जो हमारे अवशेष होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनमें पॉलिथीन भी हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो गलती नहीं है आसानी से। तो ऐसे में जो यदि वो पानी में जाती हैं तो उस पानी को प्रदूषित करती हैं। और हम जानते हैं कि हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो जल स्रोत हैं, उनमें एक जीवन है, मछलियां हैं, कछुए हैं और कई तरह के जीव उसमें पनपते हैं। यदि ये प्रदूषित करने वाले तत्व उनमें जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जल का इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, और जब वो प्रभावित होगा तो उसका सीधा असर आप पर भी दिखेगा। इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि आने वाले त्योहारी सीज़न में उत्साह उमंग हो लेकिन साथ ही साथ आपका पर्यावरण भी स्वच्छ हो। फिलहाल तो आज मौसम कुछ अलग ही अंदाज में है और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस मौसम को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हैं और इस रिमझिम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। और इस खुशनुमा मौसम में यदि कहीं घूमने का प्लान किया जाए तो फिर बात ही क्या है।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, यदि आज आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और संगीत में रुचि रखते हैं, तो आज शाम 6 बजे से सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला लक्ष्मीबाई कॉलोनी में आप जा सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उपशास्त्रीय गीत शैलियों पर केंद्रित रागायन की संगीत सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आज इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा। फिलहाल हम बात करते हैं अखबारों की, तो आज अखबार में एक बहुत ही खास खबर है आप सभी के लिए। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक मानचित्रों के महाद्वीप के वास्तविक क्षेत्रफल के ज़्यादा करीब दिखाने वाले करेक्ट द मैप प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। टोगो

की ओर से पेश और अफ्रीका संघ के समर्थन वाले इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 देश रहे हैं। अकेला विरोध संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है, जबकि एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान से दूरी बनाई है। भारत ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसके पक्ष में वोट दिया है। वैसे ये प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अब विभिन्न सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, स्कूल, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधिकारिक नक्शे में मौजूद मर्केटर प्रक्षेपण की जगह समान क्षेत्रफल वाले नक्शे को बढ़ावा दे सकेंगे। मोटे तौर पर दुनिया के नक्शे में अब भारत का नक्शा बड़ा दिखाई देगा। अफ्रीका के दर्जन अन्य देशों का नक्शा भी सही तरीके से सामने आएगा। ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि सदियों से चले आ रहे मर्केटर नक्शे पर दुनिया का चित्र सही तरीके से सामने नहीं आता है। श्रोताओं, भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, वो क्यों? वैसे इससे भारत पर कोई सीधा असर नहीं होगा। किसी देश का भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं बढ़ने जा रहा है। फर्क यह होगा कि समान क्षेत्रफल वाले नक्शे पर भारत और दक्षिण एशिया यूरोप में उत्तरी अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा वास्तविक अनुपात में दिखेंगे। कक्षाओं और समाचारों में देश का भौगोलिक वजन अब छोटा नहीं लगेगा। भारत ने साफ किया है कि यह ऐसे नक्शे का समर्थन करता है जो महाद्वीपों का आपसी आकार सही रखे। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रथम सचिव रघुपुरी ने बताया है कि नक्शा यह तय करते हैं कि समान भूगोल और दुनिया के पैमाने को कैसे समझना है, इसलिए भारत प्रस्ताव के इरादे का स्वागत करता है। उन्होंने जोड़ा है कि किसी एक कार्टोग्राफिक पद्धति का समर्थन नहीं समझा जाना चाहिए। अब आगे स्कूल की किताबें, सरकारी प्रस्तुतियाँ और डिजिटल मानचित्र कितनी जल्दी बदलते हैं, यह सदस्य देश और संस्थानों पर ही निर्भर करेगा। यानी अब भारत का नक्शा दुनिया के नक्शे पर कुछ बड़े आकार में दिखेगा, जबकि कुछ देश जो हमें पहले बड़े दिखाई देते थे, उनका आकार सही अनुपात में छोटा दिखाई देगा। तो ये प्रस्ताव अब पारित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत जिस तरह से इस नक्शे पर बड़ा दिखाई दे रहा है, हमारा देश पूरे विश्व में कुछ ऐसे कार्य करें कि वो सबसे बड़ा दिखाई दे। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम नागरिक जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से निभाएं। फिलहाल तो आप अपनी जो जिम्मेदारी है वो बस यही निभा सकते हैं कि आप अपने हर काम को सही तरीके से करें। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हर एक काम को ऐसे करें कि वो आपके आसपास, आपके पर्यावरण, आपके राष्ट्र के हित में हो।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अच्छी खबरों की, तो अच्छी एक और खबर है आप सभी के लिए। श्रोताओं, महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी है। इंडिया ने पाकिस्तान को 55 रन पर ऑल आउट किया। ये पाकिस्तान का फटाफट फॉर्मेट में सबसे छोटा स्कोर है। भारत ने 68 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह भारत की पाकिस्तान पर सबसे तेज जीत का रिकॉर्ड भी है। श्रोताओं, शेफाली वर्मा ने पारी की पहली गेंद पर 6 लगाया। वहीं T20 इंटरनेशनल में ऐसा 2 बार करने वाली वे पहली महिला बन चुकी हैं। श्री चरणी ने भारत के लिए सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 7 रन खर्च किए। तो इस जीत के साथ अब महिला विश्व कप में हमारी एक अच्छी शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ भारतीय हॉकी टीम ने भी एक अच्छी खबर हम सभी को दी है। भारत ने शनिवार को पूल ए के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया पर 14-0 की बड़ी जीत के साथ AHF जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के खिताब का बचाव करने के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। तो इन दोनों ही शानदार शुरुआतों के साथ अब उम्मीद करते हैं कि हमारी जो खेलों में हमारा जो परचम है वो यूं ही फहराएगा। फिलहाल कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे सूचना और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। सिंधी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तव्हां सभिनी खे मां मनोज सोनी पंजवाणीअ पारां सिक भरी नमस्ते। दोस्तों असां सिंधी समाज जी तिथियुनि जे हिसाब सां सावण अञा हली रहियो आहे, माना असां सिंधियुनि जो सावण अञा चालू आहे।

0: हिन में अचण वारा सिंधियुनि जा ॾिण वार असां मिली करे मल्हाए रहिया आहियूं। घणेई ॾिण आहिनि जेके असां सिंधियुनि जा ख़ासि करे आहिनि, पर साथियूं अॼुकल्ह जे दौर में घणेई सिंधी इन्हनि ॾिणनि वारनि खे विसरंदा था वञनि पिया। उन्हनि खे पूरी ॼाण ई कोन्हे त असांजा ई ॾिण छो मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं कंहिं रीत मल्हाया वेंदा आहिनि। साथियो, जेके अॼु जी नई टही आहे जा वर्किंग पर्सन आहिनि, जेके कम था कनि ॿाहिरि हलण वारी, हिंदी ऐं अंग्रेजी भाषा जे करे सिंधी ॿोलीअ खे विसारींदी था वञनि। एतिरे क़दुरु जो ॿाहिरि त छॾियो, घर में बि पंहिंजी सिंधी ॿोली नथा ॻाल्हाइनि। पंहिंजी सिंधी ॿोली बचाइणु असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे, छो जे इहा सिंधी ॿोली ई असां वटि विरासत जे रूप में आहे। इहा रुॻो असांजे ॻाल्हाइण ॿोलाइण जी भाषा कोन्हे, पिणु इहा असांजी धरोहर आहे। सिंधी ॿोली असांजे इतिहास, असांजे रवाजनि, असांजे लोकगीत, साहित्य ऐं परंपराउनि सां जुड़ियल आहे। तंहिं करे पंहिंजी हिन मिठड़ी ॿोलीअ खे बचायूं ऐं वधीक में वधीक पाण में सिंधी ॻाल्हायूं, पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी सेखारियूं।
1: बैंड ऐं बाजा

फिल्म अम्मी या मम्मी जो ही गीत गायो हो रमेश राजपाल, घनश्याम वाधवाणी ए सुषमा श्रेष्ठा। गीत संगीत कान मोतिहार। साथियों, सिंधियत जी धूम सा सराबोर हिन गीत का पो हाणे अग्या वधंदासे अज जी जाण पासे। शिक्षक दिवस। शिक्षक याने गुरु असांजे जीवन में घणो अहम किरदार अदा कंदा आहिनि। शिक्षक सिर्फ़ असांखे किताबी ज्ञान कोन ॾींदा आहिनि, पिण गॾोगॾु ॾींदा आहिनि जीवन जीअण जी सही राह, अॻियां वधण जी प्रेरणा ऐं जीवन में सफल थी करे सभिनी सां गॾिजी हलण जी प्रेरणा। ई असांखे गुरु ही ॾींदा आहिनि, असांजा शिक्षक ही ॾींदा आहिनि। हिन करे ई इन्हनि महान गुरुनि खे सम्मान ॾियण लाइ हर साल 5 सितंबर ते शिक्षक दिवस मल्हायो वेंदो आहे। इहो ॾींहुं भारत जे महान शिक्षक, दार्शनिक ऐं देश जे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे जनम ॾींहं जे मौके ते मल्हायो वेंदो आहे। असांजे गुरुनि जी ॾिनल शिक्षा असां पंहिंजे जीवन में अमल आणियूं ऐं उन ते हलूं। गुरु असांखां इहो ई चाहींदा आहिनि, असांखे सतगुरुनि जूं ॻाल्हियूं हमेशह यादि ईंदियूं आहिनि।

0: माण्हुनि खे सुठी सिहत ऐं संतुलित आहार जी अहमियत जे बारे में ॼाण ॾियणु ऐं सुजाॻी आणणु आहे। सुठो खाधो असांजी सिहत लाइ तमामु ज़रूरी आहे। अगरि असांजो खाधो पोषण सां भरपूर हूंदो त असांजो शरीर तंदुरुस्त ऐं मज़बूत बणिजंदो। असांजे रोज़ाना जे खाधे में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा पोषक तत्व हुजणु तमामु ज़रूरी आहिनि, जिन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट ऐं वसा शामिल आहे।
1: उमिरि कहिड़ी बि हुजे, पोषक आहार तमामु ज़रूरी आहे। साथियों, ॻाल्हि पई हले इन बारे में, ऐं इन ई बारे में अञा वधीक असां अॼु ॼाण हासिलु कंदासीं अॼु जे असांजे ख़ासि महिमान डॉक्टर प्रीति मोतियानी जी खां। सभिनी खां पहिरियों त डॉक्टर साहिबा, तव्हांजो खोड़ खोड़ स्वागत आहे। तव्हां पंहिंजो समय कढी करे असांजे स्टूडियो में आया।
2: जय झूलेलाल, नमस्कार। सभिनि श्रोताउनि खे मुंहिंजी तरफ़ सां वाधायूं ऐं प्यारु। अॼु पोषण आहार ते ॻाल्हाए करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी थिए पई।
1: डॉक्टर साहिबा, पोषण आहार असां इहो ॿुधंदा त आहियूं, पर इन खे सवले अखरनि में कीअं सम्झूं? आहार खाधो त सम्झ में अची वियो, पर उन में जेके पोषण आहिनि या पोषक तत्व आहिनि उनखे कीअं सम्झूं?
2: जी, ॾाढो सुठो सवालु पुछियो तव्हां। पोषण आहार मतिलबु हिकु बैलेंस डाइट खे चइबो आहे। इन जो मतिलबु सिर्फ़ु पेट भरणु न आहे, इन जो असली मतिलबु आहे असांजी सही थाली और असांजी सही प्लेट, जंहिंमें कि सभु हुजे जेको असांजे शरीर खे ताक़त ॾिए, असांखे बीमारियुनि सां बचाए ऐं असांजे शरीर जो विकास करे। असांजी थाली में पंज शयूं ज़रूरु हुजणु घुरिजनि। पहिरियों नंबर ते ईंदो आहे अनाज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जीअं कणिक, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, जेके असांजे शरीर खे ताक़त ॾींदा आहिनि। ॿिए नंबर ते अचे थो प्रोटीन, जीअं कि दालियूं, मुङ, चणा, राजमा, अंडा, पनीर, जेकी असांजे मसल्स जी ग्रोथ लाइ ज़रूरी आहिनि। टे नंबर ते ईंदो आहे साग भाॼियूं, साई भाॼियूं, फल, जेके असांजे शरीर खे विटामिन्स और मिनरल्स ॾींदा आहिनि। चौथे नंबर ते ईंदो आहे दूध, दही, पनीर, जेके असांजे शरीर में कैल्शियम जी मात्रा पूरी कंदा आहिनि और असांजी हॾियुनि जी मज़बूती लाइ ज़रूरी आहिनि। पंजे नंबर ते अचे थो फैट। फैट ॿ तरीक़े जा हूंदा आहिनि, हिकु हूंदो आहे गुड फैट, हिकु हूंदो आहे ट्रांस फैट। जेके तरल पदार्थ हूंदा आहिनि मार्केट में, तेल खे जेको बार बार गरम कंदा आहिनि, उनमें ट्रांस फैट वधी वेंदो आहे, जंहिंसां हार्ट अटैक जी बीमारियूं वधीक ॾिसण में थी मिलनि। इन करे गुड फैट थोरी सी मात्रा में अगरि असां घी या तेल फुल्के ते मथां लॻाए था खाऊं त उहो असांजे शरीर खे ऊर्जा ॾींदो आहे।
1: डॉक्टर साहिबु, तव्हां ॿुधाई हिकु थाली जंहिंमें पंज शयूं तव्हां ॿुधायूं, उहे हुजणु ज़रूरी आहिनि। सुठो खाधो हुजे ऐं जेके फल वग़ैरह जा तव्हां ॾुधु ॾेई ॿुधाया, इहे सभु उन में हुजणु खपनि। पर अॼुकल्ह इन थालीअ ते ध्यानु तमामु घटि आहे ऐं माण्हुनि जो ध्यानु आहे ॿाहिरां जे खाधे ते। वॾा हुजनि, नंढा हुजनि, सभिनी खे ॿाहिरियों खाधो खपे। जो चवंदा आहिनि न सिंधियुनि में, चटे जी बीमारी थी पई आहे, जंक फूड वग़ैरह। हालांकि सभिनी खे ख़बर आहे शरीर लाइ हानिकारक आहिनि, पर उन खां पोइ बि उन्हनि खे इहो खपे। त थोरो तव्हां असांजे श्रोताउनि खे ॿुधायो त इन्हनि सां कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान आहिनि।
2: जी, इहा ॾाढी सोचण वारी ॻाल्हि आहे। जंक फूड जीअं कि ॿाहिरियों खाधो, जीअं समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, अॼुकल्ह ॿारनि खे इहो वधीक पसंदि ईंदो आहे, छो कि इहो सिर्फ़ु असांखे टेस्ट ॾींदो आहे। असांजो पेट त भरे छॾींदो आहे, पर असांजे शरीर खे सही पोषण न ॾींदो आहे।
1: बिल्कुलु,
2: सिर्फ़ु असांखे पेट ई न भरिणो आहे, असांखे उहे शयूं खाइणियूं आहिनि जंहिंसां असांजे शरीर खे कुझु ताक़त मिले। इन सां ॿारनि में, जेके अॼुकल्ह जंक फूड हलनि था, इन सां ॿारनि में अनीमिया, यानी कि खून जी कमी, इहो ॾाढो ॾिसण में थो मिले। सुस्ती थियणु, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, इन्हनि सभिनि जी कमी थी वेंदी आहे। वॾनि में, ॿुढनि में मोटापो, शुगर जी बीमारी, BP जी बीमारी ॾाढी ॾिसण में मिलंदी आहे। असांखे स्वादु ऐं सिहत, इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि मां सिहत खे पहिरियों चुनणो पवंदो, न कि स्वादु खे।
1: डॉक्टर साहिबा, तव्हां हींअर ॻाल्हि कई एनीमिया जी। डायबिटीज़ ऐं एनीमिया अहिड़ी बीमारी आहे, हालांकि सभिनी समाजनि में आहे, पर असांजे सिंधी समाज में असां ॾिसंदा आहियूं त ख़ासि करे इहे ॿई बीमारियूं वधीक आहिनि। ईअं छो?
2: जी, इन्हनि ॿिन्हिनि बीमारियुनि जेके आहिनि, इन जो वधण जो कारण हिकु ई आहे कि असांजो खान पान सही कान्हे। ॿारनि खे अॼुकल्ह ॾिसो त जंक फूड, कुरकुरे, चिप्स, बुख थी लॻे त पहिरियों जे ज़माने में असां नंढा हूंदा हुआसीं त मूंखे यादि आहे मम्मी बुख लॻंदी त कुझु बादाम ॾेई छॾींदा, अखरोट ॾेई छॾींदा, मूंगफली ॾेई छॾींदा खाइण लाइ। पर अॼुकल्ह ॿारनि खे ॾिसण थो मिले कि ठीकु है बेटा, 10 रुपए लो, पैकेट ले आओ।
1: त सवलो थी पियो आहे।
2: हाँ, सवलो थी पियो आहे, हर जॻह अवेलेबल बि आहिनि, दुकानूं खुलियूं पई वन, त ॿारनि खे बि टेस्ट थो अचे इहो सभु खाइण में। त इन जी वजह सां अनीमिया ॾाढो ॾिसण में थो मिले, छोकी इहे सभु जेके जंक फूड हूंदा आहिनि कुझु ॾींदा त न आहिनि, शरीर खे सिर्फ़ु पेट भरण लाइ कमु ईंदा आहिनि। ॿियो

0: डायबिटीज़ उन जो बि इहो ई कारणु आहे कि वेठे वेठे अॼुकल्ह सभु
1: जी
0: अवेलेबल
1: हाँ
0: आहे, हलणो आहे कान, दुकान ताईं वञण जी बि महिनत न कंदा आहियूं, बसि जीअं ऑडर कयो घर अची थो वञे 10 मिंटे
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल
0: तो हिन सां डायबिटीज़ ॾाढो यंग पेशंट में बि अॼुकल्ह, मतिलबु नंढे नंढे ॿारनि में 18 खां 20 साल जी उमिरि में बि डायबिटीज़ ॾिसण में थो मिले। इन्हनि ॿिन्हिनि मेन बीमारियुनि खां बचण लाइ हिकु ई शइ मां चवंदमि कि पंहिंजी खुराक सही कयो। शुगर जे मरीजनि खे मां चवंदमि कि फाइबर्स पंहिंजी डाइट में वधायो। फाइबर्स यानि कि जीअं छिलके वारी दालियूं, कणिक ऐं चणे जो मिक्स मल्टीग्रेन अटो खाओ, रागीअ जो अटो खाओ, रोज़ रोज़ गेहूं जो अटो न खाई करे करे ओट्स, रागी, मल्टीग्रेन अटो खाओ, सलाद वधीक खाओ, पाणी घटि में घटि 7 खां 8 गिलास पाणी पीओ, मिठो आइटम जीअं हूंदो आहे रिफाइंड, जंहिंमें मैदो आहे, शुगर आहे, गुड़, शहद, इहो सभु खाइण खां बचो। और डायबिटीज़ वारे पेशेंट खे स्पेशली चवंदसि कि नंढे नंढे अंतराल ते खाइनि, हिकु बार वेही करे पूरी थाली भरे न खाई करे, नंढे नंढे, हा,
1: टे
0: टे चार चार कलाक में थोरो थोरो खाइनि, ताकी शुगर उन्हनि जी हिकदमि न वधे। फल में सेव, पपीतो, अमरूद, इहे सभु खाई था सघनि। और अनीमिया जी बीमारी लाइ मेनली जेको हूंदो आहे आयरन जी कमी थी वेंदी आहे।
1: अच्छा।
0: त आयरन सां भरपूर तव्हांखे खुराक खाइणी आहे, जीअं पालक थी वई, मेथी थी वई, गुड़, चणा, चुकंदर, मूंग, इन सभिनि जो सेवन करणु खपे। और आयरन जे अलावा असांखे विटामिन सी जो बि सेवन करणु खपे, जीअं नींबू आहे, आंवला आहे, इहे आयरन खे असांजे शरीर में, खून में जल्दी पहुचाईंदा आहिनि। रोटी खां पोइ अक्सर असां ॾिसंदा आहियूं कि माण्हू चांहि कॉफ़ी पीअंदा आहिनि, त रोटी खां पोइ चांहि कॉफ़ी पीअण खां बचणु खपे, छो की आयरन जी मात्रा खे खून में घुलण खे रोकंदा आहिनि।
1: अच्छा,
0: त विटामिन सी जो सेवन वधायो, चांहि कॉफ़ी जो कम कयो।
1: ओके
0: जी,
1: हालांकि चांहि कॉफ़ी त उहा ई घटि में घटि पीअणु खपे, पर खाधे खां पोइ बिल्कुलु हिन खे अवॉइड करणु खपे।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, असांजे घर जा जेके नंढड़ा ॿार आहिनि या जेके वधंदड़ ॿार आहिनि, टीनेजर, उन्हनि जे लाइ खाधे में कहिड़ा कहिड़ा पोषक तत्व हुअणु तमामु ज़रूरी आहिनि?
0: जी, ॾाढो सुठो सुवालु पुछियो तव्हां। ॿार असांजो भविष्य आहिनि, त उन्हनि जी ग्रोथ लाइ ज़रूरी आहे कि कुझु खुराक में अहिड़ी शयूं शामिलु कयूं जंहिंसां उन्हनि खे पोषण मिले, जीअं कि दूध, दही, पनीर उन्हनि खे डेली खुराक में शामिलु करणु खपे, जंहिंसां उन्हनि जो विकास बि थिए और उन्हनि खे विटामिन्स जी कमी बि पूरी थिए। अॼुकल्ह ॿार भाॼियूं बिल्कुलु न खाईंदा आहिनि, असांखे उनखे डेली भाॼियूं खाइण सेखारणु खपनि। पालक, मेथी, जेतिरी बि सायूं भाॼियूं आहिनि जंहिंमें पोषण थींदो आहे, उहो खाराइणु खपे। सुखा मेवा जीअं बादाम थी वियो, अखरोट, खजूर, इहे सभु चिप्स, कुरकुरे खां घणा सुठा आहिनि। गुड़ उन्हनि खे डेली ॾियणु खपे, रोटी खां पोइ थोरो गुड़ खाओ, उन्हनि खे आदत में विझणु खपे, ताकी उन्हनि में खून जी कमी, अनीमिया न थिए।
1: जी, ॿारनि जी त तव्हां ॿुधाई, ऐं घर में जेके जाइफ़ाऊं आहिनि त उन्हनि जाइफ़ाउनि खे पंहिंजे पोषक तत्वनि जो कीअं ध्यानु रखणु खपे?
0: हीअ असांजे समाज में ॾाढी वॾी समस्या आहे कि घर जूं औरतूं सभिनि खां आख़िर में रोटी खाईंदियूं आहिनि।
1: हाँ,
0: सभिनि खे खाराए, सभिनि जो पेट भरे, आख़िर में जेको बचंदो आहे उहो खाईंदियूं आहिनि, जंहिंसां उन्हनि जी खुराक बि घटि थी वेंदी आहे और पोषण युक्त तत्व बि न मिली पाईंदा आहिनि उन्हनि खे। त असांखे उन्हनि जो वधीक ध्यानु रखणु खपे, छो की जेकर घर जी औरत अगरि तंदुरुस्त आहे त पूरे घर जी सिहत सुठी रहंदी। औरतुनि लाइ मां इहो स्पेशली चवंदसि कि उन्हनि खे आयरन और कैल्शियम, इन्हनि सां भरपूर मात्रा में खुराक वठणु खपे, जंहिंमें आयरन और कैल्शियम जी मात्रा वधीक हुजे, जीअं कि गुड़, साई भाॼियूं, तिल, साबुत, मखाना, फल वग़ैरह, इहे वधीक सेवन में करणु खपनि। जेके गर्भवती महिलाऊं आहिनि या जेके ॿारनि खे दूध पीआरींदियूं आहिनि, उन्हनि खे ख़ासि पोषण जो ध्यानु रखणु खपे, छो की अगरि उहे स्वस्थ रहंदियूं त ॿार जी ग्रोथ बि सुठी थींदी।
1: हालांकि जाइफ़ू त घणे क़दुरु पंहिंजो ध्यानु रखी वठंदियूं आहिनि, छो जे घर में आहिनि ऐं उन्हनि खे जानकारी बि आहे त हीअ हीअ शयूं असांजे लाइ फ़ाइदे वारियूं आहिनि, पर सभिनी खां वधीक जेका दिक़त थींदी आहे उहा थींदी आहे घर जे वॾनि में, छो जे हिकु उमिरि खां पोइ उन्हनि खे खाइण में बि तमामु घटि शयूं वणंदियूं आहिनि, या त वरी कुझु वॾनि खे वधीक खाइण जो बि लॻंदो आहे मुंहं जे चस्के जो, त उन्हनि खे पंहिंजी सिहत लाइ छा छा खाधे जो ध्यानु रखणु खपे?
0: जी, ॿार चवंदा आहिनि ॿार और वॾा ॿई हिकु समान आहिनि। उमिरि वधण सां छा थींदो आहे, असांजी पाचन शक्ति कमज़ोरु थी वेंदी आहे, शरीर में पचाइण जेको रोटी आहे उहो जल्दी न पची पाईंदी आहे, और उमिरि सां गॾु असांजी हॾियूं बि कमज़ोरु थींदी वेंदियूं आहिनि।
1: जी जी,
0: त वॾनि खे थोरो सो अहिड़ो रोटी खाइणु खपे जेकी हल्की बि हुजे और पोषण युक्त बि हुजे, जीअं की दाल, खिचड़ी, दलिया थी वियो, सूप थी वियो, उबारियल भाॼियूं खाइणु खपनि जेके जल्दी पची वञनि। वॾनि खे प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स मतिलबु जीअं छाछ हूंदी आहे और नारियल पाणी आहे, जंहिंमें सुठा बैक्टीरिया हूंदा आहिनि जेके उन्हनि जी पेट जी शक्ति खे वधाईंदा आहिनि, उन्हनि जी इम्यूनिटी पावर वधाईंदा आहिनि, जंहिंसां उहे उन्हनि खे इन्फेक्शन जो रिस्क घटि थींदो आहे। त इहे शयूं वधीक वठणु खपनि। पाणी उन्हनि खे वधीक पीअणु खपे, घटि में घटि ॾींहं में 8 खां 10 ग्लास उन्हनि खे पाणी पीअणु खपे, जीअं जंहिंसां उन्हनि जो डाइजेशन सुठो थिए। नमक और शुगर जी मात्रा घटि में घटि रखणु खपे। रोटी में जेतिरो भाॼी में लूणु पैदल आहे, बाक़ी मथां वेझी लूणु न खाइणु खपे, छो की उहो मथां जेको लूणु हूंदो आहे उहो सोडियम वधाईंदो आहे और जंहिंसां बीपी जी बीमारी जल्दी थी वेंदी आहे। त शुगर और नमक जी मात्रा नियंत्रण में रखें। वॾनि में अक्सर ॾिसणु मिलंदो आहे विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन डी, इहो बि ॾाढो डिफिशंसी थी मिले, त अगरि इन जी ॾाढी कमी आहे त उहे टेस्ट कराए डॉक्टर जी सलाह सां गोरियूं बि वठी था सघनि। हालांकि अॼुकल्ह इहो नंढनि में बि मिले थी विटामिन जी कमी, त सभिनि खे विटामिन D, B12 जी कमी लाइ मां चवंदसि की डेरी प्रोडक्ट्स जेके बि हूंदा आहिनि, जीअं दही थी वियो, पनीर थी वियो, दूध थी वियो, इन्हनि जी मात्रा डेली खुराक में शामिलु करणु खपे।
1: जी ज़रूरु, छो जे इहे पोषक तत्व असां लाइ ज़रूरी आहिनि, उमिरि कहिड़ी बि हुजे, इहे ख़ासि करे शयूं जेके आहिनि सभिनी लाइ ज़रूरी आहिनि।
0: जी
1: डॉक्टर साहिबु, जीअं तव्हां चयो नारियल पाणी या ॿियनि फलनि जी ॻाल्हि कई, त ज़रूरी आहे त पोषक तत्व असांखे महांगे फलनि मां ई मिलनि?
0: जी बिल्कुलु न। इहो हिकु ॾाढो वॾो वहम आहे की असां कीवी खाईंदासीं, एवोकेडो खाईंदासीं त इन्हनि सां ई असांखे तंदुरुस्ती मिलनि, त इहो हिकु ॾाढो वॾो वहम आहे। असां कहिड़ो बि सीज़नल फ्रूट खाई था सघूं, जेको मौसमी फ्रूट आहे, जीअं पंहिंजो जैतून आहे, असांजो पपैयो आहे, सूफ़ आहे, इहे बि ॾाढा वधीक पोषणदा फल आहिनि, जेके असांजी इम्यूनिटी बि वधाईंदा आहिनि और बीमारी सां लड़ण जी शक्ति वधाईंदा आहिनि। त ज़रूरी न आहे की तव्हां महांगा फल खाओ। असांजो भिगियल चणा थी विया, मूंग थी विया, इहे बि ॾाढो पोषण ॾींदा आहिनि, इन्हनि में बि ॾाढो प्रोटीन जी मात्रा थींदी आहे। त नॉर्मल सीज़नल जेके बि फ्रूट आहिनि उहे खाइणु खपनि।
1: वॾा हुजनि, नंढा हुजनि, चाहे जाइफ़ू हुजनि, हर माण्हूअ खे पंहिंजे खाधे में पोषक तत्वनि जो कीअं ध्यानु रखणु खपे, तमामु सवले अखरनि में तव्हां असांजे श्रोताउनि खे ॿुधायो। ऐं मां चाहींदुसि त आख़िरीअ में असांजे श्रोताउनि खे तव्हां इन ई ॻाल्हि सां जुड़ियल कोई संदेश ॾियणु चाहियो त?
0: जी मां बसि इहो ई चवणु चाहींदमि की तव्हां घर जो ठहियलु सुठो ताज़ो खुराक खाओ डेली। पंहिंजी थालीअ में ॾाढा सारा रंग भरियो, जीअं ॻाढ़ो रंग टमाटर सां, गाजर सां, हरो रंग पालक सायूं भाॼियुनि सां भरो, सफ़ेद रंग दही दूध छाछ सां भरो और पीलो रंग दाल वग़ैरह सां भरो। पाणी ॾाढो सुठो पीओ, घटि में घटि 8-10 ग्लास डेली पाणी पीओ। तेल ऐं मिठो खाइण खां बचो, छोकी सिहतमंद रहंदव त ख़ुशि रहंदव।
1: महिरबानी डॉक्टर प्रीति जी, तमामु तमामु सुहिणी ॼाण असांजे श्रोताउनि खे ॾिनी। श्रोताऊं, तव्हां बि अॼु जेका ॼाण डॉक्टर साहिब खां ॿुधी, उमेद आहे त तव्हां ज़रूरु उन ते अमल कंदा ऐं जंहिं तरीक़े सां उन्हनि जंहिं रीत सां ॿुधाइनि उन तरीक़े सां खाधे में सुधार ज़रूरु आणींदा ऐं पंहिंजी सिहत सुठी बणाईंदा। महिरबानी डॉक्टर प्रीति मोतियाणी जी।
0: जी तव्हांजो ॾाढो धन्यवाद।
1: हिन ॻाल्हि ॿोल खां पोइ हाणे हिकिड़ी नंढड़ी ॼाण अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस जे बारे में। इहो ॾींहुं हर साल 10 सितंबर ते मनायो वेंदो आहे। साथियों, इन ॾींहं खे मनाइण जे पुठियां जेको ख़ासि मक़सदु आहे सो आहे आत्महत्या करण जी दर खे घटाइण। जेके माण्हू आत्महत्या कनि था उन्हनि खे रोकणु, उन्हनि खे समुझाइण, पंहिंजे आसे पासे वारनि में अगरि पाण खे अहिड़ा कोई लक्षण ॾिसण था अचनि, जीअं त कोई माण्हू डिप्रेशन में आहे, कोई परेशान आहे, कंहिं समस्या सां जूझी रहियो आहे, त असां उनखे हिमत ॾियूं, उनजो साथ ॾियूं, ॿियो कुझु नथा करे सघूं त घटि में घटि उनखे हिमथायूं, उनखे जीअण लाइ प्रेरित कयूं, छो जे जीवन तमामु अनमोल आहे, क़ीमती आहे। इन क़ीमती जीवन खे असां ईअं ई पंहिंजे हथ सां जाया न कयूं। इन करे ई इहा सुजाॻी आणण जे लाइ ई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस मनायो वेंदो आहे। साथियों, असांजा साथी भले असां खां रुठल हुजनि, किथे बि हुजनि, पर हयात हुजनि, असांजी इहा ई कामना रहंदी आहे।

मास्टर चंद्र जे गायल हिन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो समय बि पूरो थी रहियो आहे। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे। वरी मिलंदासीं, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहाण, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे खरगोन जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। खरगोन जिले में नए कपास सीजन का मुहूर्त कल मंडी में होने जा रहा है। खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी नीलामी शुरू होगी। कपास यानी सफेद सोने की आवक और नीलामी से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बाजार में रौनक आती है। मंडी सचिव शर्मिला निमामा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कपास मंडी में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपनी उपज लेकर आएं और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का लाभ लें। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर खरगोन में पिछले दिनों कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले के 28 मंडलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मिशन बेंचमार्क के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए बेंच और डेस्क उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जनभागीदारी और समाज के सहयोग से स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ सेवा कार्य से जुड़े लोग आगे आ रहे हैं। खरगोन जिले में पिछले दिनों न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, फुटपाथ व्यवस्था, हेलमेट के उपयोग और स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता पर जोर दिया गया। खरगोन जिला प्रदेश के 90 फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने आकाशवाणी को बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन, बेहतर सड़क व्यवस्था और लोगों में जागरूकता जरूरी है। खरगोन जिले में सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 3 सितंबर को बामंदा कसरावत के बाद अब 11 सितंबर को ऊन, 18 सितंबर को महेश्वर तथा 25 सितंबर को दूधगांव और बड़वा के बेड़िया में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और ITI उत्तीर्ण युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से ई क्लास की शुरुआत की गई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कलेक्टर गुरु प्रसाद ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से ई क्लास का शुभारंभ किया। जिले के करीब 80 विद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय कंट्रोल रूम और स्टूडियो से अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों को लाइव कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 वरिष्ठ नागरिक 15 से 18 सितंबर तक मुंबई स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा प्रभारी ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। खरगोन जिले की विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी को लेकर भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की सचिव रंजना चोपड़ा ने केरियाखेड़ी और महेश्वर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बुनकरों, वन अधिकार पट्टाधारियों, स्वसहायता समूहों और विद्यार्थियों से संवाद किया। माहेश्वरी साड़ी, ग्रामीण पर्यटन, आदि सेवा केंद्र और होम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सचिव रंजना चोपड़ा ने बताया कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़कर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने पिछले दिनों खरगोन जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। छात्रवृत्ति, आवास, छात्रावासों में भोजन, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के पानवा में निजी औद्योगिक इकाई का बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस परियोजना में करीब 106 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। महाप्रबंधक धनंजय शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से सहयोग कर रहा है। खरगोन जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच के लिए एकत्र दूध के नमूनों की रैपिड जांच में मिलावट नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी HL अवस्या ने बताया कि दुग्ध और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए नियमित जांच जारी रहेगी। और अंत में बात जिले के झिरन्या के एकलव विद्यालय की छात्रा अनुराधा की, जिसने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वो सफलता हासिल की है जो कई बालिकाओं के लिए प्रेरणा है। अनुराधा का चयन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में MBBS पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। अनुराधा अपने गांव से डॉक्टर बनने वाली पहली छात्रा बनने जा रही हैं। खरगोन जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका मित्र विशाल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चमेली से। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत निर्देशन संदेश शैंडिल्य का और स्वर है सुनिधि चौहान का। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार और इनके

के मित्रजन, कोलम रोड हर गोविंद नगर नवाशहर से अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिखा, प्रतिशा और मैक्स। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म चमेली से इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की पसंद पर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साविर राही मेराज जहां, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप, संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, चांदनी, दीपक, उर्मिला देवी, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा और इनके मित्रजन, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बागी से इस गीत को। स्वर मोनाली ठाकुर का है, गीत कुमार का और संगीत मीत ब्रदर्स का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
5: सच?
4: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी एचआईवी की जांच भी करवाना, क्योंकि एचआईवी का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
5: डॉक्टर, अगर एचआईवी पॉजिटिव आए
4: तो बिना कोई देरी किए एआरटी केंद्र से एआरटी ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
5: डॉक्टर, हम आज ही जाकर एचआईवी की जांच कराते हैं।
4: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म ड्रीम गर्ल से। आवाजें हैं मीत ब्रदर्स की, बोल शब्बीर अहमद के, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर मठाड़ू, ये सुनना चाहते हैं मोगा पंजाब से। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, सौ जगुताई राजे जाधव, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, साथ ही समस्त राजे जाधव और देशमुख परिवार। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोता मित्रों की पसंद पर फिल्म ड्रीम गर्ल से इस गीत को।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हाफ गर्ल फ्रेंड से। आवाज़ें हैं ऐश किंग और शाशा तिरुपति की। बोल अराफात महमूद के हैं और संगीत निर्देशन तनिष्क बागची का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और इनके मम्मी पापा, मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगुताई राजे यादव, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा घोड़के, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से इस गीत को।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की। संगीत निर्देशन प्रीतम का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन और

सल्थना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन और इनके साथी। बागरी मोहल्ला रटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी। लाल माता सुदामा नगर अटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती, राशि माधुरी, किरण, अनुराग, मोहन और मेघा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोता मित्रों की पसंद पर इस गीत को।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सनम रे से। आवाज़ें हैं मिथुन और अनिरुद्ध भोला की। गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुड़ेकर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवालकर, निर्मला विशाल नालकर। ग्राम बड़ाघर निम्नावाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जलिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। खांडवी बुलढाड़ा से दीपावली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े। थिलौड़ी अमरावती से सुनैन पवन भोंडे, तनुज पवन भोंडे। शिवाजीनगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिराताई और छकुली बाई खोबरखेड़े। सहावर रोड गंज झुंझवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सनम रे से इस गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म 1942 लव स्टोरी से। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत राहुल देव वर्मन का और आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र। स्थान मुक्काम पोस्ट फुलचिंचोली, तालुका पंडरपुर से जाकिल मुलाणी, सुमैया, सोवान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर और इनके चाचा चाची, साथी पूरा मुलाणी परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इंचल करंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और इनके मित्रजन, लुम्बिनी नगर अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण और मीरा बंसोड़, गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान और शमशुल यासीन। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म 1942 लव स्टोरी से इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ताल से, आवाज़ें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत A.R. रहमान का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम, गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सरोज, शशि कुमार गोड़िया, भावना, नीरज, अर्चना, आराध्या, श्रेया और देवांशु। मगनपुर झारखंड से अब्बास आला, अमजद अली, लाडली निशा और इनके सभी मित्रजन। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके मित्रजन। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके साथी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राजा एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म ताल से इस गीत को।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। अब से लेकर सभा की समाप्ति तक शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगे। पहले सुनिए इस घंटे की
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रविवार से दुबई के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत संयुक्त अरब अमीरात UAE के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों और राहत तथा बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों से प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने तक सजग और सावधान रहने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार और उसके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त कटनी जिले के शिकारी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल जिले के ब्योहारी से कल गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि भोपाल समेत 12 जिलों में सामान्य औसत से अधिक पानी गिर चुका है और भोपाल में भदभदा के बाद अब कलियासोत डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। कलियासोत नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे कलाकार वी काली प्रसाद बाबू का मृदंगम लय विनासम, साथ ही पखावज पर संगत देंगे विट्ठल राजपुरा।
3: आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
3: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी घंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित

0: किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलेडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल आर्टिस्ट्री एंड म्यूजिकल सेंसिटिविटी। He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary Mridangam exponent, honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned Mridangam Vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrahma Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian Mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne Mridangam Lay Vinyas ka aarambh Chaturashtra Jati Triput Taal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu begins his Mridanga Lay Vinyasam with Chaturashtra Jati Triput Taalam.

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पांसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji

धा कटक कट धा कटक दुम कटक तक दुम कटक तथा तक कटक दुम कटक तथा कटक तथा तक कटक दुम कटक तथा कटक तथा तक कटक दुम कटक तथा तक दुम कटक धुम कटक तक धा धा कटक कट धा

வேதம் ஆட சொன்னிய கதகதிகனதா.

ಪರಮೇಶ್ ಚಕ್ರಧಾರ್.

कट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यार चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यार चंद्र चमक चपला सी चमकत चंद्र मुखीरा धारा।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झत्ताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झत्ताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार वी काली प्रसाद बाबू का मृदंगम लय विनाशम। पखावज पर संगत दे रहे थे विट्ठल राजपुरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म अखियों के झरोखों से। स्वर हेमलता के हैं, गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है ज़िला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से। श्रोता हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज़, रोज़मीन, तैमूर, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई, सनी बाबू, परु तड़वी। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

का याग्निक के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश। इन्हीं के साथ बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर। अगली श्रोता कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं, तूफान डांगी पटेल, मिसेस टीना, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। फरमाइश हमें आई है आदर्श नगर मलोट से। श्रोता है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। अगले श्रोता गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म परदेस से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है बठेना से, श्रोता है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, इन्हीं के साथ सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। अगली श्रोता असालतपुरा मुरादाबाद से, मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और ज़ुबेर अंसारी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म आज़ाद से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार हैं सी रामचंद्र। फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 19वां भाग।

0: भैया। ईमानदार और मेहनती रतन की बीवी जमुनिया अपनी मेहनत के बल पर शिक्षा ग्रहण करती है और गांव की सरपंच चुनी जाती है। इसी बीच शहर से आया हुआ एक नौजवान लड़का जयंत, जो इसी गांव की लड़की मेघा के साथ गांव घूमने आया है, वो जमुनिया को पसंद करने लगता है और बिना किसी लंबे प्रेम और अंतरंगता के व्यवहारिक स्तर पर वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अंततः आपस में शादी का फैसला भी कर लेते हैं। अब आगे।
1: अगर अपने गांव तक सड़क होती और वहां से बस चला करती तो कितना अच्छा होता ना।
2: जमुनिया, यही तो सोचना है और इसे एक दिन हकीकत बनाना है।
1: अरे लो, बस आ गई, बैठते हैं।
2: हाँ, चलो
3: चलो भैया, चलो भक्त बनाने चलो। अरे भैया, पहले भैया, अरे पहले उतरने तो यार।
2: चलो जमुनिया,
1: हाँ
2: यहाँ पर बैठ जाओ।
1: हाँ चलो।
2: अरे देखो देखो, शहर आ गया।
1: अरे हाँ,
2: चलो उतरते हैं।
1: बिल्कुल,
2: यही पास में बीडीओ साहब का ऑफिस है,
1: तो पैदल पैदल ही चलते हैं।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा।
4: क्या बात है राम खिलावन, कैसे आए हो?
5: अरे बे सरपंच, आइए बे जमुनिया जी गांव से।
4: हाँ हाँ, फतेहपुर गांव की सरपंच है वो।
5: आओ, उनके साथ में कोई बाबू भी है साहब, जैन साहब।
4: अच्छा अच्छा, देखो दोनों को अंदर ले आओ।
5: हाँ।
4: और सुनो, पूरे सम्मान के साथ लाना।
5: हाँ हाँ हाँ।
4: और 3 कप चाय भी भेज देना।
2: नमस्कार साहब।
4: आइए आइए।
1: नमस्ते बीडियो साहब।
4: नमस्ते जमुनिया जी, बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए।
1: बीडियो साहब, आपका समय बहुत कीमती होगा, मैं समझती हूँ, इसलिए थोड़ी मैं जानना चाहती हूँ कि फतेहपुर के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं और उनमें कितना फंड है, ताकि हम उस हिसाब से काम शुरू कर सके।
4: देखिए जमुनिया जी, ऐसा है कि फतेहपुर के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा फंड तो नहीं आया है, क्योंकि इस गांव के लिए पहले से ही बहुत सारा फंड दिया जा चुका है और सारे काम भी लगभग पूरे हो चुके हैं। हाँ, केवल एक बेसिक डिस्पेंसरी की बात है, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है। और
1: माफ कीजिएगा बीडियो साहब, गांव में एक भी काम नहीं हुआ है।
4: क्या?
1: आप कहे तो मैं लिख कर दे दूं और आप गांव में आकर खुद देख लें।
4: क्या, ये कैसे हो सकता है? कमाल करती हैं, तब तो फतेहपुर आकर ही देखना होगा। देखना होगा कि ऐसा कैसे हो गया।
1: ऊपर से बीडियो साहब,

0: मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को पट्टा दिया गया है उनमें से तीन ऐसे हैं जिन्हें जमीन नहीं मिली है, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनका पट्टा किस जमीन पर है।
1: बीडीओ साहब, मुझे बोलने का हक तो नहीं है, पर अगर आप आज्ञा दे तो बताऊं कि वहां कितनी गड़बड़ी हो रही है।
2: हाँ हाँ जयंत, वो तो मेरी भी समझ में आ रहा है। जमुनिया जी की बातों से ही झलक रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं खुद जाकर गांव में देखूंगा कि कैसा और कितना काम हुआ है।
0: हम आपका इंतजार करेंगे। सर, बता दें कि आप कब आएंगे ताकि उस दिन मैं गांव में रहूं, नहीं तो मैं बांस की डलियां बनाती हूँ, फिर हाट में बेचने जाती हूँ। उसी के भरोसे हमारा घर चलता है सर।
2: हाँ हाँ मैं जानता हूँ। देखो, मैं कल ही आऊँगा। जमुनिया जी, मैं
0: जी
2: खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि कब और कैसे सब हुआ है।
0: जी बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
1: अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? फ्लैश चमकाकर हमारी फोटो खींच रहे हो? क्या हम दोनों की जोड़ी पसंद आई क्या?
3: आप दोनों के चर्चे गांव में हो ना हो, शहर में बहुत हैं। अरे, ये हमारे गॉसिप का हिस्सा है, और हाँ, हम इसे जल्द ही छापने जा रहा है।
1: तो आज ही छाप लीजिएगा, वरना आपको गॉसिप नहीं मिलेगा, क्योंकि संभवतः कल ही हम शादी कर लेंगे।
3: अरे, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने तो। अरे, मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूं।
1: तो भाई, पीछा करने की क्या जरूरत है? जब हम शादी करेंगे तो आपके सामने करेंगे, और कम से कम आपको जरूर न्योता देंगे। आइएगा, भूलिएगा मत।
3: थैंक यू वेरी मच।
1: जमुनिया, चलो जब तक बस आती है वहां सामने चलकर चाय वाले के यहां चाय पीते हैं।
0: अच्छा चलो, बीडीओ साहब ने बात तो बड़े अच्छे से की है ना।
1: हाँ, अरे अरे, वो देखो, वो तो दीवान जा रहा है।
0: हाँ, लगता है बीडीओ साहब ने बुलवाया है उसे, है ना।
1: हाँ,
4: अंदर आ सकते हैं बीडीओ साहब।
2: आइए दीवान साहब। दीवान साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप फतेहपुर के सरपंच रहे हैं ना?
4: हाँ जी।
2: हमने आपको गांव के विकास के लिए काफी सरकारी फंड दिया, पर आपने तो वहां कुछ भी विकास नहीं किया। अभी अभी वहां की नई सरपंच सब कुछ बता के गई हमें।
4: माफ कीजिएगा बीडीओ साहब, वो तो हमारी बुराई करेगी, पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि गांव के सारे फंड बहुत कायदे से इस्तेमाल हुए हैं, और जितना भी काम दिया गया हमने किया है। चाहे तो आप खुद आकर देख लें।
2: देखना ही पड़ेगा। कल आप भी गांव में रहिएगा दीवान साहब। और हाँ, आपके चार्ज का लेन देन हो गया
4: जी। अरे बीडीओ साहब, कहा हुआ कि अब कुछ कैश कम पड़ रहा था। हाँ, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। वो कहा हुआ कि पर्सनल यूज में ले लिया था ना।
2: अरे
4: अरे सुनिए तो, एक हफ्ते की हमने मोहलत ले ली है, अब पैसा जुटाकर जल्द ही चार्ज दे देंगे ना।
2: अरे पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दीवान जी? क्या आपको पता नहीं कि चाहे जितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आन पड़े, सरकारी धन का उपयोग आप व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं कर सकते। चलिए, कल आपसे गांव में मुलाकात करता हूं।
4: जी
2: जी
4: ठीक है साहब, गलत है।

0: चाय भी हो गई, पर बस नहीं आई अभी तक।
1: आती होगी। अरे वो देखो, दीवान बीडीओ ऑफिस से बाहर निकल रहा है।
0: बड़ा तमतमाया लग रहा है।
1: हाँ, लगता है बीडीओ साहब ने अच्छी फटकार लगाई है।
0: जरूरी है, गलत काम पर फटकार।
1: हाँ, अरे वो देखो बस भी आ गई, चलो चलते हैं।
2: चल ले। क्या बात है दीवान साहब, बड़े गुस्से में लग रहे हो। अरे क्या बीडीओ साहब से कुछ खटपट हो गई?
3: अब चुप, चल अलग अलग हट, बाजू हट, ट्रैक्टर हम चलाएंगे आज। हाँ
2: बिल्कुल बिल्कुल, मूड फ्रेश हो जाएगा।
3: चाय भी तो दे।
2: हाँ हाँ मालिक, ये लो ना।
3: बतला रहे हैं सब के सब। अरे इस जमुनिया को सरपंची कहाँ मिल गई?
2: हाँ
3: अरे इसने तो हमारे खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया।
2: अरे

0: चुगलखोर चोटी है, तमाम शिकायतें वीडियो से लगाई।
1: अच्छा,
0: और वो वीडियो भी ससुर झटके से उसकी बातों में आ गई। अरे कहा देखेगा, कल गांव आएगा, गांव मौका मुआयना करेगा ससुर। अरे कहां से लाऊंगा सड़क, हैंडपंप, अरे मछली पालन के लिए खोजी गई लेक, समझ में नहीं आ रही।
2: अरे काय को चिंता कर रहा हूँ मालिक, 100 बहाने हैं 100
0: है?
2: हाँ देखो, अरे आपने सड़क बनाई
0: हाँ?
2: तो पानी बरसा
0: हाँ?
2: और मिट्टी बह गई
0: हाँ?
2: अब देखो ना, आपने लेक खुदवाई है, अब मछलियां पाली
0: हाँ?
2: और लोग ससुरे मछली चुरा कर ले गए
0: हाँ?
2: और लेक के चारों तरफ अपने खेत की मेड़ लगा दी, मेड़ हाँ? और सुनो, जिससे उसमें पानी आता ही नहीं था और अब लोग उसमें खेती करने लगे हैं। और जिन 3 लोगों की जमीन हमारे कब्जे में है वो बीडीओ को बता देंगे कि हम पहले से उसको जोत बो रहे हैं, है कि नहीं, और पट्टेदारों को दिया जाना है। अब समय आएगा तो उन्हें जमीन दे दी जाएगी।
0: अरे शाबाश अरे बड़ा ही चतुर निकला रे तू तो,
2: तुम्हारी सागिरद है मालिक।
0: अरे शाबाश शाबाश, तबीयत खुश कर दी तूने, अब कल की कल देखेंगे।
2: हाँ वाले
0: आन दो उस ससुर वीडियो को।
2: और क्या,
3: अरे देखो गांव आ गया, चलो उतरते हैं। जमुनिया
4: हाँ?
3: थोड़ा साइड होकर चलो, पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा है
4: हाँ?
3: अरे ट्रैक्टर तो दीवार चला रहा है,
4: इसका ड्राइवर कहाँ चला गया?
2: लगता है वो कि मतदाता की तरह दूर हो गया
4: नहीं नहीं पीछे बैठा है
2: आ, अरे हाँ
0: जय राम जी की, जमुनिया जी, जैन जी पैदल जा रही है जुगल जोड़ी है? भाई बुरा ना माने तो ये ट्रैक्टर की शोभा बढ़ा लें, आए बैठ जाए ट्रैक्टर पे, इसकी सवारी करा दें आपको। चलिए बैठ जाइए, गांव तक ले चलते हैं आपको।
4: माफ कीजिएगा दीवान जी, ट्रैक्टर में इतनी जगह तो है नहीं कि हम सब बैठ सके। वैसे भी 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने से कोई बुराई नहीं है
0: हाँ भाई, अब हमारे ट्रैक्टर की आपको जरूरत ही कहा है, ये जयंत जी साथ हैं आपके, थोड़ा समय एकांत में मिला है तो बातें बातें करते करते जाइएगा ना अरे हम खाम खाम मूसर चंद बन रहे हैं आपके बीच।
3: अरे हाँ दीवान जी, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया
0: हाँ?
3: कि हम लोग अगले हफ्ते विवाह कर रहे हैं।
0: का?
3: हाँ शादी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप उसमें जरूर शामिल होइएगा, भूलिएगा मत।
0: कहा कह रहे भैया शादी कर रहे, बड़ी जल्दी बहुत बड़ा फैसला ले लिया आप लोगों ने है तब तो आना ही पड़ेगा, चलत हैं, जय राम जी की।
5: ये का मालिक, ये दोनों तो शादी कर रहे हैं।
0: अरे वही तो अरे देख तो उस जमाने को हो क्या गया है
5: हाँ?
0: अरे बेशर्मी की हद है।
5: और का?
0: अरे अभी सोचा था कि जयंत हमारी बात सुनकर झेपेगा, शर्माएगा हाँ? पर नहीं, अरे उसने तो हमारे गाल पे तमाचा ही मार दिया
5: मालिक।
0: अरे रे, इतने बुरे दिन तो कभी थे नहीं हमारे।

0: आजकल एक से एक में क्या होता है?
1: इतना पैसा लेकर क्या करेंगे पंडित जी? आपके भी तो आगे पीछे कोई है नहीं, जो खुशी खुशी मिल जाए उसे खुशी खुशी रख लेना चाहिए। और अब हमें आशीर्वाद दीजिए पंडित जी।
0: खुश रहो बच्चों और इस गांव की तस्वीर बदल दो।
2: जी जान लगा देंगे पंडित जी।
1: बिल्कुल पंडित जी।
3: बीघा देखो तो जमुनिया के चेहरे की रंगत ही बदल गई है।
4: बहुत सुंदर लग रही है ना।
3: सचमुच सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है।
4: बधाई हो जमुनिया।
3: बधाई हो जैन, आखिर तुमने एक आदर्श काम तो करके दिखा दिया।
1: बहुत
2: बहुत धन्यवाद।
5: भाई तुम लोग पढ़ाई को इसी तरह समझो जैसे कबड्डी खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो। जब तुम पढ़ाई में आनंद लेने लगोगे तभी तुम्हारी शिक्षा सहज होगी और तुम लिख पढ़ पाओगे। अगर इसे बोझ समझकर करोगे तो कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाओगे।
2: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम गुरुजी।
5: प्रणाम प्रणाम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे बताओ भाई।
2: वो सब इतनी जल्दी हो गया कि हम आपको बता ही नहीं पाए।
5: अच्छा अच्छा चलो खैर सुखी रहो। भाई तुमने ये सब काम तो खैर बहुत अच्छा किया जमनिया, बहुत बहुत खुशी हुई। चलो ठीक है, अब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे बेटा और तुम लोग इस गांव के लिए बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर पाओगे। हाँ तुमसे एक बात करनी थी बेटा। वो
1: जी कहिए गुरु जी।
5: देखो जमुनिया
1: जी,
5: यहाँ पर जितना प्रबंध हो पाया है वो शिक्षा मैं दे चुका हूँ। अब गोलू और चिरैया को शहर जाना होगा और बुरा ना मानो तो ये गोलू और चिरैया नाम तुम अपने पास ही रखो और इन्हें एक बेहतर नाम देने की जरूरत है।
2: गुरुजी आप ही कोई नाम प्रस्तावित कीजिए ना। हाँ, हम दोनों इस मामले में बहुत ही कमजोर हैं।
5: हाँ ठीक है, तो गोलू को तेजस्व है और चिरैया को रूपस।
1: वाह।
5: हाँ तेजस्व और रूपस, ये दोनों को ये नाम दो।
2: हाँ।
5: और देखो इन्हें शहर भेजने की तैयारी करो, यही समय है जब ये पढ़ लिख कर दुनिया को कुछ दे सकते हैं बेटा।
1: हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। आप हमें बताएं कि इन्हें कहाँ भेजना ठीक रहेगा और कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे?
5: अब उसकी तो ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं बेटा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आजकल शहर में आधुनिक शिक्षा होती है जो हमारे समय में नहीं थी।
2: जमुनिया तुम इसकी चिंता मत करो, गुरुजी मैं देख लूँगा कि ये बच्चे कहाँ सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। गुरुजी अभी तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए।
1: प्रणाम गुरुजी।
5: अच्छा अच्छा आयुष्मान भवा।

0: वाह जमुनिया और जयंत तो माला पहने हुए हैं। अरे वाह रे भगवान वाह, तिलक भी लगाए हुए हैं लोग। अरे अरे जयंत बेटा, कम से कम इस बूढ़े को तो याद कर लिया होता है। अरे तुम दोनों तो रास्ते में ही शादी करके आ गए।
1: बाबा इसमें जमुनिया की कोई गलती नहीं है, कुछ स्थिति ऐसी बनी कि हमने सोचा शादी ही कर ले मंदिर में जाकर। हमें रास्ते में दीवान मिला था और बड़े व्यंग्य से बात कर रहा था, जो हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। और शादी का फैसला तो हमने यहां से जाते ही कर लिया था, और इसे एक बड़े समारोह के रूप में हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधे मंदिर चले गए।
0: वाह,
1: फेरे लिए, भगवान को प्रणाम किया और सीधे घर आ गए। अब अगर आप मुझसे नाराज

0: तो आपको हक है मुझे सजा देने का।
1: अरे जयंत बेटा, कैसी कैसी बातें करते हो बाबूजी तुम तो, हैं? अरे आपसे तो अब रिश्ता जुड़ गया है, और वो भी ऐसा कि जिसमें मुझे कोई सजा देने का अधिकार नहीं है बेटा। हाँ
0: बाबा
1: बाबा,
0: आशीर्वाद
1: आशीर्वाद दो।
0: दीजिए।
1: हाँ, दिया दिया बेटा, तुम दोनों सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो बेटा, और अपने मकसद में कामयाब हो। और हाँ, अब कम से कम बिरादरी में एक भोज तो रखना ही पड़ेगा बेटा।
0: हाँ बाबा वो मैं आयोजित कर दूंगा,
1: हाँ
0: आप इसकी चिंता मत कीजिए। बस आप तो दिन बताएं, जगह बताएं और ये बताएं कि कितने लोगों के लिए इंतजाम करना होगा।
2: जब शादी ही हमने इतने सादगी से की है, तो फिर इस समारोह की क्या जरूरत है?
0: देखो जमुनिया, शादी ब्याह व्यक्तिगत के साथ साथ एक सामाजिक घटना भी है, जिसमें समाज से एक स्त्री और पुरुष साथ रहने की अनुमति लेते हैं, और इसलिए ये भोज आवश्यक है।
1: अरे वाह जयंत बाबूजी, वाह, आप भी बड़े दूर की सोचते हो, वाह।
2: हमने तो ये सोचा ही नहीं था, पर मुझे अभी गोलू, अरे दत्त, तेजस्व और मेरी प्यारी चिरैया यानी रूपस, बस इन्हीं की चिंता लग गई। इन्हें शहर भेजना है, पैसे का इंतजाम करना है।
0: वो मैं करूंगा जमुनिया, तुम अगर माँ हो तो मैं उन दोनों का पिता हूं।
3: नमस्कार बीडीओ साहब।
4: नमस्कार वीडियो साहब।
5: नमस्कार नमस्कार।
3: आइए
5: हाँ अरे भाई नमस्कार नमस्कार, कैसे आप लोग?
4: ठीक है ठीक है।
5: जी।
4: आप पहचानते होंगे, ये मेघा और मैं शिल्पी।
5: अरे हाँ, पिछली बार आप लोगों से मुलाकात की थी।
4: जी जी जी जी
5: देखे भाई, हम इसीलिए आए हैं कि सरकार की दी हुई योजना का फंड का लाभ आपके गांव को कितना मिला है ये देख लें।
4: देखिए ना, सब कुछ आपके सामने है।
3: देखिए ना, आप हमारे गांव को देख लीजिए
4: और गांव की सड़क को भी देख लीजिए।
5: अरे ये सड़क
4: लेक के नाम पे केवल एक गड्ढा है वहां पर।
3: ये हमारे दीवान जी का काम है साहब।
5: So strange।
3: और सर ये जो पंप दिख रहा है ना, ये 10 फुट नीचे गाड़ कर एक खंबा लगा दिया है इन्होंने।
5: दिस इज केस ऑफ करप्शन। कहाँ है आपके दीवान जी? हमने तो सारा पैसा उन्हीं को दिया था।
6: जय राम जी की बीडीओ साहब।
5: दीवान साहब,
6: हाँ
5: ये
6: साहब।
5: क्या देख रहा हूं मैं?
6: क्या हो गया साहब?
5: ये सब क्या हो रहा है? सारा फंड कहाँ गया? हमने आपको सारा फंड दिलवाया था सरकार की ओर से, उस फंड का ये उपयोग किया आपने?
6: क्या बात करें बीडीओ साहब, सड़क हमने बनवाई, अब बहुत तेज बारिश आए और बारिश में सड़क बह जाए तो उसमें हम क्या कर सकते? अरे हमने तालाब खुदवाया, मछलियां उसमें पाली, और ये गांव वाले मछलियां चुरा चुरा के भाग जाए तो हम क्या करें बाद में? हमने सारा काम किया है वीडियो साहब।
5: देखिए मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं दीवान जी से बात कर रहा हूँ, शांत रहिए आप। हाँ बोलिए दीवान जी, क्या कहना है आपका?
6: हमने सारा काम किया है, जो जो हमसे बनता था हमने किया है, लेकिन बखत बखत की बात है, प्राकृतिक आपदा आती है, सड़क बह गई, मछलियां चुरा ले गए, अब इसमें हम क्या कर सकते?
5: देखिए दीवान साहब, ये जो आप दलील दे रहे हैं ना, ये जब जांच बैठेगी तब दीजिएगा, समझे कि नहीं आप?
6: जांच वाली क्या बात है साहब, जो है सब सामने तो है आपके।
5: वो आपको भी पता चल जाएगा। जमुनिया जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको अलग से सरकारी फंड दिलवाऊंगा, और इस पुराने फंड का जो दुरुपयोग किया है, जो अफरा तफरी की गई है, उसके खिलाफ भी बराबर जांच की जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीडीओ साहब।
5: जमुनिया जी,
2: जी
5: हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस गांव का विकास जरूर होगा।
2: बस आपका साथ चाहिए बीडीओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: भाई लोगों, भाई लोग,
7: चलो। अरे चुप तो रहो यार।
8: अरे सुनो यार, बात तो सुनो।
7: सुनो
3: भाई लोग,
2: सरकार ने हमें पैसे

0: बना दिया है, तो सब लोग ईमानदारी से काम करना। आप लोग सोचो तो सही, काम अपना, मेहनत अपनी और पैसा सरकार का। हमें अपने काम के लिए सरकार पैसा देती है। और कल ही मुझे पता चला है कि हमारे इस गांव में एक बैंक खुलेगा। हाँ, हॉट पोस्ट ऑफिस भी खुलेगा और भैया और तो और अस्पताल भी आएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो पहले सब लोग मिलकर जन भागीदारी से सड़क बना लेते हैं, क्यों, है ना? हाँ, और हम और जयंत, हम दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि गांव से शहर तक की सीधी बस हो, ताकि सड़क पर जाकर दूसरी बस का इंतजार ना करना पड़े, क्यों, है ना?
1: बहुत बढ़िया, हम भाई आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई काम चोरी नहीं करेंगे, को भैया बल्कि अपनी ताकत से ज्यादा काम करके देंगे। और ये सड़क को अपन समय के अंदर बना देंगे।
0: बस यही हिम्मत हौसला आप सब में होना चाहिए। कितना खडंजा बिछा, कितनी सड़क बनी, कितने हैंडपंप लगे, ये सब देखने वीडियो साहब आते रहेंगे। आप उन्हें जरूर बताते रहिएगा।
1: एक एक बात बताएंगे, सब खोल के बता दें।
2: वक्त का पहिया कभी न थकता, चलता हर पल।
1: भैया, अरे जो खंबा काहे ले आया?
3: अरे भैया, इस गांव में बिजली आनी है, बिजली।
1: बिजली?
3: हाँ, और का। अरे हर घर में सरकार एक बत्ती कनेक्शन देगी। हाँ, और रात को उजेला रहेगा।
1: अरे वाह भैया,
3: और का।
1: हाँ तो भैया, जगह में लालटेन तक नहीं जले यार। अरे बिजली को लट्टू जलेगा?
3: अरे लट्टू नहीं, लट्टू नहीं, अब बिजली का डंडा जलेगा। मुरमुरी
1: भाभी डंडा चले।
3: हाँ
1: भैया,
2: तुझको चलना है, तुझको चलना है, तुझको चलना।
0: अरे ये क्या हो रहा है भैया, आप लोग किस लिए खुदाई कर रहे हैं?
4: जमुनिया जी, इस गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खुलेगा और हम उस ऑफिस केबल बिछाने आए हैं।
0: अरे वाह भैया, चाय पानी पीना हो तो हमारे घर आ जाना, आप लोग बड़ी मेहनत का काम कर रहे हो।
4: चाय तो नहीं दीदी, थोड़ा पानी पिलवा दो।
0: पानी पिलवा, भेजती हूँ भैया, अभी भेजती हूँ।
1: अरे भैया सुनो सुनो यार, ये जो अपनी तुम्हारी सरपंच साहब है ना, जमनी, ये कहाँ मिलेंगी और घर?
5: आप तनिक 10 मिनट बैठिए साहब, मैं घूमती घामती इतने आएंगी और क्या, इस हेल्थ सेंटर पे किसी भी वक्त आ जाए हैं। अच्छा? और ऐसा कोई जरूरी हो तो हम बुलाना
1: है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
5: तो
1: हम इंतजार कर लेंगे।
5: चलो ठीक है। अरे लो, नमस्ते दीदी, वे जमनिया जी आई गई।
0: नमस्ते,
5: आपको एक मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा भाई साहब।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना जमुनिया का भाग 19। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
7: पेश इस घंटे की खास खबरें। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और जाँच की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 3 दिन के दुबई दौरे पर हैं। इस दौरान वे यूएई के बड़े निवेशकों और उद्योग समूहों से मुलाकात करेंगे। बालाघाट जिले में कथित बेगा आदिवासी बच्चों की मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और प्रदेश सरकार को समयबद्ध कार्रवाई के लिए आदेशित करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि भोपाल समेत 12 जिलों में औसत से अधिक पानी गिर चुका है। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आज शाम पहलाल प्रहाल कुर्मी एवं साथी सागर द्वारा राय नृत्य, दयाराम रठुरिया एवं साथी डिंडोरी द्वारा बेगा जनजातीय कर्मा नृत्य एवं प्रियंका शर्मा भोपाल के निर्देशन में द्रौपदी लीला नाट्य की प्रस्तुति की जाएगी। और भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज दोपहर लगभग 1:50 पर भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, यूं तो हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे, पर सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो केवल शिक्षा से नहीं बल्कि नारी के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण से जुड़ा है। ईच वन टीच वन, अर्थात हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ाए। बहनों, हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों को समझने, सही निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर देती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता का महत्व बहुत अधिक है। एक महिला जब शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता बल्कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक साक्षर माँ अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक होती है। वह अपने अधिकारों को समझती है और अपने जीवन के फैसले अधिक आत्मविश्वास के साथ ले सकती है। लेकिन हमारे आसपास आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाईं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ बहनों, बिल्कुल कर सकते हैं। यही संदेश देता है ईच वन टीच वन। यदि हम में से हर एक व्यक्ति अपने आसपास की केवल एक महिला या एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाने का संकल्प ले तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन बन सकता है। इसके लिए बहनों किसी बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। घर में उपलब्ध किताब, अखबार या मोबाइल भी सीखने का माध्यम बन सकता है। हम किसी को भी जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसे उसका नाम लिखना सिखा सकते हैं, सरल शब्द पढ़ना सिखा सकते हैं, मोबाइल पर संदेश पढ़ना सिखा सकते हैं या बैंक और सरकारी सेवाओं से जुड़ी सामान्य जानकारी समझा सकते हैं। बहनों, आज के डिजिटल युग में साक्षरता का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही आवश्यक है। महिलाओं को मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सिखाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान करना और डिजिटल सेवाओं की जानकारी देना भी शिक्षा का ही हिस्सा है। बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी व्यक्ति का अशिक्षित रह जाना उसकी कमी नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आइए हम केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए संकल्प लें। मैं स्वयं सीखूंगी और एक व्यक्ति को सिखाऊंगी, क्योंकि एक महिला पढ़ेगी तो एक परिवार आगे बढ़ेगा, एक परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और जब समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश सशक्त बनेगा। ज्ञान की ज्योति जलाएं, अज्ञान का अंधकार मिटाएं, हर एक पढ़े और एक को पढ़ाए, शिक्षा की रोशनी घर घर पहुंचाए। आगे बहनों, हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे लिए जीवन को व्यवस्थित, स्वस्थ और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों, अनुशासन केवल समय पर उठने, समय पर सोने या अपने कार्य समय पर करने का नाम नहीं है। अनुशासन एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम अपने समय, विचारों, व्यवहार और जिम्मेदारियों को सही दिशा में संचालित करते हैं। बहनों, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। यदि हम सुबह समय पर उठे, अपने दैनिक कार्यों की योजनाएं बनाएं, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या हमें आलस्य और तनाव से दूर रखती है तथा कार्य क्षमता बढ़ाती है। अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का महत्व समझता है वह अपने लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, नौकरी करने वाली महिला हो या व्यवसाय से जुड़ी महिला, हर किसी के लिए समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। अनुशासित जीवन हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाता है। जब हम अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं जिम्मेदारी से पूरा करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया है। ऐसे समय में अनुशासन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें यह तय करना चाहिए कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाए लेकिन हमारा समय और ध्यान पूरी तरह उसी के नियंत्रण में ना चला जाए। परिवार में भी अनुशासन का विशेष महत्व है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय, विचारों और जिम्मेदारियों का सम्मान करें तो घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद बनता है।
विशेष रूप से महिलाएं परिवार को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य, आराम और व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय निकालना चाहिए। बहनों, हमें यह याद रखना चाहिए कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है बल्कि सफलता की सीढ़ी है। अनुशासित जीवन हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन, बेहतर संबंध और सफल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए बहनों, जीवन में अनुशासन अपनाइए, समय का सम्मान कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए।

0: नजर।
1: आगे बहनों, हम आपसे बात करने जा रहे हैं नेत्रदान का संकल्प लें के विषय में। बहनों, यह केवल 3 शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारी आंखें हमें इस सुंदर संसार को देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर देती हैं। सूर्योदय की लालिमा, माँ के चेहरे की मुस्कान, प्रकृति की हरियाली और अपनों के चेहरे की पहचान, इन सब का आनंद हमें आंखों के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए आंखों को हमारे शरीर का सबसे अनमोल उपहार कहा जाता है। बहनों, हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग दृष्टिहीनता के कारण जीवन की अनेक खुशियों से वंचित हैं। किसी के लिए किताब पढ़ना कठिन है, किसी के लिए अपने परिवार के सदस्यों को देख पाना संभव नहीं है, तो कोई प्रकृति की सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन नेत्रदान किसी के जीवन में फिर से प्रकाश ला सकता है। बहनों, नेत्रदान का अर्थ जीवित रहते अपनी आंखें दान करना नहीं है। मृत्यु के बाद दान की गई आंखों से प्राप्त कॉर्निया का उपयोग जरूरतमंद दृष्टिबाधित व्यक्ति की दृष्टि लौटाने में किया जा सकता है। अर्थात हमारे जीवन के बाद भी हमारी आंखें किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में उजाला भर सकती हैं। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है, लेकिन उसी दुख की घड़ी में लिया गया नेत्रदान का निर्णय किसी दूसरे परिवार के लिए जीवन भर की खुशी बन सकता है। कितना अद्भुत है कि हम इस संसार से विदा होने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन कर सकते हैं। बहनों, नेत्रदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का अनुपम उदाहरण है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हमें यही संदेश देता है कि हमें नेत्रदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। कई लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि नेत्रदान करने से चेहरा खराब हो जाता है या धार्मिक संस्कारों में बाधा आती है। ऐसी धारणाएं सही नहीं है। नेत्रदान एक सम्मानजनक चिकित्सा प्रक्रिया है और इसे निर्धारित चिकित्सा एवं नेत्रदान संस्थानों की सहायता से किया जाता है। इसलिए हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। बहनों, नेत्रदान के साथ साथ हमें नेत्रों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आंखों की नियमित जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, स्वच्छता और डिजिटल उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। विशेषकर बच्चों और युवाओं में आंखों की देखभाल के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज आवश्यकता है कि नेत्रदान को केवल एक अभियान न मानकर एक सामाजिक संकल्प बनाया जाए। आइए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर हम स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार तथा समाज को भी जागरूक करें। संकल्प लें कि हम नेत्रों की सुरक्षा करेंगे, नेत्रदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे और मृत्यु के बाद अपनी आंखों के माध्यम से किसी के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जिंदगी की रोशनी भले ही एक दिन बुझ जाए, लेकिन हमारे द्वारा किया गया नेत्रदान किसी और की दुनिया हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। बहनों, आंखें हैं तो सपने हैं, दृष्टि है तो सृष्टि है। बहनों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवाने जा रहे हैं यह भेंटवार्ता, जिसमें हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल, जिनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, बहनों को भी नमस्कार। बहनों, इस कार्यक्रम में हम जो बातचीत कर रहे हैं, विषय है दृष्टि है तो सृष्टि है। दृष्टि यानी कि नजर और सृष्टि यानी कि हमारा ये पूरी दुनिया। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेत्रदान पखवाड़ा वर्तमान में जारी है, 8 सितंबर तक हमारा रहेगा। बात इसलिए भी क्योंकि आप और हम सभी लोग दैनिक जीवन में ये आभास करते हैं, महसूस करते हैं कि कई तरह के लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि नेत्रहीन है या नेत्र रूप से दिव्यांग है। दुनिया को देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आँखों की। अगर आँखें हैं, कहा भी जाता है कि आँख है तो दुनिया है, तो दुनिया को देखने के लिए ज़रूरी है कि नेत्रदान किया जाए। नेत्रदान कौन कर सकता है, नेत्रदान किन परिस्थितियों में हो सकता है, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दिनेश अग्रवाल हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिला चिकित्सालय शिवपुरी में। डॉक्टर साहब नमस्कार, और सुनने वालों के बीच में स्वागत है आपका। प्रश्न ये है कि किस उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? आप डॉक्टर होने के नाते कई तरह की समस्याएं फेस करते होंगे, लोगों को मोटिवेट करते होंगे, लेकिन लोग मोटिवेट नहीं होते होंगे, उन्हें लगता होगा कि भाई ये डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं। तो आप किस तरह की समस्याएं फेस करते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपके आगे आते हैं,
0: नमस्कार। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नेत्र दान पखवाड़े के विषय में। नेत्र दान पखवाड़े का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि नेत्र दान के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना। सबसे मुख्य बात होती है कि नेत्रदान किसे नेत्रदान बोला जाए, और ये तो इसमें नेत्रदान का मीनिंग होता है कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात ही अपन नेत्रदान कर सकते हैं, मृत्यु से पहले अपन नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मृत्यु से पहले जो अपने को करना है वो एक संकल्प पत्र रहता है। संकल्प पत्र आप फिल करके आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं अपने परिजनों के बीच में, और एक अपना दृढ़ संकल्प है उसको मजबूत कर सकते हैं। इससे संकल्प पत्र भरने से एक जो अथॉरिटी है जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज, उसको भी इसके बारे में जानकारी रहेगी, बंदा है वो नेत्रदान के लिए इच्छुक है, और आपके परिजनों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी। दूसरी बात, नेत्रदान कैसे किया जाए, इसके लिए किससे संपर्क किया जाए, कितने समय में हो जाएगा, कितनी, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूँ। नेत्रदान बहुत ही एक सिंपल प्रक्रिया है। किसी भी आपके परिजनों में, दोस्त यारों में या पड़ोस में किसी की भी अगर डेथ होती है, तो आप मृत्यु के 6 से 8 घंटे के बीच, 6 to 8 hours के अंदर आपको जो कंसर्निंग अथॉरिटी है जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आपको संपर्क करना है। वहाँ से जो भी ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है उसके घर पर या अस्पताल में, और वहाँ से नेत्रदान लेगा। नेत्रदान के लिए आपको बॉडी को कहीं भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है कि उसको अस्पताल लेके आना है या नेत्र रोग विभाग लेके आना है। वहाँ से जो भी नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ है वो उस जगह पर, उसके घर पर या अस्पताल में या जहाँ पर भी उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से नेत्रदान लेगा।
2: चैलेंजेस कौन कौन से आप महसूस करेंगे अगर हम शिवपुरी के हिसाब से देखें तो?
0: शिवपुरी में जो सबसे मुख्य चैलेंज है वो है आई बैंक का ना होना। यहाँ पर नेत्रदान तो अपन ले सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए की व्यवस्था अभी नहीं है। लेकिन इसके लिए व्यवस्था भली से नहीं है, लेकिन इससे अपन नेत्रदान को नहीं रोक सकते। अपन उस नेत्रदान को शिवपुरी में लेके विद इन 24 hours अपन, हम लोग उसे ग्वालियर,
2: यानी जहाँ आई बैंक है,
0: जहाँ आई बैंक है वहाँ अपन शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो है लोगों में अवेयरनेस करना होना। अवेयरनेस होगी, नेत्रदान बढ़ेंगे, नेत्रदान के लिए कॉल आएंगे, तो डेफिनेटली नेत्रदान करने में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2: जैसे उम्र के साथ साथ शरीर की शिथिलता होती है, क्या आंखों में शिथिलता नहीं आती अगर कोई व्यक्ति 90+ में डेथ होती है या किसी की 100+ में डेथ होती है और व्यक्ति चाहता है कि मेरी या उसके परिवारजन, तो संभव है?
0: नेत्रदान हर एक उम्र का व्यक्ति कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, स्त्री कर सकते हैं, हर एक धर्म का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट एक जैसे ही किसी का जन्म हुआ है वो विद इन 1 hour अगर उसकी डेथ होती है किसी बच्चे की, या 2 hours डेथ होती है, तो वो भी बच्चा भी नेत्रदान कर सकता है।
2: उसका कॉर्निया भी उतना ही कार्य करेगा जितना एक स्वस्थ मनुष्य का कार्य करता है?
0: बिल्कुल, उसका कॉर्निया भी बराबर काम करेगा, और उसका कॉर्निया भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक जवान व्यक्ति का या फिर
2: बुजुर्ग व्यक्ति का
0: इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है, हर एक उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है।
2: ये बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी के कारण कैलोप्स हुआ है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता?
0: बहुत ही रेयर बीमारियां हैं, बहुत, जिन व्यक्तियों को कैंसर है उनका नेत्रदान नहीं लिया जा सकता, जिनकी मृत्यु संक्रमण की वजह से हुई है, किसी भी संक्रमण की वजह से हुई है, उसका नेत्रदान नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक मिथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक मिथ ये रहता है कि व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है, व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, काला पानी है, तो वो नहीं कर सकता। ये सब मिथ हैं। जिसको भी चश्मा लगा हुआ है, जिसका काला पानी का ऑपरेशन हो चुका है, ग्लोकोमा का ऑपरेशन हो चुका है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब लोग नेत्रदान कर सकते हैं। उनका कॉर्निया उतना ही हेल्थी होता है जितना अन्य व्यक्तियों का है। इसलिए इसमें बीमारियों से रिलेटेड बस 2-3 बीमारियों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिनको किसी भी तरह का संक्रमण है
2: वो नहीं कर सकते।
0: एड्स है, सिफिलिस है, या फिर हेपेटाइटिस है, उनका नेत्रदान नहीं लेते हैं। कैंसर के मरीजों का नेत्रदान नहीं लेते हैं, और इनकी मृत्यु अगर संक्रमण की वजह से हुई है उनका नेत्रदान नहीं लेते हैं।
2: वैसे तो एक बीमारी कोविड, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, अब उसका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति कोविड के दौरान मौत हुई है तो क्या उसका वो से संक्रमण माना जाएगा कि उसका भी नेत्रदान हो सकता था?
0: हाँ, उसको संक्रमण माना जाएगा,
2: उसको संक्रमण माना जाएगा। हाँ। यानी कि वही है संक्रमण जो कोविड है, इसी तरह के अन्य संक्रमण हो सकते हैं, तो वो भी संक्रमण के उसमें बीमारी में आएगा। यानी कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये बात आ गई। एक्सीडेंट हुआ किसी व्यक्ति का, चोटिल हो गया, शरीर डैमेज हुआ, आंखें भी हल्की डैमेज हुई हम ये मानकर चलते हैं, तो क्या उस व्यक्ति का कॉर्निया प्रभावशील होगा? ये डिपेंड करेगा उसकी कॉर्निया पर
0: डिपेंड करेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ है, कॉर्निया कॉर्निया हेल्दी है, कॉर्निया में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, तो अपन बिल्कुल उसका नेत्रदान ले सकते हैं। उसका नेत्रदान उतना ही प्रभावी है जितना बिना एक्सीडेंट के पर
2: किसी का हुआ है। एक प्रश्न कलकटक साहब ये आता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद दुनिया देखें, तो मेरी नज़रों से दुनिया दो व्यक्ति देखेंगे कि एक व्यक्ति देखेगा?
0: ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगर मैं नेत्रदान करता हूँ तो मैं डेफिनेटली दो आंखों का दान करूंगा, तो मेरी आंखों से अभी तक तो मैं एक देख रहा था, एक व्यक्ति देख रहा था मेरी आंखों से, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात दो व्यक्ति मेरी आंखों से देखेंगे और जब तक चाहेंगे जब तक देखेंगे। अगर आप मरने के बाद भी दुनिया को देखना चाहते हैं तो नेत्रदान जरूर करिए।
2: एक प्रश्न निकल कर ये भी आता है, एक जिज्ञासा वश भी कह सकते हैं, कि मैंने नेत्रदान किया, मेरी आंखें किसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हो गई, अब उस व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो वो आंख और आगे जाएगी कि फिर उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होगी?
0: ये बहुत डायलेमा वाला क्वेश्चन है कि अगर उसकी कॉर्निया की स्थिति उसकी मृत्यु के पश्चात अगर ठीक बनी रहती है उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखने में नहीं आया है कि जिसने आई डोनेशन लिया हुआ है, जिसकी आंखों में खुद ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो उसकी,
2: क्योंकि वो आदमी तो इस वजह से अपने आप को महसूस करता है कि भाई मैं तो दूसरे की आंख से देख रहा हूं, तो कम से कम मेरे बात ये जो लॉ लगी है सिलसिला है ये और बढ़ जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा
0: इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो भली से खुद अपनी आंखें डोनेट ना कर पाए, लेकिन वो अगर अवेयरनेस करता है अपने परिवारजनों में, अपने दोस्त यारों में या पड़ोसियों में, समाज में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो यार ऐसे मैं अंधा था, मैंने आई डोनेशन लिया, किसी ने मुझे आई डोनेशन दिया, तो मैं आगे देख पाया, मैं अपनी जीवन बड़ा सुगमता
2: से, परिवार भी कम से कम इस तरह से,
0: तो अगर उनको अवेयर करता है अपने परिजनों को अपने समाज को, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि जो डोनेटेड आई ऑलरेडी है उसको अपन डोनेट कराएं।
2: अब हम शिवपुरी के हिसाब से बात करते हैं, शिवपुरी थोड़ा सा छोटा शहर है, उसकी तुलना में अब हम शहर की बात करें तो हमारे शहर में क्या इस तरह के केसेस आपके हिसाब में कभी आए हैं कि लोगों ने नेत्रदान किया है या किसी को नेत्रदान का लाभ मिला है?
0: अभी मैं पिछले 6 साल से यहाँ पदस्थ हूँ, आई डोनेशन का डोनेशन के केस तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने डोनेशन किया है, लेकिन आई रिसिपिएंट मतलब जिन्होंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
2: दूसरे शहरों से
0: मतलब जिन्होंने जिनकी कॉर्निया शिवपुरी शहरवासियों की कॉर्निया खराब हो गई और उन्होंने बाहर जाके उन्होंने आई डोनेशन लिया है
2: और उसका लाभ मिला है
0: और वो बहुत अच्छी जीवन जी रहे हैं, बहुत स्मूथ जीवन जी रहे हैं, बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, सारे काम अपने सामान्य रूप से कर पा रहे हैं।
2: आपने शुरू में कहा था शिवपुरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आई बैंक का न होना, तो आई बैंक बनने की ओर कुछ हमारा शासन प्रशासन स्तर पर कुछ कार्य जारी है?
0: अभी शिवपुरी जिला चिकित्सालय में तो इस तरह की कोई योजना भी लंबित नहीं है, मेडिकल कॉलेज में इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है
2: कि वहाँ आई बैंक चाहे मेडिकल कॉलेज में बने चाहे जिला चिकित्सालय बने, बनेगा तो शहर के लिए। उन हमारे श्रोताओं के लिए जो नेत्रहीन है उनका लाभ होगा, चाहे आप यहाँ के डॉक्टर के रूप में दें या मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर, ये लाभ दे
0: बराबर
2: लाभ तो मिलेगा। एक प्रश्न से बात खत्म करेंगे, कोई व्यक्ति जन्मजात नेत्रहीन है, क्या वो नेत्रदान का लाभ लेकर अपनी आंखें पा सकता है?
0: जैसे मैंने शुरू में ही बात करी थी, आई डोनेशन का मतलब होता है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को क्योर करना रहता है। अगर किसी जन्मजात अंधत्व है, अगर उसकी जन्मजात अंधत्व कॉर्निया की वजह से नहीं है, तो उसमें अपन आई डोनेशन से कोई लाभ नहीं होगा। अगर उसका जन्मजात अंधत्व कॉर्निया की वजह से उसको अंधत्व है, तो डेफिनेटली उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है और उसको नज़र वापस आ सकती है। अगर उसको अंधत्व है किसी और वजह से है, रेटिना की वजह से है या फिर और कोई कंजेनाइटल जन्मजात विकृति की वजह से है, तो उसमें आई डोनेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, उससे ना उसको नज़र वापस आएगी।
2: आप नेत्ररोग विशेषज्ञ हैं, हमारी इस बातचीत में शामिल हैं, आप हमारे जनता से, हमारे श्रोताओं से, सुनने वालों से, बहनों से, सखियों से क्या कहना चाहेंगे कि वो नेत्रदान क्यों करें?
0: मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया बड़ी सुंदर है, हम लोग आप सब लोग देख रहे हैं, और इसको अगर आप मृत्यु के पश्चात भी आप देखना चाहते हैं तो नेत्रदान जरूर करिए। अभी हम अकेले देख रहे हैं, अगर मैं नेत्रदान करूंगा, दो आंखों का दान करूंगा, तो दो व्यक्ति आपकी आंखों से देखेंगे, तो इससे खूबसूरत दान और इससे खूबसूरत चैरिटी कुछ भी नहीं हो सकती।

0: कि मृत्यु के पश्चात भी लोग आपको याद करें, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई कुछ भी नहीं हो सकता।
1: भले ही हमारे शहर में आई बैंक नहीं है, लेकिन क्या हम नेत्रदान की बात आएगी तो यहाँ का स्टाफ इतना प्रशिक्षित है कि वो आँख आपके घर से लेकर संबंधित इंस्टीट्यूट तक पहुँचा सकेगा?
0: बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यहाँ का डॉक्टर्स, मैं खुद और मेरा जो पैरामेडिकल ऑफिस स्टाफ है, सब एकदम वेल ट्रेंड है। सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी का भी इस इच्छा जाहिर करता
1: कॉल
0: है,
1: आता है
0: कॉल आता है, तो उसको विद इन
1: जल्दी से
0: आवर
1: जल्दी।
0: जल्दी से जल्दी ये सुविधा दे सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉल आए, लोग इच्छा जाहिर करें।
1: उम्मीद है कि कॉल आएगा, आपकी बात को सुनकर लोग प्रभावित होंगे। भारत में तो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम है, हम पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं, तो कुटुंब मानकर आप अपनी नेत्रों का दान कीजिए, जिससे आपके पश्चात दूसरों की नजर से दुनिया को देखते रहें और यूं ही हमारी दुनिया चलती रहे। तो दृष्टि है तो सृष्टि है, इस बातचीत पर अब हम लेते हैं विराम। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, आप हमारी बातचीत का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, जिसका विषय था दृष्टि है तो सृष्टि है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, जिनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। बहनों, बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म कुछ कुरकुरा सा खाने को मिल जाए तो मौसम का आनंद दुगना हो जाता है। आज खाना खजाना में हम लेकर आए हैं एक ऐसी स्वादिष्ट और कुछ अलग रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकती हैं, क्रिस्पी कॉर्न चीज बाइट। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न, 2 मध्यम आकार के उबले आलू, आधा कप कद्दूकस किया हुआ चीज, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और तलने के लिए तेल। सबसे पहले उबले हुए स्वीट कॉर्न को हल्का दरदरा पीस ले। अब एक बर्तन में उबले आलू, कॉर्न, कद्दूकस किया हुआ चीज, प्याज और हरी मिर्च डालें। इसमें ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च, नमक, सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाकर हल्का सा चपटा करें। चाहे तो बीच में थोड़ा अतिरिक्त चीज रखकर उन्हें बाइट्स के आकार दे सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन बाइट्स को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। तैयार है हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी कॉर्न चीज बाइट्स। इन्हें आप हरी चटनी, टोमेटो सॉस या अपनी पसंद के किसी भी डिप के साथ परोस सकते हैं। बहनों, बारिश के मौसम में स्वाद के साथ स्वास्थ्य का और स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉर्न व अन्य सामग्री को अच्छी तरह धोकर और ठीक से पकाकर ही इस्तेमाल करें तथा ताज़ा तैयार करके ही परोसें। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: राजाधिराज भगवान महाकाल अवंतिका।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं मलखान सिंह लोधी का गाया लोक भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोइनुद्दीन खां की गई कुछ गजलें। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ में है। विशाल ददलानी ने इस गीत को लिखा, संगीत विशाल शेख।

का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मिली फिल्म से, जिसे गाया AR रहमान और शाशा त्रिपाठी ने। जावेद अख्तर के बोल, संगीत AR रहमान का।

0: ए आर रहमान और शाशा त्रिपाठी की आवाज़ों में गाए मिली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सागर SP समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले में कहा है कि उन्होंने प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और समाधान भी निकाला जाएगा।
2: मैंने अपने प्रभारी मंत्री से कहा है, अधिकारी से भी कहा है कि वो वहां तुरंतवधि से एक तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी निकालेंगे और इस तरह की घटनाओं हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत UAE के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री AIM कांग्रेस 2026 में भी शामिल होंगे। इंदौर में गोगाज नवमी के अवसर पर सफाई मित्रों के सम्मान में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों से स्वयं सफाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साल भर शहर में झांकियों और जुलूसों के बाद सफाई मित्र शहर को स्वच्छ करने का काम करते हैं, लेकिन गोगा नवमी पर वे अवकाश पर रहते हैं। ऐसे में इंदौरवासियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं अपने शहर को साफ रखें। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा है कि गोगा नवमी की रात भर झांकियां निकलती हैं। इस दौरान सभी नागरिक स्वच्छाग्रही बनकर अपने गली, मोहल्ले और सड़क की सफाई करें। यह संदेश दें कि इंदौर हमेशा स्वच्छ रहेगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बरगी, भदभदा और कलियासुर डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सीधी में लैंडस्लाइड उमरिया में महिला के बहने और बहियर में मार्ग बंद होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना और सतना शामिल हैं। अगले 3 दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित जल के प्रभाव और उसके समाधान के लिए कलेक्टर ने मेघनगर तथा आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। विदिशा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तत्परता से 2 मासूम बच्चों की सांस की नली में फंसे खाद्य पदार्थ को निकाले जाने से उनकी जान बच गई। सीहोर स्थित VIT यूनिवर्सिटी में तमिल प्रांतवासियों की संस्था कम्मन कलगम ने के एक दिवसीय रंगारंग राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से आए तमिल भाषियों ने भाग लिया। शिवपुरी जिले में 4 दिन से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके कारण सिंध नदी में पानी बढ़ने से मड़ीखेड़ा डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। नीमच के जावद में सावलिया सेठ मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण पाथय न्यास, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से श्रीकृष्ण पर्व का भव्य आयोजन हुआ। जबलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के

0: खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी हैं। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार 2रे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बाल मित्रों, आप सभी का कार्यक्रम बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अनुराधा दीदी। बच्चों, आज हमारे साथ हैं स्कूल के छात्र और छात्राएं, और ये बच्चे हमारे लिए तैयार करके लाए हैं ढेर सारी बाल प्रस्तुतियाँ। क्यों बच्चों, लाए हो ना आप लोग?
1: जी दीदी।
0: आया मौसम बदला बदला, रखना है सेहत का ध्यान, बीमारी को दूर भगाकर बनना है हमको बलवान, दिन भर पानी खूब है पीना, पर फ्रिज का पानी नहीं है पीना, फल सब्जी सब भरपूर खाना, अटर शटर से दूरी बनाना। आया मौसम बदला बदला, रखना है सेहत का ध्यान। क्या समझे बच्चों?
2: हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए।
0: अभी क्यों मना कर रहे हैं हम फ्रिज का पानी अब पीने से?
3: दीदी, मौसम बदल गया इसलिए।
0: मौसम बदल गया है, और कौन सा महीना शुरू हो गया है?
2: सितंबर।
0: तो बच्चों, अब सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि बाहर से आने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोना है।
3: दीदी, हाथ साबुन से धोना है, ये भी हमें पता है।
0: पता तो आप सभी को सब कुछ रहता है कि साबुन से धोना है, लेकिन साबुन से भी हाथ कितनी देर तक धोना चाहिए? 20 सेकंड तक आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।
1: जी।
0: इस बात का भी ध्यान रखें कि बाहर से आने पर सिर्फ हाथ ही नहीं, पैरों को भी अच्छे से धोए, क्योंकि पैरों से घर के अंदर गंदगी और जर्म्स आने का खतरा रहता है। अच्छा, इन सब बातों के साथ एक बात का ध्यान और रखना है कि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से लेना है।
1: जी दीदी।
0: अच्छा ये बताओ, 7 से 8 घंटे की नींद क्यों जरूरी है?
3: दीदी, माइंड फ्रेश हो जाता है,
0: और
4: सुबह के टाइम पे जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी और अच्छी और एनर्जेटिक फील करती है।
0: नींद क्यों जरूरी हुई? क्योंकि वो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती है।
5: दीदी, कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
0: बिल्कुल सही बात। अच्छा, और क्या करना है पता है आपको? रोज 1 घंटा खेलना है, लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल पर नहीं, बल्कि कोई भी आउटडोर गेम। कौन कौन से खेल होते हैं?
6: क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल,
7: कबड्डी, खो खो,
8: बैडमिंटन,
0: बहुत सारे खेल होते हैं ना। इससे आपका शरीर मजबूत होगा, एकाग्रता में सुधार होगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और क्या होता है, खेलने में मजा भी बहुत आता है।
3: दीदी, मुझे खेल पे कविता आती। शाम को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेले, आंख मिचोली गिप्पा खेले, गिल्ली डंडा सबको भाता, सितौलिया भी मजा दिलाता, संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते।
0: बहुत बढ़िया कविता, ताली बजाओ जोर से। कविता तो सुनाई, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, अपना नाम बताइए।
3: पूर्वी मालविया।
0: पूर्वी, आप कौन कौन से खेल आप खेलती हैं?
3: बैडमिंटन, हाइड एंड सीक।
0: बाहर जाके आप खेलते हैं तो क्या होता है, आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और क्या करते हैं, खूब मिलके
1: मजे करते हैं।
0: बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम है?
9: अंशिका।
0: और आपकी हॉबीज क्या क्या है?
9: कराटे।
0: कौन से बेल्ट तक पहुंच गई आप?
9: ब्लैक।
0: ब्लैक बेल्ट हो आप? तो अंशिका, कितनी मेहनत करती हो आप?
9: बहुत सारी।
0: और खुद में क्या चेंज देखा?
9: मेरे में थोड़ी सी पावर आई और डिसिप्लिन भी थोड़ा सा बढ़ा।
0: अंशिका के लिए ताली बजाओ।
5: दीदी, मेरे पास एक कहानी है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं?
0: जी सुनाइए, अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम एनी जॉन है। एक समय की बात है, चीकू नाम का एक छोटा खरगोश था। उसे गाजर, हरी सब्जियां और फल खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर सिर्फ चाट, पकौड़ी, चिप्स और

0: ट्रॉफियां खाता रहता था। एक दिन जंगल में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चीकू ने भी उसमें हिस्सा लिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, चीकू तेजी से भागा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और वह रास्ते में ही बैठ गया। उसके दोस्त कछुए ने, जो रोज हरी सब्जियां और ताजे फल खाता था, दौड़ जीत ली। चीकू बहुत उदास हुआ और रोते हुए डॉक्टर भालू के पास गया। उन्होंने चीकू को बताया कि तुम्हारा शरीर एक गाड़ी की तरह है। अगर इसमें अच्छा ईंधन यानी फल सब्जियां पौष्टिक आहार नहीं डालोगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। जंक फूड खाने से शरीर कमजोर हो जाता है। चीकू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से बाहर का जंक फूड छोड़ दिया। वह रोज सुबह ताजी गाजर खाने लगा। कुछ ही दिनों में चीकू का शरीर मजबूत और फुर्तीला हो गया।
1: बहुत ही अच्छी कहानी, जोर से ताली बजनी चाहिए। आपकी कहानी न सिर्फ बढ़िया थी बल्कि शिक्षा प्रद भी थी। क्या सीखा आप लोगों ने इस कहानी से?
2: कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए,
3: हरी सब्जियां खाना चाहिए।
1: बिल्कुल, जंक फूड का अधिक सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। अस्वस्थ फैट के कारण अत्यधिक वजन बढ़ने लगता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है और इसके अलावा पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। पेट दर्द की समस्या होने लगती है। जैसे आपने जो कहानी सुनाई थी उसमें चीकू को भी क्या हो रहा था?
4: पेट में दर्द।
1: क्यों हो रहा था?
2: क्योंकि वह रोज जंक फूड खाता था।
1: जंक फूड से और भी नुकसान हो सकते हैं, जैसे दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। अधिक कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं, उसमें कीड़ा भी लग सकता है। अच्छा, पता है कुछ बच्चे कहते हैं कि जंक फूड खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है, लेकिन वास्तव में ये एनर्जी सिर्फ खाने के तुरंत बाद ही मिलती है। थोड़ी देर बाद शरीर में भारी सुस्ती और थकान आने लगती है। जंक फूड में प्रिजर्वेटिव्स और शक्कर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन आने लगता है और एकाग्रता भी कम होने लगती है। इस उम्र में आपको पोषक तत्वों की जरूरत अधिक होती है, इसलिए खूब फल, हरी सब्जियां, दाल खाइए और मम्मी से इन्हें न खाने के बहाने मत बनाइए। आप में से कोई बहाने बनाता है मम्मी से कि आज मैं ये नहीं खाऊंगी, ये सब्जी नहीं खाऊंगी?
2: मेरी मम्मी अगर जैसे कि करेले की सब्जी या बैंगन की सब्जी बनाती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं बहाने बना देती हूँ, जैसे कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, आज मुझे खाना खाने का मन नहीं है, ऐसा बोलती हूँ मैं।
1: फिर क्या खाना चाहती है?
2: बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया या फिर नूडल्स, ऐसी सब चीजें,
1: ऐसी सारी चीजें। लेकिन ऐसी सारी चीजें आपको पता है ना कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है।
2: जी दीदी।
1: तो फिर क्या करना चाहिए?
2: हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए। दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गई, ऐसी सारी चीजें खानी चाहिए।
1: बिल्कुल, किसी और के पास भी कुछ बहाने हैं? सारे बच्चे अच्छे हैं, सब हरी सब्जियां खाते हैं, सब लौकी भी खाते हैं, सब गिलकी भी खाते हैं। खाते हो क्या?
5: नहीं खाते।
1: तो लौकी गिलकी की जगह फिर कौन कौन सी सब्जियां पसंद होती है?
6: भिंडी, आलू की सब्जी हो गई, पत्ता गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, पालक पनीर, दाल मखनी,
1: सारी सब्जियां अच्छी होती है। थोड़ी थोड़ी तो खाने लग जाइए तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब से लौकी, गिलकी, कद्दू, बैगन भी थोड़ी थोड़ी खाएंगे?
5: जी दीदी।
1: फिर आप सब लोग प्रॉमिस करिए कि जंक फूड
5: कम से कम खाएंगे।
1: हाँ, कम से कम खाओ और ज्यादा से ज्यादा क्या खाना है?
3: हरी सब्जी, घर का खाना।
1: बहुत बढ़िया, सब ताली बजाओ आप सारे बच्चों के लिए। अब मैं बात करूंगी ध्रुव से।
3: जी दीदी।
1: जितने भी सब लोग बैठे ना उसमें मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा मस्ती करते हो।
3: जी दीदी।
2: मस्ती कर,
1: मस्ती खोर हो ना। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अब आप कुछ कविता तैयार करके लाए हो सुनाने के लिए?
3: जी दीदी, मेरी कविता का शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊ, उस धरती पे बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फलों से चिड़िया बोले, प्यार की खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशे मैं अपने हर अंग भिगोले, लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, हो सकता है पास तुम्हारे अपना कुछ धरती हो, फूल फलों से लदा बगीचा और अपनी धरती हो, हो सकता है छोटे से क्यारी महक रही हो।
1: ताली बजाओ ध्रुव के लिए। इस कविता को सुनकर क्या समझ में आया?
4: हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है।
7: मेरा नाम मुस्कान मानिक है और मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, पेड़ लगाओ। एक पेड़ हम आज लगाएं, उनको मिलकर रोज बचाएं। पेड़ हमें फल फूल देते, ठंडी छाया शुद्ध हवा देते, पक्षी आकर घर बनाएं, मीठे मीठे संगीत सुनाएं। पेड़ हमारे सच्चे साथी, इनसे सुंदर दुनिया सारी।
1: बहुत बढ़िया कविता। और किसके पास है कविता?
8: मेरे पास। मेरा नाम दशविता थापा है और मैं आज आप सभी को बेटी के ऊपर कविता सुनाने वाली हूँ। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात ही बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी, प्यार सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी, बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी।
1: बेटियां आज क्या नहीं कर रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
9: मेरा नाम सुमालिया कुर्रे है।
1: कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं आप?
9: अगासुर का वध। अगासुर बकासुर का भाई था। जब श्री कृष्ण के हाथों बकासुर के वध के बारे में अगासुर को पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब अगासुर श्री कृष्ण का वध करने अपने भाई बकासुर की मौत का बदला चाहता था। एक दिन वह उस स्थान पर गया जहां श्री कृष्ण बलराम और दूसरे ग्वाले खेल रहे थे। उनके पशु पास में ही चर रहे थे। अगासुर ने एक बहुत बड़े सांप का रूप धारण कर लिया। वह वास्तव में बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो नीचे वाला जबड़ा धरती को छू रहा था और ऊपर जबड़ा आकाश को छू रहा था। उसकी लंबी जीभ धरती पर लाल दरी की तरह फैली हुई थी। इन सबसे अनजान बच्चे खेल में व्यस्त थे और वह पहुंच गए जहां अगासुर धरती पर पड़ा हुआ था। वह सभी शीघ्र ही उसके मुंह के अंदर चले गए। अंततः कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए और उसके मुंह के भीतर चले गए। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह बंद कर सके, कृष्ण आकार में बढ़े और लंबे होने लगे। कृष्ण शीघ्र ही इतने लंबे और बड़े होने लगे, अगासुर के मुंह में अटक गए। अगासुर पूरी तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था और मुंह भी बंद नहीं कर पा रहा था। कुछ ही समय में अगासुर की मौत हो गई, लेकिन वह अब भी सांप के रूप में था। अब सांप का बड़ा मुंह एक गुफा की तरह लग रहा था। बच्चे अगासुर के पेट से बाहर आ गए और उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक और असुर का वध कर दिया।

0: प्यारा प्यारा सा गीत हो गया, अब क्यों ना हंसी के फुहारे हो जाए। किसी के पास हैं क्या चुटकुले?
1: जी दीदी, मच्छर का बच्चा।
0: कशिश देखो कितने अच्छे से चुटकुले सुना रही है कि चुटकुले सुनाते सुनाते पहले ही वो खुद ही हंस दे रही है।
1: मच्छर की उड़ान, मच्छर का।
0: देखो ये चुटकुला सबसे अच्छा है, पूरा हुआ नहीं लेकिन हंसी पहले से ही सबको आ रही है। अच्छा मुझे लगता है कशिश जो चुटकुले तैयार करके लाई है वो खुद भी हंस रही है और सुना नहीं पा रही है, तो कशिश के चुटकुले जो है वो कोई और सुना दे। कशिश सुनकर फिर और अच्छे से हंस लेगी उस पर।
1: मेरा नाम काजल साहू है, कशिश वाला चुटकुला मैं सुना रही हूँ। मच्छर की उड़ान। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़कर वापस आया। मच्छर का पापा, कैसा लगा? मच्छर का बच्चा, बहुत अच्छा पापा, मैं गया, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे।
0: अब अगला चुटकुला फिर से कशिश सुनाएगी।
1: इतिहास की क्लास, टीचर, पप्पू बताओ शाहजहां ने ताजमहल कहाँ बनाया था? पप्पू, सर जमीन पर। टीचर गुस्से में, मेरा मतलब है किस जगह पर? पप्पू, सर आगरा में जमीन पर। चींटी और हाथी की लड़ाई, टीचर, अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाए तो वह कैसे बाहर निकलेगा? पप्पू, बहुत सिंपल है सर, वह गीला होकर बाहर निकलेगा।
0: बहुत ही मजेदार चुटकुले हैं कशिश के। कशिश और चुटकुले हैं आपके पास?
1: जी दीदी,
0: सुनाइए।
1: डॉक्टर और मोटू का पेट। डॉक्टर, तुम्हारा पेट बहुत बाहर निकल आया है, रोज सुबह दौड़ना शुरू करो। मोटू, डॉक्टर साहब दौड़ने से तो जूते घिस जाते हैं, पेट थोड़ी ही घिसता है।
0: जोर से तालियां बजनी चाहिए।
2: मेरा नाम देवव्रत उइके है, मैं भूकंप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भूकंप शब्द दो शब्द भू और कंप से मिलकर बना है। हमारी धरती की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर तक का भाग सख्त है। इस सख्त भाग की ऊपरी परत को भूपृष्ट भी कहा जाता है। इसके नीचे लगभग 200 किलोमीटर का भाग नरम है। यह नरम भाग मेटल कहलाता है। भूपृष्ट कई टुकड़ों में बटा है जिन्हें प्लेटें कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर के भाग में लगातार सरकती रहती है और एक दूसरे से टकराती रहती है। इससे प्लेटों पर दबाव उत्पन्न होता है। जब यह दबाव बहुत बढ़ जाता है तो यह धरती को झंझोर कर रख देता है जिससे भूकंप आता है।
0: अच्छी जानकारी थी।
3: मेरा नाम लक्ष्य जाटव है। दीदी, मैं विनोबा भावे के बारे में बताना चाहता हूँ। आचार्य विनोबा भावे को भूदान यज्ञ के जनक के रूप में जाना जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में कोलाबा जिले के गागोड गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था। लेखक के रूप में उन्होंने कई निबंध, समालोचना आदि की रचना की थी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में स्वराज्य, शास्त्र, गीता, प्रवचन, तीसरी शक्ति आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने गीता मीन्स मदर का मराठी में अनुवाद किया था। विनोबा भावे का निधन 15 नवंबर 1982 को हुआ था। वर्धा में आज भी विनोबा भावे का आश्रम है जो लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
0: तो सब अच्छी अच्छी बातें चल रही है, बीच बीच में मस्ती भी चल रही है आप लोगों की। तो उस मस्ती के बीच में एक काम करते हैं कि जहां आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े, कोई पहेली भी तैयार करके लाएं।
4: मेरे पास है दीदी।
0: नाम बताइए अपना।
4: महक कनारे। चार कोनों का नगर बना, चार कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठ ले एक रानी।
0: किसी को आता है इस पहेली का जवाब? सोचो सोचो। बिल्कुल शांति छा गई है। कितनी कठिन पहेली पूछी है महक ने, किसी को भी इसका उत्तर नहीं आ रहा है। क्या उत्तर है महक?
4: कैरम। दूसरी पहेली
0: पूछो।
4: आड़ी थी मनबाड़ी थी, राजा जी के बाग में तिसाला ओढ़े खाड़ी थी।
0: इस पहेली का उत्तर किसे

0: है?
1: दीदी मुझे पता है।
0: क्या नाम है आपका?
1: पूर्वी मालविया।
0: बताओ क्या है उत्तर?
1: भुट्टा।
0: भुट्टा, ताली बजाओ पूर्वी के लिए।
2: उनमें ज्ञान है पर किताब नहीं, वो श्रेष्ठ है जिनके बिना किताबों का भी कोई मान नहीं, बताओ क्या?
1: मुझे पता है दीदी, शिक्षा।
0: शिक्षा, और आपका क्या नाम है?
1: कल्पना।
2: आखिरी पहेली, वो नटखट है और गुणी भी है, वो राजा है और ग्वाला भी, वो मैया का लाला भी है और नंद का दुलारा भी, दीदी मुझे पता है।
0: क्या उत्तर है?
2: श्री कृष्ण।
0: आपका क्या नाम है?
2: विधि।

0: मेरा नाम लावण्य गुप्ता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में तो आपने सुना व पढ़ा ही होगा। स्वामी विवेकानंद का घरेलू नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था। बालक नरेंद्र अत्यंत उत्साही, कर्मठ और तेजस्वी था। बालक नरेंद्र को बचपन से ही संगीत, कला और खेलों में रुचि थी। ये खेल खेल में ही राम, सीता, शिव आदि की पूजा करते थे। इनकी माता जी भी इन्हें बचपन से गीता, रामायण, महाभारत आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी और बालक नरेंद्र बड़े चाव से उनकी कहानियाँ सुना करते थे। एक बार की बात है, बालक नरेंद्र अपनी माँ के साथ बनारस के एक मंदिर के दर्शन करने लौट रहे थे कि अचानक बहुत सारे बंदरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बंदर उनके हाथ से प्रसाद को छीनने लगे। बालक नरेंद्र डर गया और स्वयं को बंदरों से बचाने के लिए भागने लगे, परंतु बंदर तो बंदर थे, भला कैसे पीछे छोड़ देते। वहीं पास में एक वृद्ध साधु खड़े खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने बालक नरेंद्र को रोका और कहा कि डरो मत, रुको, उनका सामना करो, देखें कि आगे क्या होगा। वृद्ध साधु की बात सुनकर बालक नरेंद्र में जोश व हिम्मत आ गई। बालक नरेंद्र पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। बालक नरेंद्र आश्चर्य से भर उठे। जब सभी बंदर भाग खड़े हुए, बालक नरेंद्र ने साधु के चरण स्पर्श करे। आगे चलकर यही बालक स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस घटना की जिक्र कई वर्षों बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि परिस्थितियों से भागो मत, पलटो और उनका सामना करो। यदि हम अपने जीवन में आई समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करेंगे तो निश्चय ही बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा।
1: परिस्थितियों से भागो मत, उसका सामना करो, सही बात है
2: जी दीदी।
1: आपके सामने कठिन परिस्थितियां भी आएंगी। आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीजें पहली बार दूसरी बार में समझ नहीं आती, तो हमें क्या करना है, हमें उससे भागना नहीं है, हमें बार बार उस चीज को पढ़ना है, उसके बारे में समझना है और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो अपनी टीचर

0: टीचर की या अपने दोस्तों की मदद लेना है। एक दूसरे की मदद करेंगे ना आप लोग?
1: जी दीदी।
0: आज आपको मजा आया?
1: जी दीदी।
0: तो अनुराधा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
1: जय।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत यूएई के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मिली जिम्मेदारी को पूरी तरह मेहनत के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बरगी, भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुँच गए हैं। फाइनल में आज दोपहर में भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हेजी टिंग और रेन जियांग यू से हुआ। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। हम आपको जानकारी दे दें आज दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6 बजे। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे। डगर विकास की ये कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति रहेगा। विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:30 रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से, और आकाशवाणी दिल्ली से ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में एन

कुमार प्रशांत का कर्नाटक गायन, समय रहेगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले। हम आपको बता दें, आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर ग्राम सभा होगी, जिसमें 7:30 से 8 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर मेदिनी प्रताप से हैं। ये थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन थोड़ी देर के लिए बंद होता है। शाम 5 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार है मलखान सिंह लोधी। पहले सुनते हैं लोक भजन।

मलखान सिंह लोधी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। ये प्रस्तुति भी आकाशवाणी शिवपुरी की है। सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोईउद्दीन खां की गई कुछ गज़लें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अभिमान फिल्म से है, आवाज लता मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत एस डी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ आरजू फिल्म से। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: मेरा साया फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत UAE के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में विशेष निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। उन्होंने कहा कि वे मिली जिम्मेदारी को पूरी मेहनत के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बरगी, भदभदा और कलियासोट डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए सिंधिया जी सोरहाण।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तव्हां सभिनी खे मां मनोज सोनी पंजवाणीअ पारां सिक भरी नमस्ते। दोस्तों असां सिंधी समाज जी तिथियुनि जे हिसाब सां सावण अञा हली रहियो आहे, माना असां सिंधियुनि जो सावण अञा चालू आहे। हिन में अचण वारा सिंधियुनि जा ॾिण वार असां मिली करे मल्हाए रहिया आहियूं। घणेई ॾिण आहिनि जेके असां सिंधियुनि जा ख़ासि करे आहिनि, पर साथियूं अॼुकल्ह जे दौर में घणेई सिंधी इन्हनि ॾिणनि वारनि खे विसरंदा था वञनि पिया। उन्हनि खे पूरी ॼाण ई कोन्हे त असांजा ही ॾिण छो मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं कंहिं रीति मल्हाया वेंदा आहिनि। साथियो जेके अॼु जी नई टही आहे जा वर्किंग पर्सन आहिनि, जेके कम था कनि ॿाहिरि हलण वारी, हिंदी ऐं अंग्रेजी भाषा जे करे सिंधी ॿोलीअ खे विसारींदी था वञनि। एतिरे क़दुर जो ॿाहिरि त छॾियो, घर में बि पंहिंजी सिंधी ॿोली नथा ॻाल्हाइनि। पंहिंजी सिंधी ॿोली बचाइणु असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे, छो जे इहा सिंधी ॿोली ई असां वटि विरासत जे रूप में आहे। इहा रुॻो असांजे ॻाल्हाइण ॿोलाइण जी भाषा कोन्हे, पिणु इहा असांजी धरोहर आहे। सिंधी ॿोली असांजे इतिहास, असांजे रवाजनि, असांजे लोकगीत, साहित्य ऐं परंपराउनि सां

सुषमा श्रेष्ठा, गीत संगीत कान मोतिहार। साथियों, सिंधियत जी धूम सा सराबोर हिन गीत का पो हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॼाण पासे। शिक्षक दिवस, शिक्षक याने गुरु असांजे जीवन में घणो अहम किरदार अदा कंदा आहिनि। शिक्षक सिर्फ़ु असांखे किताबी ज्ञान कोन ॾींदा आहिनि, पिणु गॾोगॾु ॾींदा आहिनि जीवन जीअण जी सही राह, अॻियां वधण जी प्रेरणा ऐं जीवन में सफल थी करे सभिनी सां गॾिजी हलण जी प्रेरणा। इहे असांखे गुरु ही ॾींदा आहिनि, असांजा शिक्षक ही ॾींदा आहिनि। हिन करे ई इन्हनि महान गुरुनि खे सम्मान ॾियण लाइ हर साल 5 सितंबर ते शिक्षक दिवस मल्हायो वेंदो आहे। इहो ॾींहुं भारत जे महान शिक्षक, दार्शनिक ऐं देश जे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे जनम ॾींहं जे मौके ते मल्हायो वेंदो आहे। असांजे गुरुनि जी ॾिनल शिक्षा असां पंहिंजे जीवन में अमल आणियूं ऐं उन ते हलूं। गुरु असांखां इहो ई चाहींदा आहिनि, असांखे सतगुरुनि जूं ॻाल्हियूं हमेशह यादि ईंदियूं आहिनि।

ही गीत गायो हो कमला केसवाणी ऐं संगीत बि हो कमला केसवाणीअ जो। गीत लिखियलु हो स्वामी टेऊराम महाराजनि जो। साथियो, हिन वक़्तु राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह हली रहियो आहे। राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह हर साल मल्हायो वेंदो आहे। इन हफ़्ते खे मल्हाइण जो ख़ासि मक़सदु माण्हुनि खे सुठी सिहत ऐं संतुलित आहार जी अहमियत जे बारे में ॼाण ॾियणु ऐं सुजाॻी आणणु आहे। सुठो खाधो असांजी सिहत लाइ तमामु ज़रूरी आहे। अगरि असांजो खाधो पोषण सां भरपूर हूंदो त असांजो शरीर तंदुरुस्त ऐं मज़बूत बणिजंदो। असांजे रोज़ाना जे खाधे में अलॻि अलॻि

0: क़िस्मनि जा पोषक तत्व हुजणु तमामु ज़रूरी आहिनि, जिन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट ऐं वसा शामिल आहे।
1: उमिरि कहिड़ी बि हुजे, पोषक आहार तमामु ज़रूरी आहे। साथियो, ॻाल्हि पई हले इन बारे में, ऐं इन ई बारे में अञा वधीक असां अॼु ॼाण हासिलु कंदासीं अॼु जे असांजे ख़ासि महिमान डॉक्टर प्रीति मोतियानी जी खां। सभिनी खां पहिरियों त डॉक्टर साहिबा, तव्हांजो खोड़ खोड़ स्वागत आहे। तव्हां पंहिंजो समय कढी करे असांजे स्टूडियो में आया।
2: जय झूलेलाल, नमस्कार। सभिनि श्रोताउनि खे मुंहिंजी तरफ़ सां वाधायूं ऐं प्यार। अॼु पोषण आहार ते ॻाल्हाए करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी थिए पई।
1: डॉक्टर साहिबा, पोषण आहार असां इहो ॿुधंदा त आहियूं, पर इनखे सवले अखरनि में कीअं सम्झूं? आहार खाधो त सम्झ में अची वियो, पर उन में जेके पोषण आहिनि या पोषक तत्व आहिनि उनखे कीअं सम्झूं?
2: जी, ॾाढो सुठो सवाल पुछियो तव्हां। पोषण आहार मतलबु हिकु बैलेंस डाइट खे चइबो आहे। इन जो मतिलबु सिर्फ़ु पेट भरणु न आहे, इन जो असली मतिलबु आहे असांजी सही थाली और असांजी सही प्लेट, जंहिंमें कि सभु हुजे जेको असांजे शरीर खे ताक़त ॾिए, असांखे बीमारियुनि सां बचाए ऐं असांजे शरीर जो विकास करे। असांजी थाली में पंज शयूं ज़रूरु हुजणु घुरिजनि। पहिरियों नंबर ते ईंदो आहे अनाज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जीअं कणिक, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, जेके असांजे शरीर खे ताक़त ॾींदा आहिनि। ॿिए नंबर ते अचे थो प्रोटीन, जीअं कि दालियूं, मुङ, चणा, राजमा, अंडा, पनीर, जेके असांजी मसल्स जी ग्रोथ लाइ ज़रूरी आहिनि। टे नंबर ते ईंदो आहे साग भाॼियूं, साई भाॼियूं, फल, जेके असांजे शरीर खे विटामिन्स और मिनरल्स ॾींदा आहिनि। चौथे नंबर ते ईंदो आहे दूध, दही, पनीर, जेके असांजे शरीर में कैल्शियम जी मात्रा पूरी कंदा आहिनि और असांजी हॾियुनि जी मज़बूती लाइ ज़रूरी आहिनि। पंजे नंबर ते अचे थो फैट। फैट ॿ तरीक़े जा हूंदा आहिनि, हिकु हूंदो आहे गुड फैट, हिकु हूंदो आहे ट्रांस फैट। जेके तरल पदार्थ हूंदा आहिनि मार्केट में, तेल खे जेको बार बार गरम कंदा आहिनि, उन में ट्रांस फैट वधी वेंदो आहे, जंहिंसां हार्ट अटैक जी बीमारियूं वधीक ॾिसण में थियूं मिलनि। इन करे गुड फैट थोरी सी मात्रा में अगरि असां घी या तेल फुल्के ते मथां लॻाए था खाऊं त उहो असांजे शरीर खे ऊर्जा ॾींदो आहे।
1: डॉक्टर साहिबु, तव्हां ॿुधाई हिकु थाली जंहिंमें पंज शयूं तव्हां ॿुधायूं, उहे हुजणु ज़रूरी आहिनि। सुठो खाधो हुजे ऐं जेके फल वग़ैरह जा तव्हां ॾुधु ॾेई ॿुधाया, इहे सभु उन में हुजणु खपनि। पर अॼुकल्ह इन थालीअ ते ध्यानु तमामु घटि आहे ऐं माण्हुनि जो ध्यानु आहे ॿाहिरां जे खाधे ते। वॾा हुजनि, नंढा हुजनि, सभिनी खे ॿाहिरियों खाधो खपे। इहो चवंदा आहिनि न सिंधियुनि में, चटे जी बीमारी थी पई आहे, जंक फूड वग़ैरह। हालांकि सभिनी खे ख़बर आहे शरीर लाइ हानिकारक आहिनि, पर उन खां पोइ बि उन्हनि खे इहो खपे। त थोरो तव्हां असांजे श्रोताउनि खे ॿुधायो त इन्हनि सां कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान आहिनि।
2: जी, इहा ॾाढी सोचण वारी ॻाल्हि आहे। जंक फूड जीअं कि ॿाहिरियों खाधो, जीअं समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, अॼुकल्ह ॿारनि खे इहो वधीक पसंदि ईंदो आहे, छो कि इहो सिर्फ़ु असांखे टेस्ट ॾींदो आहे। असांजो पेट त भरे छॾींदो आहे पर असांजे शरीर खे सही पोषण न ॾींदो आहे।
1: बिल्कुलु,
2: सिर्फ़ु असांखे पेट ई न भरिणो आहे, असांखे उहे शयूं खाइणियूं आहिनि जंहिंसां असांजे शरीर खे कुझु ताक़त मिले। इन सां ॿारनि में, जेके अॼुकल्ह जंक फूड हलनि था, इन सां ॿारनि में अनीमिया, यानी कि खून जी कमी, इहो ॾाढो ॾिसण में थो मिले। सुस्ती थियणु, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, इन्हनि सभिनि जी कमी थी वेंदी आहे। वॾनि में, ॿुढनि में मोटापो, शुगर जी बीमारी, BP जी बीमारी ॾाढी ॾिसण में मिलंदी आहे। असांखे स्वाद ऐं सिहत, इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि मां सिहत खे पहिरियों चुनणो पवंदो, न कि स्वाद खे।
1: डॉक्टर साहिबा, तव्हां हींअर ॻाल्हि कई एनीमिया जी। डायबिटीज़ ऐं एनीमिया अहिड़ी बीमारी आहे, हालांकि सभिनी समाजनि में आहे, पर असांजे सिंधी समाज में असां ॾिसंदा आहियूं त ख़ासि करे इहे ॿई बीमारियूं वधीक आहिनि। ईअं छो?
2: जी, इन्हनि ॿिन्हिनि बीमारियुनि जेके आहिनि, इन जो वधण जो कारण हिकु ई आहे कि असांजो खान पान सही कान्हे। ॿारनि खे अॼुकल्ह ॾिसो त जंक फूड, कुरकुरे, चिप्स, बुख थी लॻे त, पहिरियों जे ज़माने में असां नंढा हूंदा हुआसीं त मूंखे यादि आहे, मम्मी बुख लॻंदी त कुझु बादाम ॾेई छॾींदा, अखरोट ॾेई छॾींदा, मूंगफली ॾेई छॾींदा खाइण लाइ। पर अॼुकल्ह ॿारनि खे ॾिसण थो मिले कि ठीकु है बेटा, 10 रुपए लो, पैकेट ले आओ,
1: त सवलो थी पियो आहे।
2: हा, सवलो थी पियो आहे, हर जॻह अवेलेबल बि आहिनि, दुकानूं खुलियूं पई वन, त ॿारनि खे बि टेस्ट थो अचे इहो सभु खाइण में। त इन जी वजह सां अनीमिया ॾाढो ॾिसण में थो मिले, छो कि इहे सभु जेके जंक फूड हूंदा आहिनि कुझु ॾींदा त न आहिनि, शरीर खे सिर्फ़ु पेट भरण लाइ कमु ईंदा आहिनि। ॿियो आहे डायबिटीज़, त उन जो बि इहो ई कारण आहे कि वेठे वेठे अॼुकल्ह सभु अवेलेबल आहे, हलणो आहे कान, दुकान ताईं वञण जी बि महिनत न कंदा आहियूं, बसि जीअं ऑडर कयो घर अची थो वञे 10 मिंटे में। त इन सां डायबिटीज़, ॾाढो यंग पेशेंट में बि अॼुकल्ह मतिलबु नंढे नंढे ॿारनि में 18 खां 20 साल जी उमिरि में बि डायबिटीज़ ॾिसण में थो मिले।

0: इन्हनि ॿिन्हिनि मेन बीमारियुनि खां बचण लाइ हिक ई शइ मां चवंदमि की पंहिंजी खुराक सही कयो। शुगर जे मरीजनि खे मां चवंदमि की फाइबर्स पंहिंजी डाइट में वधायो। फाइबर्स यानी की जीअं छिलके वारी दालियूं, कणिक ऐं चणे जो मिक्स मल्टीग्रेन अटो खाओ, रागीअ जो अटो खाओ, रोज़ रोज़ गेहूं जो अटो न खाई करे करे ओट्स, रागी, मल्टीग्रेन अटो खाओ, सलाद वधीक खाओ, पाणी घटि में घटि 7 खां 8 ग्लास पाणी पीओ, मिठो आइटम जीअं हूंदो आहे रिफाइंड जंहिंमें मैदो आहे, शुगर आहे, गुड़, शहद, इहो सभु खाइण खां बचो। और डायबिटीज़ वारे पेशेंट खे स्पेशली चवंदसि की नंढे नंढे अंतराल ते खाइनि, हिकु बार वेही करे पूरी थाली भरे न खाई करे नंढे नंढे, हा, टे टे चारि चारि कलाक में थोरो थोरो खाइनि ताकी शुगर उन्हनि जी हिकदमि न वधे। फल में सेव, पपीतो, अमरूद इहे सभु खाई था सघनि। और अनीमिया जी बीमारी लाइ मेनली जेको हूंदो आहे आयरन जी कमी थी वेंदी आहे।
1: अच्छा।
0: त आयरन सां भरपूर तव्हांखे खुराक खाइणी आहे, जीअं पालक थी वई, मेथी थी वई, गुड़, चणा, चुकंदर, मूंग, इन सभिनि जो सेवन करणु खपे। और आयरन जे अलावा असांखे विटामिन सी जो बि सेवन करणु खपे, जीअं नींबू आहे, आंवला आहे, इहे आयरन खे असांजे शरीर में, खून में जल्दी पहुचाईंदा आहिनि। रोटी खां पोइ अक्सर असां ॾिसंदा आहियूं की माण्हू चांहि कॉफ़ी पीअंदा आहिनि, त रोटी खां पोइ चांहि कॉफ़ी पीअण खां बचणु खपे, छोकी इहे आयरन जी मात्रा खे खून में घुलण खे रोकंदा आहिनि।
1: अच्छा।
0: त विटामिन सी जो सेवन वधायो, चांहि कॉफ़ी जो कम कयो।
1: ओके
0: जी।
1: हालांकि चांहि कॉफ़ी त उहे घटि में घटि पीअणु खपे, पर खाधे खां पोइ बिल्कुलु हिन खे अवॉइड करणु खपे।
0: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहिबा, असांजे घर जा जेके नंढड़ा ॿार आहिनि या जेके वधंदड़ ॿार आहिनि टीनेजर, उन्हनि जे लाइ खाधे में कहिड़ा कहिड़ा पोषक तत्व हुअणु तमामु ज़रूरी आहिनि?
0: जी, ॾाढो सुठो सुवाल पुछियो तव्हां। ॿार असांजो भविष्य आहिनि, त उन्हनि जी ग्रोथ लाइ ज़रूरी आहे की कुझु खुराक में अहिड़ी शयूं शामिलु कयूं जंहिंसां उन्हनि खे पोषण मिले, जीअं की दूध, दही, पनीर उन्हनि खे डेली खुराक में शामिलु करणु खपे, जंहिंसां उन्हनि जो विकास बि थिए और उन्हनि खे विटामिन्स जी कमी बि पूरी थिए। अॼुकल्ह ॿार भाॼियूं बिल्कुलु न खाईंदा आहिनि, असांखे उनखे डेली भाॼियूं खाइणु सेखारणु खपनि। पालक, मेथी, जेतिरी बि सायूं भाॼियूं आहिनि जंहिंमें पोषण थींदो आहे उहो खाराइणु खपे। सुखा मेवा जीअं बादाम थी वियो, अखरोट, खजूर, इहे सभु चिप्स, कुरकुरे खां घणा सुठा आहिनि। गुड़ उन्हनि खे डेली ॾियणु खपे, रोटी खां पोइ थोरो गुड़ खाओ, उन्हनि खे आदत में विझणु खपे ताकी उन्हनि में खून जी कमी, अनीमिया न थिए।
1: जी, ॿारनि जी त तव्हां ॿुधाई, ऐं घर में जेके जाइफ़ाऊं आहिनि त उन्हनि जाइफ़ाउनि खे पंहिंजे पोषक तत्वनि जो कीअं ध्यानु रखणु खपे?
0: हीअ असांजे समाज में ॾाढी वॾी समस्या आहे की घर जूं औरतूं सभिनि खां आख़िर में रोटी खाईंदियूं आहिनि।
1: हाँ,
0: सभिनि खे खाराए, सभिनि जो पेट भरे आख़िर में जेको बचंदो आहे उहो खाईंदियूं आहिनि, जंहिंसां उन्हनि जी खुराक बि घटि थी वेंदी आहे और पोषण युक्त तत्व बि न मिली पाईंदा आहिनि उन्हनि खे। त असांखे उन्हनि जो वधीक ध्यानु रखणु खपे, छोकी जेकर घर जी औरत अगरि तंदुरुस्त आहे त पूरे घर जी सिहत सुठी रहंदी। औरतुनि लाइ मां इहो स्पेशली चवंदसि की उन्हनि खे आयरन और कैल्शियम इन्हनि सां भरपूर मात्रा में खुराक वठणु खपे, जंहिंमें आयरन और कैल्शियम जी मात्रा वधीक हुजे, जीअं की गुड़, साई भाॼियूं, तिल, साबुत, मखाना, फल वग़ैरह, इहे वधीक सेवन में करणु खपनि। जेके गर्भवती महिलाऊं आहिनि या जेके ॿारनि खे दूध पीआरींदियूं आहिनि उन्हनि खे ख़ासि पोषण जो ध्यानु रखणु खपे, छोकी अगरि उहे स्वस्थ रहंदियूं त ॿार जी ग्रोथ बि सुठी हूंदी।
1: हालांकि जाइफ़ू त घणे क़दुरु पंहिंजो ध्यानु रखी वठंदियूं आहिनि, छो जे घर में आहिनि ऐं उन्हनि खे जानकारी बि आहे त इहे ई शयूं असांजे लाइ फ़ाइदे वारियूं आहिनि, पर सभिनी खां वधीक जेका दिक़त थींदी आहे उहा थींदी आहे घर जे वॾनि में, छो जे हिकु उमिरि खां पोइ उन्हनि खे खाइण में बि तमामु घटि शयूं वणंदियूं आहिनि, या त वरी कुझु वॾनि खे वधीक खाइण जो बि लॻंदो आहे मुंहं जे चस्के जो, त उन्हनि खे पंहिंजी सिहत लाइ छा छा खाधे जो ध्यानु रखणु खपे?
0: जी, ॿार चवंदा आहिनि ॿार और वॾा ॿई हिकु समान आहिनि। उमिरि वधण सां छा थींदो आहे, असांजी पाचन शक्ति कमज़ोर थी वेंदी आहे, शरीर में पचाइण जेको रोटी आहे उहो जल्दी न पची पाईंदी आहे, और उमिरि सां गॾु असांजी हॾियूं बि कमज़ोर थींदी वेंदियूं आहिनि।
1: जी जी।
0: त वॾनि खे थोरो सो अहिड़ो रोटी खाइणु खपे जेकी हल्की बि हुजे और पोषण युक्त बि हुजे, जीअं की दाल, खिचड़ी, दलिया थी वियो, सूप थी वियो, उबारियल भाॼियूं खाइणु खपनि जेके जल्दी पची वञनि। वॾनि खे प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स मतिलबु जीअं छाछ हूंदी आहे और नारियल पाणी आहे जंहिंमें सुठा बैक्टीरिया हूंदा आहिनि जेके उन्हनि जे पेट जी शक्ति खे वधाईंदा आहिनि, उन्हनि जी इम्यूनिटी पावर वधाईंदा आहिनि, जंहिंसां उहे उन्हनि खे इन्फेक्शन जो रिस्क घटि थींदो आहे, त इहे शयूं वधीक वठणु खपनि। पाणी उन्हनि खे वधीक पीअणु खपे, घटि में घटि ॾींहं में 8 खां 10 ग्लास उन्हनि खे पाणी पीअणु खपे, जीअं जंहिंसां उन्हनि जो डाइजेशन सुठो थिए। नमक और शुगर जी मात्रा घटि में घटि रखणु खपे, रोटी में जेतिरो भाॼी में लूणु पैदल

0: आहे। बाक़ी मथां वेझी लूणु न खाइणु खपे, छो की उहो मथां जेको लूणु हूंदो आहे उहो सोडियम वधाईंदो आहे और जंहिंसां बीपी जी बीमारी जल्दी थी वेंदी आहे। त शुगर और नमक जी मात्रा नियंत्रण में रखें। वॾनि में अक्सर ॾिसणु मिलंदो आहे विटामिन बी 12, कैल्शियम, विटामिन डी, इहो बि ॾाढो डिफिशंसी थी मिले, त अगरि इन जी ॾाढी कमी आहे त उहे टेस्ट कराए डॉक्टर जी सलाह सां गोरियूं बि वठी था सघनि। हालांकि अॼुकल्ह इहो नंढनि में बि मिले थी विटामिन जी कमी, त सभिनि खे विटामिन डी बी 12 जी कमी लाइ मां चवंदसि की डेरी प्रोडक्ट्स जेके बि हूंदा आहिनि, जीअं दही थी वियो, पनीर थी वियो, दूध थी वियो, इन्हनि जी मात्रा डेली खुराक में शामिलु करणु खपे।
1: जी ज़रूरु, छो जे इहे पोषक तत्व असां लाइ ज़रूरी आहिनि, उमिरि कहिड़ी बि हुजे, इहे ख़ासि करे शयूं जेके आहिनि सभिनी लाइ ज़रूरी आहिनि।
0: जी
1: डॉक्टर साहिबा, जीअं तव्हां चयो नारियल पाणी या ॿियनि फलनि जी ॻाल्हि कई, त ज़रूरी आहे त पोषक तत्व असांखे महांगे फलनि मां ई मिलनि?
0: जी बिल्कुलु न, इहो हिकु ॾाढो वॾो वहम आहे की असां कीवी खाईंदासीं, एवोकेडो खाईंदासीं त इन्हनि सां ई असांखे तंदुरुस्ती मिलनि, त इहो हिकु ॾाढो वॾो वहम आहे। असां कहिड़ो बि सीज़नल फ्रूट खाई था सघूं, जेको मौसमी फ्रूट आहे, जीअं पंहिंजो जैतून आहे, असांजो पपैयो आहे, सूफ आहे, इहे बि ॾाढा वधीक पोषणदेदा फल आहिनि, जेके असांजी इम्यूनिटी बि वधाईंदा आहिनि और बीमारी सां लड़ण जी शक्ति वधाईंदा आहिनि। त ज़रूरी न आहे की तव्हां महांगा फल खाओ, असांजो भिगियल चणा थी विया, मूंग थी विया, इहे बि ॾाढो पोषण ॾींदा आहिनि, इन्हनि में बि ॾाढो प्रोटीन जी मात्रा थींदी आहे। त नॉर्मल सीज़नल जेके बि फ्रूट आहिनि उहे खाइणु खपनि।
1: वॾा हुजनि, नंढा हुजनि, चाहे जाइफ़ू हुजनि, हर माण्हूअ खे पंहिंजे खाधे में पोषक तत्वनि जो कीअं ध्यानु रखणु खपे, तमामु सवले अखरनि में तव्हां असांजे श्रोताउनि खे ॿुधायो। ऐं मां चाहींदुसि त आख़िरीअ में असांजे श्रोताउनि खे तव्हां इन ई ॻाल्हि सां जुड़ियल कोई संदेश ॾियणु चाहियो त?
0: जी मां बसि इहो ई चवणु चाहींदमि की तव्हां घर जो ठहियल सुठो ताज़ो खुराक खाओ डेली। पंहिंजी थालीअ में ॾाढा सारा रंग भरियो, जीअं ॻाढ़ो रंग टमाटर सां, गाजर सां, हरो रंग पालक सायूं भाॼियुनि सां भरो, सफ़ेद रंग दही दूध छाछ सां भरो और पीलो रंग दाल वग़ैरह सां भरो। पाणी ॾाढो सुठो पीओ, घटि में घटि 8-10 ग्लास डेली पाणी पीओ। तेल ऐं मिठो खाइण खां बचो, छो की सिहतमंद रहंदव त ख़ुशि रहंदव।
1: महिरबानी डॉक्टर प्रीति जी, तमामु तमामु सुहिणी ॼाण असांजे श्रोताउनि खे ॾिनी। श्रोताऊं, तव्हां बि अॼु जेका ॼाण डॉक्टर साहिब खां ॿुधी, उमेदु आहे त तव्हां ज़रूरु उन ते अमल कंदा ऐं जंहिं तरीक़े सां उन्हनि जंहिं रीति सां ॿुधाइनि उन तरीक़े सां खाधे में सुधार ज़रूरु आणींदा ऐं पंहिंजी सिहत सुठी बणाईंदा। महिरबानी डॉक्टर प्रीति मोतियाणी जी।
0: जी तव्हांजो ॾाढो धन्यवाद।
1: हिन ॻाल्हि ॿोल खां पोइ हाणे हिकिड़ी नंढड़ी ॼाण अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस जे बारे में। इहो ॾींहुं हर साल 10 सितंबर ते मनायो वेंदो आहे। साथियो, इन ॾींहं खे मनाइण जे पुठियां जेको ख़ासि मक़सदु आहे सो आहे आत्महत्या करण जी दर खे घटाइणु। जेके माण्हू आत्महत्या कनि था उन्हनि खे रोकणु, उन्हनि खे समुझाइणु, पंहिंजे आसे पासे वारनि में अगरि पाण खे अहिड़ा कोई लक्षण ॾिसण था अचनि, जीअं त कोई माण्हू डिप्रेशन में आहे, कोई परेशान आहे, कंहिं समस्या सां जूझी रहियो आहे, त असां उनखे हिमत ॾियूं, उनजो साथ ॾियूं, ॿियो कुझु नथा करे सघूं त घटि में घटि उनखे हिमथायूं, उनखे जीअण लाइ प्रेरित कयूं, छो जे जीवन तमामु अनमोल आहे, क़ीमती आहे। इन क़ीमती जीवन खे असां ईअं ई पंहिंजे हथ सां जाया न कयूं। इन करे ई इहा सुजाॻी आणण जे लाइ ई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या निषेध दिवस मनायो वेंदो आहे। साथियो, असांजा साथी भले असां खां रुठल हुजनि, किथे बि हुजनि, पर हयात हुजनि, असांजी इहा ई कामना रहंदी आहे।

मास्टर चंद्र जे गायल हिन गीत सां गॾु ई अॼु जे कार्यक्रम जो समय बि पूरो थी रहियो आहे। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे। वरी मिलंदासीं, सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें सुनिएगा जमुनिया का भाग 19।

0: भैया।
1: ईमानदार और मेहनती रतन की बीवी जमुनिया अपनी मेहनत के बल पर शिक्षा ग्रहण करती है और गांव की सरपंच चुनी जाती है। इसी बीच शहर से आया हुआ एक नौजवान लड़का जयंत, जो इसी गांव की लड़की मेघा के साथ गांव घूमने आया है, वो जमुनिया को पसंद करने लगता है और बिना किसी लंबे प्रेम और अंतरंगता के व्यवहारिक स्तर पर वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अंततः आपस में शादी का फैसला भी कर लेते हैं। अब आगे।
2: अगर अपने गांव तक सड़क होती और वहां से बस चला करती तो कितना अच्छा होता ना।
3: जमुनिया, यही तो सोचना है और इसे एक दिन हकीकत बनाना है।
2: अरे लो, बस आ गई, बैठते हैं।
3: हाँ, चलो
4: चलो भैया, चलो भक्त बनाने चलो। अरे भैया, पहले भैया, अरे पहले उतरने तो यार।
3: चलो जमुनिया,
2: हाँ
3: यहाँ पर बैठ जाओ।
2: हाँ चलो।
3: अरे देखो देखो, शहर आ गया।
2: अरे हाँ,
3: चलो उतरते हैं।
2: बिल्कुल,
3: यही पास में बीडीओ साहब का ऑफिस है।

0: पैदल पैदल ही चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: क्या बात है राम खिलावन, कैसे आए हो?
3: अरे बे सरपंच आनिए बे जमुनिया जी गांव से।
2: हाँ हाँ, फतेहपुर गांव की सरपंच है वो।
3: आओ उनके साथ में कोई बाबू भी है साहब, जैन साहब।
2: अच्छा अच्छा, देखो दोनों को अंदर ले आओ।
3: हाँ।
2: और सुनो, पूरे सम्मान के साथ लाना।
3: हाँ हाँ हाँ।
2: और 3 कप चाय भी भेज देना।
1: नमस्कार साहब।
2: आइए आइए।
0: नमस्ते बीडियो साहब।
2: नमस्ते जमुनिया जी, बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए।
0: बीडियो साहब, आपका समय बहुत कीमती होगा मैं समझती हूँ, इसलिए थोड़ी मैं जानना चाहती हूँ कि फतेहपुर के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं और उनमें कितना फंड है, ताकि हम उस हिसाब से काम शुरू कर सके।
2: देखिए जमुनिया जी, ऐसा है कि फतेहपुर के लिए सरकार की तरफ से ज्यादा फंड तो नहीं आया है, क्योंकि इस गांव के लिए पहले से ही बहुत सारा फंड दिया जा चुका है और सारे काम भी लगभग पूरे हो चुके हैं। हाँ, केवल एक बेसिक डिस्पेंसरी की बात है, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है। और
0: माफ कीजिएगा बीडियो साहब, गांव में एक भी काम नहीं हुआ है।
2: क्या?
0: आप कहे तो मैं लिख कर दे दूं और आप गांव में आकर खुद देख लें।
2: क्या, ये कैसे हो सकता है? कमाल करती हैं, तब तो फतेहपुर आकर ही देखना होगा। देखना होगा कि ऐसा कैसे हो गया।
0: ऊपर से बीडियो साहब, मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को पट्टा दिया गया है उनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें जमीन नहीं मिली है, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनका पट्टा किस जमीन पर है।
4: बीडियो साहब, मुझे बोलने का हक तो नहीं है, पर अगर आप आज्ञा दे तो बताऊं कि वहां कितनी गड़बड़ी हो रही है।
2: हाँ हाँ जयंत, वो तो मेरी भी समझ में आ रहा है, जमुनिया जी की बातों से ही झलक रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं खुद जाकर गांव में देखूंगा कि कैसा और कितना काम हुआ है।
0: हम आपका इंतजार करेंगे। सर बता दें कि आप कब आएंगे, ताकि उस दिन मैं गांव में रहूं, नहीं तो मैं बांस की डलियां बनाती हूं फिर हाट में बेचने जाती हूं, उसी के भरोसे हमारा घर चलता है सर।
2: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। देखो मैं कल ही आऊँगा। जमुनिया जी, मैं खुद अपनी आँखों से देखूंगा कि कब और कैसे सब हुआ है।
0: जी बिल्कुल। अच्छा हम चलते हैं।
4: नमस्कार
0: सर।
2: नमस्कार।
4: अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? फ्लैश चमकाकर हमारी फोटो खींच रहे हो? क्या हम दोनों की जोड़ी पसंद आई क्या?
5: आप दोनों के चर्चे गांव में हो ना हो, शहर में बहुत हैं। अरे ये हमारे गॉसिप का हिस्सा है, और हाँ हम इसे जल्द ही छापने जा रहा है।
4: तो आज ही छाप लीजिएगा, वरना आपको गॉसिप नहीं मिलेगा, क्योंकि संभवतः कल ही हम शादी कर लेंगे।
5: अरे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया आपने तो। अरे मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूँ।
4: तो भाई पीछा करने की क्या जरूरत है, जब हम शादी करेंगे तो आपके सामने करेंगे, और कम से कम आपको जरूर न्योता देंगे। आइएगा, भूलिएगा मत।
5: थैंक यू वेरी मच।
4: जमुनिया, चलो जब तक बस आती है वहां सामने चलकर चावल के यहाँ चाय पीते हैं।
0: अच्छा चलो, बीडियो साहब ने बात तो बड़े अच्छे से की है ना।
4: हाँ, अरे अरे वो देखो, वो तो दीवान जा रहा है।
0: हाँ लगता है बीडियो साहब ने बुलवाया है उसे, है ना।
4: हाँ
6: अंदर आ सकते हैं बीडियो साहब।
2: आइए दीवान साहब। दीवान साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप फतेहपुर के सरपंच रहे हैं ना?
6: हाँ जी।
2: हमने आपको गांव के विकास के लिए काफी सरकारी फंड दिया, पर आपने तो वहां कुछ भी विकास नहीं किया। अभी अभी वहां की नई सरपंच सब कुछ बता के गई हमें।
6: माफ कीजिएगा बीडियो साहब, वो तो हमारी बुराई करेगी, पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि गांव के सारे फंड बहुत कायदे से इस्तेमाल हुए हैं, और जितना भी काम दिया गया हमने किया है। चाहे तो आप खुद आकर देख लें।
2: देखना ही पड़ेगा। कल आप भी गांव में रहिएगा दीवान साहब। और हाँ, आपके चार्ज का लेन देन हो गया
6: जी? अरे बीडियो साहब, कहा हुआ कि अब कुछ कैश कम पड़ रहा था।
2: हाँ,
6: जिसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। वो कहा हुआ कि पर्सनल यूज में ले लिया था ना।
2: अरे हाउ कैन।
6: अरे सुनिए तो, एक हफ्ते की हमने मौत ले ली है, अब पैसा जुटाकर जल्द ही चार्ज दे देंगे ना।
2: अरे पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दीवान जी? क्या आपको पता नहीं कि चाहे जितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आन पड़े, सरकारी धन का उपयोग आप व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं कर सकते। चलिए कल आपसे गांव में मुलाकात करता हूं।
6: जी
2: जी
6: ठीक है साहब, चलत है।

0: चाय भी हो गई, पर बस नहीं आई अभी तक।
1: आती होगी। अरे वो देखो, दीवान बीडीओ ऑफिस से बाहर निकल रहा है।
0: बड़ा तमतमाया लग रहा है।
1: हाँ, लगता है बीडीओ साहब ने अच्छी फटकार लगाई है।
0: जरूरी है, गलत काम पर फटकार।
1: हाँ, अरे वो देखो बस भी आ गई, चलो चलते हैं।
2: चल ले। क्या बात है दीवान साहब, बड़े गुस्से में लग रहे हो। अरे क्या बीडीओ साहब से कुछ खटपट हो गई?
3: अबे चुप, चल अलग अलग हट, बाजू हट, ट्रैक्टर हम चलाएंगे आज। हाँ
2: बिल्कुल बिल्कुल, मूड फ्रेश हो जाएगा।
3: चाय भी तो दे।
2: हाँ हाँ मालिक, ये लो ना।
3: पकड़ा रहे हैं सबके सब। अरे इस जमुनिया को सरपंची कहाँ मिल गई?
2: हाँ
3: अरे इसने तो हमारे खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया।
2: अरे
3: चुगलखोर चोटी हैं? तमाम शिकायतें वीडियो से लगाई।
2: अच्छा,
3: और वो वीडियो भी ससुर झटके से उसकी बातों में आ गया।
2: अपन देख लेंगे।
3: अरे कहाँ देखेगा, कल गांव आएगा, गांव मौका मुआयना करेगा ससुर। अरे कहाँ से लाऊंगा सड़क, हैंडपंप, अरे मछली पालन के लिए खोजी गई लेक, समझ में नहीं आ रही।
2: अरे काय को चिंता कर रहा हूँ मालिक। 100 बहाने हैं 100।
3: है?
2: हाँ देखो, अरे आपने सड़क बनाई।
3: हाँ?
2: तो पानी बरसा।
3: हाँ?
2: और मिट्टी बह गई।
3: हाँ?
2: अब देखो ना, आपने लेक खुदवाई है, अब मछलियां पाली।
3: हाँ?
2: और लोग ससुरे मछली चुरा कर ले गए।
3: हाँ?
2: और लेक के चारों तरफ अपने खेत की मेड़ लगा दी, मेड़। हाँ और सुनो, जिससे उसमें पानी आता ही नहीं था, और अब लोग उसमें खेती करने लगे हैं। और जिन 3 लोगों की जमीन हमारे कब्जे में है, वो बीडीओ को बता देंगे कि हम पहले से उसको जोत बो रहे हैं, है कि नहीं, और पट्टेदारों को दिया जाना है। अब समय आएगा तो उन्हें जमीन दे दी जाएगी।
3: अरे शाबाश। अरे बड़ा ही चतुर निकला रे तू तो।
2: तुम्हारी सागिरद है मालिक।
3: आ, अरे शाबाश शाबाश, तबीयत खुश कर दी तूने। अब कल की कल देखेंगे।
2: हाँ मालिक।
3: आन दो उस ससुर वीडियो को।
2: और क्या।
1: अरे देखो गांव आ गया, चलो उतरते हैं। जमुनिया।
0: हाँ?
1: थोड़ा साइड होकर चलो, पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा है।
0: हाँ?
1: अरे ट्रैक्टर तो दीवान चला रहा है।
0: इसका ड्राइवर कहाँ चला गया?
2: लगता है वो कि मतदाता की तरह दूर हो गया।
0: नहीं नहीं पीछे बैठा है।
1: आ, अरे हाँ।
3: जय राम जी की, जमुनिया जी, जैन जी। पैदल जा रही है जुगल जोड़ी। भाई बुरा ना माने तो ये ट्रैक्टर की शोभा बढ़ा लें, आए बैठ जाएं ट्रैक्टर पे, इसकी सवारी करा दें आपको। चलिए बैठ जाइए, गांव तक ले चलते हैं आपको।
0: माफ कीजिएगा दीवान जी, ट्रैक्टर में इतनी जगह तो है नहीं कि हम सब बैठ सके। वैसे भी 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने से कोई बुराई नहीं है।
3: हाँ भाई, अब हमारे ट्रैक्टर की आपको जरूरत ही क्या है, ये जयंत जी साथ हैं आपके, थोड़ा समय एकांत में मिला है तो बातें बातें करते करते जाइएगा ना। अरे हम खाम खाम मूसर चंद बन रहे हैं आपके बीच।
1: अरे हाँ दीवान जी, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया।
3: हाँ?
1: कि हम लोग अगले हफ्ते विवाह कर रहे हैं।
3: का?
1: हाँ शादी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप उसमें जरूर शामिल होइएगा, भूलिएगा मत।
3: कहा कह रहे भैया।

0: ये शादी कर रहे हैं? बड़ी जल्दी बहुत बड़ा फैसला ले लिया आप लोगों ने हैं। तब तो आना ही पड़ेगा। चलत हैं, जय राम जी की।
1: ये का मालिक, ये दोनों तो शादी कर रहे हैं।
0: अरे वही तो। अरे देख तो इस जमाने को हो क्या गया है।
1: हाँ?
0: अरे बेशर्मी की हद है।
1: और का?
0: अरे अभी सोचा था कि जयंत हमारी बात सुनकर झेपेगा, शर्माएगा। हाँ? पर नहीं, अरे उसने तो हमारे गाल पे तमाचा ही मार दिया
1: मालिक।
0: अरे रे, इतने बुरे दिन तो कभी थे नहीं हमारे। हाँ।

0: आप लोग भगवान को प्रणाम कीजिए, आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए। अब एक दूसरे को वचन दीजिए कि सुख में दुख में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी अविश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे।
1: हम स्वीकार करते हैं पंडित जी, ये लीजिए आपका नेत्र।
0: अरे बस इतना ही? अरे भाई शादी कराई है, कम से कम 500 एक तो दीजिए, आजकल 100 एक में क्या होता है।
2: इतना पैसा लेकर क्या करेंगे पंडित जी, आपके भी तो आगे पीछे कोई है नहीं, जो खुशी खुशी मिल जाए उसे खुशी खुशी रख लेना चाहिए। और अब हमें आशीर्वाद दीजिए पंडित जी।
0: खुश रहो बच्चों और इस गांव की तस्वीर बदल दो।
1: जी जान लगा देंगे पंडित जी।
2: बिल्कुल पंडित जी।
3: दीघा देखो तो जमुनिया के चेहरे की रंगत ही बदल गई है,
4: बहुत सुंदर लग रही ना।
3: सचमुच सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है।
4: बधाई हो जमुनिया।
3: बधाई हो जैन, आखिर तुमने एक आदर्श काम तो करके दिखा दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: भाई तुम लोग पढ़ाई को इसी तरह समझो जैसे कबड्डी खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो। जब तुम पढ़ाई में आनंद लेने लगोगे तभी तुम्हारी शिक्षा सहज होगी और तुम लिख पढ़ पाओगे। अगर इसे बोझ समझकर करोगे तो कभी भी अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाओगे।
1: प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम गुरुजी।
5: प्रणाम प्रणाम। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे बताओ भाई।
1: वो सब इतनी जल्दी हो गया कि हम आपको बता ही नहीं पाए।
5: अच्छा अच्छा चलो खैर सुखी रहो। भाई तुमने ये सब काम तो खैर बहुत अच्छा किया जमनिया, बहुत बहुत खुशी हुई। चलो ठीक है, अब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे बेटा और तुम लोग इस गांव के लिए बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर पाओगे। हाँ तुमसे एक बात करनी थी बेटा, वो
2: जी कही करू जी।
5: देखो जमनिया
2: जी,
5: यहाँ पर जितना प्रबंध हो पाया है वो शिक्षा मैं दे चुका हूँ। अब गोलू और चिरैया को शहर जाना होगा, और बुरा ना मानो तो ये गोलू और चिरैया नाम तुम अपने पास ही रखो, और इन्हें एक बेहतर नाम देने की जरूरत है।
1: गुरुजी आप ही कोई नाम प्रस्तावित कीजिए ना। हाँ, हम दोनों इस मामले में बहुत ही कमजोर हैं।
5: हाँ ठीक है, तो गोलू को तेजस्व है और चिरैया को रूपस।
2: वाह।
5: हाँ तेजस्व और रूपस, ये दोनों को ये नाम दो।
1: हाँ।
5: और देखो इन्हें शहर भेजने की तैयारी करो, यही समय है जब ये पढ़ लिख कर दुनिया को कुछ दे सकते हैं बेटा।
2: हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। आप हमें बताएं कि

0: उन्हें कहाँ भेजना ठीक रहेगा और कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे?
1: अब उसकी तो ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं बेटा, लेकिन हाँ इतना

0: भी लगाए हुए हैं लोग। अरे अरे जयंत बेटा, कम से कम इस बूढ़े को तो याद कर लिया होता है। अरे तुम दोनों तो रास्ते में ही शादी करके आ गए।
1: बाबा, इसमें जमुनिया की कोई गलती नहीं है। कुछ स्थिति ऐसी बनी कि हमने सोचा शादी ही कर ले मंदिर में जाकर। हमें रास्ते में दीवान मिला था और बड़े व्यंग्य से बात कर रहा था, जो हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। और शादी का फैसला तो हमने यहां से जाते ही कर लिया था, और इसे एक बड़े समारोह के रूप में हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए सीधे मंदिर चले गए।
0: वाह,
1: फेरे लिए, भगवान को प्रणाम किया और सीधे घर आ गए। अब अगर आप मुझसे नाराज हैं तो आपको हक है मुझे सजा देने का।
0: अरे जैन बेटा, कैसी कैसी बातें करते हो बाबूजी तुम हैं। अरे आपसे तो अब रिश्ता जुड़ गया है, और वो भी ऐसा कि जिसमें मुझे कोई सजा देने का अधिकार नहीं है बेटा। हाँ
1: बाबा, आशीर्वाद दीजिए।
0: दिया दिया बेटा, तुम दोनों सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो बेटा, और अपने मकसद में कामयाब हो। और हाँ, अब कम से कम बिरादरी में एक भोज तो रखना ही पड़ेगा बेटा।
1: हाँ बाबा, वो मैं आयोजित कर दूंगा। हाँ। आप इसकी चिंता मत कीजिए, बस आप तो दिन बताएं, जगह बताएं, और ये बताएं कि कितने लोगों के लिए इंतजाम करना होगा।
2: जब शादी ही हमने इतने सादगी से की है, तो फिर इस समारोह की क्या जरूरत है?
1: देखो जमुनिया, शादी ब्याह व्यक्तिगत के साथ साथ एक सामाजिक घटना भी है, जिसमें समाज से एक स्त्री और पुरुष साथ रहने की अनुमति लेते हैं, और इसलिए भोज आवश्यक है।
0: अरे वाह जयंत बाबूजी, वाह, आप भी बड़े दूर की सोचते हो, वाह।
2: हमने तो ये सोचा ही नहीं था, पर मुझे अभी गोलू, अरे तेजस्व और मेरी प्यारी चिरैया यानी रूपस, बस इन्हें की चिंता लग गई। इन्हें शहर भेजना है, पैसे का इंतजाम करना है।
1: वो मैं करूंगा जमुनिया, तुम अगर माँ हो तो मैं उन दोनों का पिता हूं।
3: नमस्कार बीडीओ साहब।
4: नमस्कार वीडियो साहब।
5: नमस्कार नमस्कार।
3: आइए।
5: अरे भाई नमस्कार नमस्कार, कैसे आप लोग?
4: ठीक है ठीक है। आप पहचानते होंगे, ये मेघा और मैं शिल्पी।
5: अरे हाँ, पिछली बार आप लोगों से मुलाकात की थी।
4: जी जी जी जी।
5: देखे भाई, हम इसीलिए आए हैं कि सरकार की दी हुई योजना का फंड का लाभ आपके गांव को कितना मिला है ये देख लें।
4: देखिए ना, सब कुछ आपके सामने है।
3: देखिए ना, आप हमारे गांव को देख लीजिए
4: और गांव की सड़क को भी देख लीजिए।
5: अरे ये सड़क
4: लेक के नाम पे केवल एक गड्ढा है वहाँ पर।
3: ये हमारे दीवान जी का काम है साहब।
5: So strange।
3: और सर ये जो पंप दिख रहा है ना, ये 10 फुट नीचे गाड़ कर एक खंबा लगा दिया है।
5: This is case of corruption। कहाँ है आपके दीवान जी? हमने तो सारा पैसा उन्हीं को दिया था।
6: जय राम जी की वीडियो साहब।
5: दीवान साहब, ये क्या देख रहा हूँ मैं?
6: कहाँ हो गया साहब?
5: ये सब क्या हो रहा है? सारा फंड कहाँ गया? हमने आपको सारा फंड दिलवाया था सरकार की ओर से, उस फंड का ये उपयोग किया आपने?
6: क्या बात करें वीडियो साहब, सड़क हमने बनवाई, अब बहुत तेज बारिश आए और बारिश में सड़क बह जाए तो उसमें हम क्या कर सकते? अरे हमने तालाब खुदवाया, मछलियां उसमें पाली, और ये गांव वाले मछलियां चुरा चुरा के भाग जाए तो हम क्या करें बाद में? हमने सारा काम किया है वीडियो साहब।
5: देखिए मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं दीवान जी से बात कर रहा हूँ, शांत रहिए आप। हाँ बोलिए दीवान जी, क्या कहना है आपका?
6: हमने सारा काम किया है, जो जो हमसे बनता था हमने किया है, लेकिन बखत बखत की बात है, प्राकृतिक आपदा आती है, सड़क बह गई, मछलियां चुरा ले गए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं?
5: देखिए दीवान साहब, ये जो आप दलील दे रहे हैं ना, ये जब जांच बैठेगी तब दीजिएगा, समझे कि नहीं आप?
6: जांच वाली क्या बात है साहब, जो है सब सामने तो है आपके।
5: वो आप

0: आपको भी पता चल जाएगा। जमुनिया जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको अलग से सरकारी फंड दिलवाऊंगा और इस पुराने फंड का जो दुरुपयोग किया है, जो अफरा तफरी की गई है, उसके खिलाफ भी बराबर जांच की जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो साहब।
0: जमुनिया जी,
1: जी
0: हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस गांव का विकास जरूर होगा।
1: बस आपका साथ चाहिए वीडियो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: भाई लोगो, भाई लोग,
3: चलो। अरे चुप तो रहो यार।
4: अरे सुनो यार, बात तो सुनो।
2: भाई लोग, सरकार ने हमें पैसा दिया है तो सब लोग ईमानदारी से काम करना। आप लोग सोचो तो सही, काम अपना, मेहनत अपनी और पैसा सरकार का। हमें अपने काम के लिए सरकार पैसा देती है। और कल ही मुझे पता चला है कि हमारे इस गांव में एक बैंक खुलेगा। हाँ, हॉट पोस्ट ऑफिस भी खुलेगा। और भैया, और तो और अस्पताल भी आएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो पहले सब लोग मिलकर जन भागीदारी से सड़क बना लेते हैं, क्यों, है ना? हाँ, और हम और जयंत, हम दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि गांव से शहर तक की सीधी बस हो, ताकि सड़क पर जाकर दूसरी बस का इंतजार ना करना पड़े, क्यों, है ना?
5: बहुत बढ़िया। हम भाई आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई काम चोरी नहीं करेगा भैया, बल्कि अपनी ताकत से ज्यादा काम करके देंगे। और ये सड़क को अपन समय के अंदर बना देंगे।
2: बस यही हिम्मत हौसला आप सब में होना चाहिए। कितना खडंजा बिछा, कितनी सड़क बनी, कितने हैंडपंप लगे, ये सब देखने वीडियो साहब आते रहेंगे। आप उन्हें जरूर बताते रहिएगा।
5: एक एक बात बताएंगे, सब खोल के बताते हैं।
6: वक्त का पहिया कभी न थकता, चलता हर पल।
5: भैया, अरे जो खंबा काय से लेगा यार?
7: अरे भैया, इस गांव में बिजली आनी है। बिजली?
5: बिजली?
7: हाँ, और का। अरे हर घर में सरकार एक बत्ती कनेक्शन देगी। हाँ, और रात को उजेला रहेगा।
5: अरे वाह भैया,
7: और का।
5: जहाँ तो भैया जगह में लालटेन तक नहीं जले यार। अरे बिजली को लट्टू
7: जलेगा? अरे लट्टू नहीं, अब बिजली का डंडा जलेगा। मुरमुरी
5: भाभी डंडा चले।
7: हाँ, और
5: क्या हो भैया?
7: हाँ हाँ, अरे वो लंबा लंबा, जिससे ज्यादा रोटी निकलती है ना।
5: अरे हाँ, समझ गया समझ गया। लुप लुप करे।
7: हाँ, और क्या भाई।
6: तुझको चलना है।
1: अरे ये क्या हो रहा है भैया? आप लोग किस लिए खुदाई कर रहे हैं?
8: जमुनिया जी, इस गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खुलेगा और हम पोस्ट ऑफिस केबल बिछाने आए हैं।
1: अरे वाह भैया, चाय पानी पीना हो तो हमारे घर आ जाना। आप लोग बड़ी मेहनत का काम कर रहे हो।
8: चाय तो नहीं दीदी, थोड़ा पानी पिलवा दो।
7: पानी पिलवा।
1: भेजती हूँ भैया, अभी भेजती हूँ।
5: अरे भैया सुनो सुनो यार।
8: हाँ,
5: ये जे अपनी तुम्हारी सरपंच साहब है ना, जमनी ये कहाँ मिलेंगी और घर?
9: आप तनिक 10 मिनट बैठिए साहब, मैं घूमती घामती तो आएंगी। और क्या, इस हेल्थ सेंटर पे किसी भी वक्त आ जाए हैं।
5: अच्छा?
9: और ऐसा कोई जरूरी हो तो हम बुलाना है।
5: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
9: तो
5: हम इंतजार कर लेंगे।
9: चलो ठीक है। अरे नमस्ते दीदी, वे जमनिया जी आई गई।
1: नमस्ते।
9: आपको एक मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा भाई साहब।
5: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कहिए।
5: जो गाड़ी है,
1: हाँ हाँ,
5: आप ही के लिए भेजी गई है, गांव के लिए।
1: अच्छा,
5: हैं, अस्पताल के लिए है जो गाड़ी।
1: हाँ हाँ,
5: कोई बीमार होए तो इस गाड़ी में अपन तुरंत अस्पताल पहुंचा दे लाके।
1: ओह, तभी ये रेड क्रॉस का चिन्ह लगा है।
5: हाँ।
1: ये एम्बुलेंस है ना?
5: हाँ, एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है।
1: अच्छा भैया, ये कब से कब तक हमारे लिए रहेगी?
5: 24 घंटे आपके पास ही रहेगी।
1: और इसे चलाएगा कौन?
5: अरे मैं चलाऊंगा, और कौन चलाएगा?
1: आप चलाएंगे?
5: घंटा हो
1: और मगर भैया इसमें ये तेल पेट्रोल ये कौन देगा? इसकी खराबी की रिपेयरिंग कौन कराएगा?
5: अरे भाई आप उसकी चिंता आप मत करो, वो सब काम सरकार करेगी।
1: अच्छा हाँ। तो भैया असली चिंता हमें आपकी हुई।
5: हमारी? कैसे?
1: अगर कहीं आप नहीं मना कर दिया तो,
5: अरे भाई,
1: या येन वक्त पर आप नहीं मिले तो क्या करेंगे?
5: ऐसे कहीं हो सके साहब, और फिर ऐसी कभी बात हो भी जाए तो आपको तो पूरा हक है मुझे निकालने का।
1: अच्छा?
5: हो जैसे रखने को हक वैसे निकालने को हक, और अब चाहो तो कभी सीधी शिकायत बीडीओ साहब से कर दई हो, है ना? अरे तो आपको टेलीफोन भी तो मिल रहा है ना?
1: हाँ, हाँ
5: बात कर लेना सीधी।
1: अच्छा
5: वैसे एक बात बता दूं,
1: हाँ?
5: मैं काम चोर आदमी नहीं हूं, मेरे लिए तो आदमी की जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, और उसको बचाने के लिए तो अपनी जान पे खेल जाऊं, ऐसा है मेरा इरादा।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 19वीं कड़ी, कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मीडियम 5 डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत UAE के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। उन्होंने कहा वे मिली जिम्मेदारी को पूरी मेहनत के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बरगी, भदभदा और कलियासोट डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा

नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे पढ़ाई के लिए जरूरी है एकाग्रता विषय पर, साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। दोस्तों, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का खान पान और जीवन शैली अलग अलग है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, संतुलित आहार और कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण अवसर है। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में सामान्यतः 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी देना और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। इस दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं को उचित पोषण के लाभों के बारे में बताया जाता है। विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और विभिन्न सरकारी संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, पोषण का अर्थ केवल पर्याप्त भोजन करना नहीं है, बल्कि ऐसा भोजन करना है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों। साथियों, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर और पानी का संतुलित होना आवश्यक है। दालें, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अनाज, मेवे और बीज पौष्टिक आहार के अच्छे स्रोत हैं। भोजन में स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को शामिल करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथियों, भारत में कुपोषण एक महत्वपूर्ण समस्या है। विशेष रूप से छोटे बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण की कमी उनके स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकती है। बच्चों में कुपोषण के कारण शारीरिक विकास रुक जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और पढ़ाई पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही पौष्टिक भोजन की आदत डालना बहुत जरूरी है। साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें सिखाता है कि केवल भोजन की मात्रा ही नहीं, उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता का भी ध्यान महत्वपूर्ण है। भोजन बनाने से पहले, खाने से पहले हाथ धोना, साफ पानी पीना, खाद्य पदार्थों को ढककर रखना, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही अत्यधिक जंक फूड, तले हुए खाद्य पदार्थ, अधिक चीनी और नमक वाले भोजन से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। साथियों, पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने में विद्यालयों और परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को संतुलित आहार का महत्व समझाया जाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह केवल एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए तो कुपोषण और अनेक बीमारियों को कम किया जा सकता है। सही पोषण, स्वस्थ जीवन के संदेश को अपनाकर हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और एक स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी राष्ट्रीय दादा दादी दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों राष्ट्रीय दादा दादी दिवस हमारे जीवन में दादा दादी और नाना नानी के महत्व को समझने तथा उनके प्रति प्रेम सम्मान कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव होते हैं, वे न केवल हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं बल्कि अपने स्नेह और आशीर्वाद से परिवार को जोड़कर भी रखते हैं। उनके साथ बिताया हुआ समय बच्चों के लिए यादगार और सीख से भरा होता है। दादा दादी परिवार के सबसे अनुभवी सदस्य होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना किया होता है, इसलिए उनके पास जीवन की ऐसी समझ होती है जो केवल किताबों से प्राप्त नहीं की जा सकती। वे बच्चों को अनुशासन संस्कार ईमानदारी मेहनत और दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। उनकी सुनाई हुई कहानियाँ बच्चों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। दोस्तों भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत पुरानी रही है। पहले घरों में बच्चे माता पिता और दादा दादी के साथ रहते थे, इससे बच्चों को बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आसानी से मिलता था। आज के आधुनिक जीवन में छोटे परिवारों और व्यस्त दिनचर्या के कारण कई बच्चे अपने दादा दादी से दूर रहते हैं। ऐसे समय में नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे हमें याद दिलाता है कि हमें अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालना चाहिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दादा दादी का योगदान केवल बच्चों की परवरिश तक ही सीमित नहीं है, वे परिवार के इतिहास परंपराओं के जीवंत स्रोत होते हैं। उनसे हमें अपने परिवार की पुरानी बातें रीति रिवाज त्योहार और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर भी मिलता है। वे हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारी पहचान को मजबूत बनाते हैं। उनके अनुभव हमें जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। दोस्तों नेशनल ग्रैंड पेरेंट्स डे पर बच्चे अपने दादा दादी के लिए अनेक प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। वे उन्हें फूल या शुभकामना पत्र दे सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनकी पसंद का भोजन बना सकते हैं या उनकी पुरानी यादें और कहानियां सुन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें केवल इस विशेष दिन पर ही नहीं बल्कि हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए। यदि वे किसी काम में हमारी सहायता चाहते हैं तो हमें खुशी से उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों दादा दादी हमारे जीवन में प्रेम अनुभव और संस्कारों का अनमोल खजाना है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने दादा दादी और सभी बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उनके साथ पर्याप्त समय बिताएंगे। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन अधिक सुखी संस्कारी और समृद्ध बन सकता है। आइए साथियों चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय पढ़ाई के लिए जरूरी है एकाग्रता पर चर्चा करने का। दोस्तों विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वही उसके भविष्य की नींव बनता है। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ एकाग्रता भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों एकाग्रता का अर्थ है किसी एक कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना और मन को इधर उधर भटकने से रोकना। यदि विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ाई करता है तो वह कम समय में अधिक और अच्छी तरह सीख जाता है। आज के समय में विद्यार्थियों के सामने एकाग्रता बनाए रखना पहले की अपेक्षा अधिक कठिन हो गया है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे अनेक साधन उनका ध्यान पढ़ाई से भटका देते हैं। कई बार विद्यार्थी किताब लेकर बैठ जाते हैं लेकिन उनका मन मोबाइल या दूसरी किसी गतिविधियों में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में वह लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी विषय को ठीक से नहीं समझ पाते। इसलिए पढ़ाई करते समय एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों एकाग्रता से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विषय जल्दी समझ आता है। जब हमारा मन पूरी तरह पढ़ाई में लगा होता है तब हम शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें आसानी से याद रख पाते हैं। दोस्तों एकाग्रता हमारी स्मरण शक्ति को भी मजबूत बनाती है। इसके कारण परीक्षा के समय पढ़ी हुई बातें जल्दी याद आ जाती हैं और विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई का उचित समय निर्धारित करना चाहिए। पढ़ाई के लिए एक दैनिक समय सारणी बनाना बहुत उपयोगी होता है। कठिन विषयों को उस समय पढ़ना चाहिए।

जब मन शांत और ताजा हो। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे अंतराल में विश्राम भी करना चाहिए। लगातार कई घंटों तक पढ़ने के बजाय कुछ समय ध्यान पूर्वक पढ़ना अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों, पढ़ाई के स्थान का भी एकाग्रता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी को शांत, साफ और व्यवस्थित स्थान पर पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करते समय मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए और उसका नेट बंद कर देना एक अच्छा उपाय है। टेलीविजन और अन्य मनोरंजन के साधनों से दूरी बनाकर विद्यार्थी अपने मन को पढ़ाई पर केंद्रित कर सकते हैं। साथियों, एकाग्रता बढ़ाने में स्वस्थ जीवन शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय योग या ध्यान करने से मन शांत रहता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थियों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, क्योंकि थका हुआ मस्तिष्क पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसके अलावा पढ़ाई को बोझ न समझकर रुचि के साथ करना चाहिए। यदि विद्यार्थी यह समझने का प्रयास करे कि वह जो पढ़ रहा है उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, तो उसकी रुचि बढ़ती है। एकाग्रता केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। यदि विद्यार्थी सही समय का उपयोग करें, मोबाइल और अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित रूप से एकाग्र होकर पढ़ाई करें, तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: राजाधिराज भगवान महाकाल अवंतिका।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:33 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में एक गाना जिसको लिया है हमने गहरा जख्म से। दूसरी आवाज़ आशा भोसले की है। विठल भाई पटेल का लिखा हुआ ये गाना है और आर डी बर्मन का संगीत। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनिए ये गीत।

जीवन मृत्यु, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोर्टवाल की आवाज में एक गीत, और अनुराधा पोर्टवाल के साथ में दूसरी आवाज है उदित नारायण की। समीर ने इस गाने को लिखा है, आनंद बख्शी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय। 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी। गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

बेशिस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान

चलाने का आह्वान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत यूएई के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना पर संवाद करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। उन्होंने कहा कि मिली जिम्मेदारी को पूरी मेहनत के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवेश पटेरिया ने 9 से 10 लोगों की मौत की जानकारी दी है। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बरगी, भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म त्रिशूल का एक गाना। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, खय्याम का संगीत है। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी।

हम सब जिंदगी में एक ही चीज़ की तलाश में रहते हैं, उसका नाम है खुशी। कोई सोचता है पैसा मिल जाए तो खुश रहेंगे, कोई अच्छे घर की तलाश में रहता है तो कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा होता है, तो और कोई सोचता है कि जब सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी तब ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या सचमुच खुशी इन चीज़ों के मिलने के बाद आती है? अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सब अमीर इंसान खुश होते, गरीब इंसान कभी मुस्कुराता ही नहीं। लेकिन हकीकत इसके उलट है। हमने कई बार देखा है कि कम साधनों के रहते हुए भी कई लोग दिल खोल कर हंसते हैं और बहुत खुश रहते हैं। चलिए अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म सच्चाई का। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। ये फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई थी, फिल्म सच्चाई। और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म को रिलीज़ हुए तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये गाना जब कभी हमारे कानों पर आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि गाने की मिठास अब तक बाकी है।

सगाई, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। उस ज़माने में भी फिल्मों का दौर ऐसा था जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस ज़माने के गाने आज भी हमें दिल को बहुत करीब से छू लेते हैं। हो सकता है कि नई जनरेशन ने इन आवाज़ों को नहीं सुना हो, लेकिन जब भी ये गाने हम रेडियो पर सुनते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनको पुरानी यादें याद आ जाती हैं, और नए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उस ज़माने में भी आवाज़ पर कितना जोर दिया जाता था, जो आज भी कर्णप्रिय लगती है।

0: पापे ना शर्मा
1: फर्स्ट लव, ये फिल्म का नाम है और आवाज मुकेश की है। गुलशन बाबरा ने इस गाने को लिखा है, दत्ताराम का संगीत है। ये फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे गायक हैं जो अपने आप में निराले हैं, चाहे रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, किशोर दा हों, मन्ना डे हों। ये उस ज़माने के गायक हैं जिनकी आवाज़ें उनके जाने के बाद भी आज भी हमें याद हैं। ऐसा ही एक गीत मुकेश जी की आवाज़ में।

जंजीर, ये फिल्म का नाम है और इस फिल्म का जो हमने गाना लिया है वो किशोर कुमार की आवाज़ में है। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और सपन चक्रवर्ती का संगीत है। ये फिल्म भी 1975 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला की सबसे पहली फिल्म है। यहीं से अमिताभ बच्चन शोहरत की दहलीज पर आए।

ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है, तो लाजमी है कि ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लिया जाए, हर पल को इन्जॉय किया जाए। तो अगला गाना भी हम आपको सुनवा देते हैं। इसको हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से, और ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन की थी और काफ़ी पॉपुलर हुई थी, बहुत फेमस फिल्म थी। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं इसमें, अनजान का लिखा हुआ गाना है ये, बप्पी लहरी का संगीत है। ये फिल्म भी 1982 में रिलीज़ हुई थी। तो सोचिए कि इतनी पुरानी फिल्में हैं, गाने आज भी हिट हैं, तो उन गानों का मज़ा लीजिए।

जिंदगी, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ इसमें जो हमने गाने के लिए है वो मोहम्मद रफ़ी के लिए है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है। शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए ये खूबसूरत गीत।

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद बनाते हैं। सारे रिश्ते हमें मालिक की तरफ से मिलते हैं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, लेकिन एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, अपनी पसंद से बनाते हैं, हमारे विचारों से बनाते हैं, वो है दोस्त। तो दोस्त जो है वो अगर सच्चा है उसकी पहचान भी होना चाहिए, और दोस्त अगर मतलबी है तो उसकी भी पहचान होना चाहिए। खैर, दोस्ती के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग फलसफे हैं, उन सब को छोड़िए, सुनिए ये खूबसूरत गाना। फिल्म याराना, आवाज़ किशोर कुमार की है, अनजान का लिखा हुआ गाना है, राजेश रोशन का संगीत है, और ये फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मौसम से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गुलजार ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। ये फिल्म भी 1975 में रिलीज़ हुई थी और कलाकार थे संजीव कुमार।

चंबल की कसम, ये फिल्म का नाम है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, खयाम का संगीत है और ये फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी। बहुत ही खूबसूरत गाना, सिमटी हुई ये घड़ियाँ।

ये वादा रहा। ये फिल्म का नाम है, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का ये संगीत है और ये फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी और ये बहुत ही शानदार गाना है, सुनिएगा।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विद्यार्थी में मोहम्मद रफ़ी और उषा टिमोथी को। मधुकर बिहारी का ये गाना लिखा हुआ है और बाबू सिंह का संगीत है। सुनिए ये गीत। ये फिल्म 1965 में रिलीज़ हुई थी।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: राजाधिराज भगवान महाकाल अवंत

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकालमय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

भाद्रपद की पावन बेला पर जब आस्था बनेगी उत्सव और उज्जैन बनेगा महाकाल मय, 7 सितंबर को निकल रही है बाबा महाकाल की भव्य राजसी सवारी, गूंजेगा एक ही जय घोष, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से एक साथ दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। आ रही है पालकी बाबा महाकाल की, प्रायोजक जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल।

0: ता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि चार लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की ने एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है।

0: अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के दो युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम विवरण का। तो पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों पर हम एक नजर डालते हैं। पहले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्राम सभा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। 7:30 पर आप सुन सकते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें श्रोता खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर अपनी जानकारी और समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेकर। 5:33 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप 6 भी ले सकते हैं और 8:30 पर भी ले सकते हैं। रात 8 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगी। विषय है ग्रीन इंडिया मिशन। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के और अब कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रम। कल दिन में 11 आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगी सुने। 12 का समय है आपकी फरमाइश का और रात 10:10 पर भी हम आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक जमुनिया की 20वीं कड़ी। एक बजे स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ध्रुवाराम मरकाम और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत और 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं चंद्रशेखर चक्रवर्ती के गाए भजन। यानी स्वास्थ्य दर्पण 1 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होंगे। दिन में 2 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का सजीव आंखों देखा हाल का प्रसारण और रात 10:10 पर हम सुनवाएंगे आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे घासी राम निर्मल का जल तरंग वादन। राग होगा भिन्न षडज और शिव रंजनी। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रम और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में हरिराम अहिरवार और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना और जिले की चिट्ठी। 10 फिल्मी गीतों का विशेष

0: कार्यक्रम की सागर हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 10:05 पर और 10:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम आज और कल के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी नहीं झुमके
5: ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
5: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: RBI कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 4 दिवसीय दुबई दौरे पर। सागर जिले में संदिग्ध जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत, 24 का इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शिक्षा ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार देने का माध्यम है। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 4 दिवसीय दुबई दौरे पर हैं। वे 6 से 9 सितंबर तक इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत यूएई के प्रमुख निवेशकों, उद्योग समूहों और वैश्विक कारोबारी नेतृत्व से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
1: प्रदेश की धरती से जब मैं आज यहाँ अपने निवेशकों से जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के कई कारणों से अलग अलग प्रकार के सेक्टर में बड़ी संभावना लेकर के जब यहाँ आए
0: मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पेवेलियन के जरिए प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, पर्यटन तथा निवेश अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। दौरे के दौरान प्रवासी भारतीयों से संवाद, यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े कारोबारी समूहों से बैठकें तथा 1-to-1 निवेश चर्चा होगी। मुख्यमंत्री 7 सितंबर को मध्य प्रदेश पेवेलियन का उद्घाटन करेंगे, जबकि 8 सितंबर को प्रमुख निवेशकों और शारजहां के कारोबारी प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद 9 सितंबर को दुबई से नई दिल्ली रवाना होंगे। सागर जिले की बंडा तहसील के आसपास के गांव में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोगों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र की 6 शराब दुकानों को एहतियातन सील कर सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 8-9 की डेथ हो गई है और कुछ उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती हैं, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा।
0: आबकारी विभाग के अधिकारियों के प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर उपायुक्त आबकारी को मुख्यालय अटैच और 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सागर छतरपुर मुख्य हाईवे पर चक्का जाम किया। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। आज उन्होंने गृह मंत्रालय की बैठक में हिस्सा लिया और मादक पदार्थों के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा बीजेपी मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक, निवेश और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।

0: ताकि मध्य प्रदेश देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर तकनीक भारत के आत्मनिर्भर और विकसित भविष्य की आधारशिला है। सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम 2.0 में मध्य प्रदेश अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में देश की गति तेज हुई है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में 23 और 24 अक्टूबर को एमपी सेमीकंडक्टर समिट 2026 आयोजित होगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार देने का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज रायसेन जिले के मंडीदीप में आयोजित शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक कैसे जिंदगी बदल सकता है, इसका उदाहरण वे स्वयं हैं।
2: सम्मानित शिक्षक गण, शिक्षक भाई और बहन यहाँ से लेकर वहां तक बैठे हुए, लेकिन आज मुझे भी मेरे गुरु जी याद आ गए। मैं जो उपस्थित बेटा बेटी उनको भी बताना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई मेरे गाँव में हुई प्रारंभिक सरकारी स्कूल, और एक शिक्षक कैसे जिंदगी बदल सकता है इसका उदाहरण भी मैं हूं। पहली से लेके चौथी क्लास तक मुझे पढ़ाया मैं एक ही शिक्षक थे, स्वर्गीय रतन चंद जैन जी।
0: इससे पहले श्री चौहान ने शासकीय सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप में नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया। मंडीदीप जाते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद का गोल्डन आवर बेहद महत्वपूर्ण होता है और समय पर की गई मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने इंदौर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 125 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का बोझ न बढ़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। चेयरमैन ने इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट शास्त्री ब्रिज तथा इंदौर मनमाड़, इंदौर खंडवा और इंदौर उज्जैन रेल सेक्शन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर AI तकनीक वाले कैमरे लगाने की भी तैयारी है। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंझेन में चाइना मास्टर्स का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। इसके साथ ही सात्विक चिराग ने पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ सुरक्षित सफर और ग्रीन मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। समिट में सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूल यात्री परिवहन व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच विचार विमर्श होगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और जलभराव की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा संभाग के कई जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में कुपोषण से निपटने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने परियोजनावार कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया है। रायसेन जिले के मंडीदीप में निवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण हुआ। उज्जैन में प्रदेश के प्रतिष्ठित सहकारी डेयरी ब्रांड सांची ने अपनी 45 वर्षों की विरासत को आधुनिक स्वरूप देते हुए उज्जैन में अपनी नई ब्रांड पहचान और रीडिजाइन की गई पैकेजिंग लॉन्च की है। शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के कुडेली बीट में मादा भालू के हमले में 73 साल के बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई है। खंडवा में शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर निगम कार्यालय सभागार में गुरु वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं संस्था प्रमुखों को सम्मान किया गया। शिवपुरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आगरमालवा कुंडालिया बांध का जलस्तर बढ़ने पर डैम के 3 गेट खोले गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

घर आंगन कार्यक्रम सुनवे वारी हमई सबई बिन्ना हरण को और भौजी हरण को कल्पना बहन की राम राम। और बताओ बहनों, कैसे का हाल चाल है आप और उनके। हम जानते हैं कि अब चार टाइम हमारी बहन खूब मौज मस्ती में है, खुश हैं। काहे से कि देखो अब खुशी खुशी सावन को त्यौहार निकल गो, कन्हैया जन्माष्टमी निकल गई और कई बहनें अपने मायके में हैं तो कई बहनें अपने ससुराल में, तो आवे वाले तीज त्यौहार को आनंद भी ले रही हैं। मैंने देखो कई पर्व आउते हैं और जाऊते हैं, लेकिन इके संगे संगे अपने खान पान और स्वास्थ्य को भी ध्यान देने हैं और ऊके लाने नियमित दिनचर्या और खासकर गर्भवती बहनों को उचित पोषण आहार लेबो बहुत ही जरूरी होता है। बहनों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और उचित पोषण आहार की बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं और सुनत भी हैं कि कई प्रकार की बीमारियों को कारण उचित पोषण आहार की कमी से होता है। तो इके लाने हम अपने बिन्नाहरण से जे कहें कि भोजन को नियमित समय पे करने हैं। कई बार का होता है कि हमारी बहनें काम काज में लगी रहते हैं और वे भोजन को बहुत देर बाद सभी काम निपटावे के बाद करते हैं। बहनों, ऐसो करवे से भूख भी कम रह जाते हैं और इको असर हमारी पाचन क्रिया पे पड़ता है और हमारी बहनें सभी काम काज करके कलेवा को जब बैठा थे सो वे इको ध्यान नहीं रखती हैं कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। और हर उम्र में भोजन को अलग अलग प्रकार की जरूरत भी होती है और खासकर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन्हें भोजन में नियमित रूप से कैल्शियम और आयरन होने बहुत ही जरूरी है और उचित पोषण वो होता है जी में सभी आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए जो हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिना हरो भोजन में हरी साग सब्जी और मौसमी फलों को विभिन्न प्रकार के अनाजों को उपयोग में लाने चाहिए और संग में देखो दूध दही मेवा फल ये सभी लेना चाहिए। हम अपनी बहनों से एक बात और कहना चाहते हैं कि जब घर परिवार की देखरेख और खान पान की बात आउत है तो वे हर चीज को चुनाव परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार करती हैं और जब उनकी बात आउत है तो वे अलसा जाते हैं और जो कछु घर में होते हैं वे वैसे काम

चला लेते हैं और जई आदत के कारण वे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं। सुबह ने देखो अपने परिवार के संग संग अपन भी और उचित पोषण आहार पर ध्यान देना है। बहनों स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म तभी दे सकता है जब वो खुद भी स्वस्थ हो। तब अगर बहनों आप गर्भवती हैं तो अपनों और अपने आवे बारे शिशु को स्वास्थ्य नीको रहे तो ई के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी होता है। बहनों कई बार ऐसा होता है कि कछु खावे को मन नहीं होता, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहें ई के लाना जरूरी है कि भोजन में सब कछु खाने हैं और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कछु ना कछु पोषक तत्वों को ले वो बहुत ही जरूरी होता है। और समय समय पे वजन करवाने हैं, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी हैं, टीकाकरण करवाने हैं और आशा कार्यकर्ता बहन से संपर्क करने हैं। बहनों देखो अपन चर्चा तो आगे और भी करें हैं, पहले कछु मनोरंजन हो जाए तो सुन लेते हैं जो 900 लोकगीत लेखा निगम से।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बहनों, ब्रह्म के बाद स्वागत है फिर से घर आंगन कार्यक्रम में। बिना और देखो, अब हमने चर्चा करी थी कि पोषण आहार कैसे हुई, लेकिन अब हम एक नौनी सी जानकारी लेके आए हैं जाको विषय है संतुलित पोषण आहार, जाकी जानकारी दे हैं सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव और उनसे बातचीत करेंगी बहन निशा मोरे। तो चलते अपन सुने जे नौनी सी जानकारी।
6: बहनों, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। हमेशा ऐसा भोजन लें जो संतुलित और पौष्टिक हो, जिससे कि सभी आवश्यक पोषक तत्व हमें समय समय पर मिलते रहें और उनकी जो कमी है वो कभी भी हमारे शरीर में ना होने पाए। तो बहनों देखो, आज हमने अपने स्टूडियो में सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव बहन को बुलाया है, जो कि पुनर्वास एवं पोषण आहार शासकीय अस्पताल से हैं, और ये आज हमें जानकारी देंगी संतुलित पोषण आहार कैसे बनाएं इस बारे में। तो ज्योत्सना जी, आपका स्वागत है हमारे आज के घर आंगन कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संतुलित पोषण आहार आखिर है क्या, किसे कहेंगे हम संतुलित पौष्टिक भोजन?
7: नमस्कार बहनों, ज़्यादातर ये देखने में आता है कि संतुलित भोजन, कई लोगों में ये गलतफहमी होती है कि हम अगर अपने आहार में बहुत सारे ऐसे तत्वों को सम्मिलित करें जिनसे हमें, जैसे कि पनीर है और हमारे मेवा मिष्ठान है, ऐसे पदार्थों को, अगर खाद्य पदार्थों को हम सम्मिलित करते हैं तो वो हमारे पौष्टिक आहार कहलाते हैं। ऐसा नहीं होता है। पौष्टिक आहार से तात्पर्य होता है कि हमारे जो खान पान है उसमें हम सभी प्रकार के खनिज लवण पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और सभी तत्वों को शामिल करें, उसको हम पौष्टिक आहार के नाम से जानते हैं। अगर हम खान पान में इन सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित करते हैं जिसमें हमको शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक मात्रा तरीके से, प्रॉपर तरीके से मिल सके, जैसे कि हम अगर अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, खनिज लवणों की मात्रा, सभी पोषक तत्वों की मात्रा को सम्मिलित करते हैं तो हमें जो आहार है वो हमें पौष्टिक आहार के रूप में प्राप्त हो सकता
6: जी।
7: है।
6: मतलब ऐसा भोजन हमें लेना है जिसमें सभी पोषक तत्व हमें मिलते रहे और उनकी समय समय पर जो कमी है उसकी पूर्ति होती रहे।
7: जी, जी, जी।
6: तो ये तो ही एक सामान्य बात कि संतुलित पौष्टिक भोजन आखिर है क्या। इसके बाद आगे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने भोजन को संतुलित और पौष्टिक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों को विशेष रूप से अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए।
7: पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिन पर हमारे शरीर की सारी गतिविधियां निर्भर होती हैं, क्योंकि हमें जब तक हम पौष्टिक आहार नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर को जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिससे हम अपने कार्य को सकुशल करने में

0: सकुशल ना रहेंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि अपने भोज्य पदार्थों में सभी पौष्टिक तत्वों का इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आहार आयोजन अगर हम करते हैं तो हमारा आहार सुबह के समय से शुरू होता है, जहाँ हमें नाश्ता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें घर की महिलाएं हैं जिनको हमेशा जल्दबाजी रहती है
1: अपने काम निपटाने की,
0: और जिसमें ज्यादातर ये उनके साथ देखा जाता है कि पहले बच्चे स्कूल चले जाएं, फिर हमारे घर के जो जेंट्स हैं या बड़े लोग हैं वो ऑफिस चले जाएं, उसके बाद हम अपने आहार पर ध्यान देंगे। तो हमारा ये कहना है कि आहार, पौष्टिक आहार सभी एज ग्रुप में सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा व्यक्ति हों, चाहे हमारे बच्चे हों, उन सभी के लिए आवश्यक होता है।
1: हम बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों को विशेष रूप से हमें सम्मिलित करना है, मतलब जैसे कि जो पोषक तत्व है वो समय पर हमें मिलते रहे। जैसे बात करते हैं विटामिन की, तो इसके लिए हमें विशेष रूप से क्या लेना चाहिए?
0: जैसे शुरू करते हैं हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी चीजें जो हमारे आहार में सम्मिलित होना चाहिए। विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे दूध, दूध से बनी हुई चीजें, फल, हरी सब्जियां, इन सब चीजों को हमें खाद्य पदार्थों में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हमें खनिज लवणों की बात करते हैं, जहां हमें ज्यादातर देखा जाता है कि आयरन की कमी से खून की मात्रा, जो शरीर की मात्रा है वो कम हो जाती है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आहार में हम खनिज लवणों का सम्मिलित करें, जिसमें हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, अंकुरित अनाज है और दूध, दूध से बनी चीजें हैं। ऐसी चीजों को हम अगर आहार में सम्मिलित करते हैं तो हमें पौष्टिक आहार मिलता है। और उन्हें हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां ले ली हैं और फिर तीन दिन तक हम हरी सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस तरीके का जो आहार है वो हमें अपने दैनिक जीवन में दैनिक प्रक्रिया के हिसाब से सम्मिलित करना चाहिए। जैसे दूध है, दूध से अगर किसी को दूध पसंद नहीं है तो दूध से बने जो पदार्थ हैं, जैसे दही है, मट्ठा, छाछ है, इन सब चीजों को भी हम अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स की कमी को हम पूरा कर सकते हैं।
1: जैसे कि हम ये देखते हैं कि उम्र के हिसाब से भी हमें भोजन का ध्यान रखना चाहिए, तो अगर हम बात करें अपने बुजुर्गों की, तो इन्हें किस तरह का भोजन देना चाहिए जिससे कि इन्हें भी सभी पोषक तत्व मिलते रहें?
0: बुजुर्गों की बात करें तो उस समय तक हम देखते हैं कि उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी हमारी धीमी गति से हो जाती है, लेकिन हमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय में कई बार बीमारियां बहुत समय से पहले ही पास में आने लगती हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको उपयुक्त आहार की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि नाश्ता हमें जरूर करना चाहिए, तो नाश्ते में अगर हम उनके लिए दैनिक जीवन का जो उनका आहार अगर नियोजन करते हैं तो उसमें हम देखें तो उनके आहार में सबसे पहले हमें दूध, दूध से बनी हुई चीजें, अंकुरित अनाज जिसमें हम मूंग, मोठ, चना, इस तरीके की चीजें उनके लिए इंक्लूड करें, जिससे उनको एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन ज्यादा मिले, जो उनकी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उस चीज को वो बैलेंस कर सके,
1: उसकी पूर्ति
0: कर सके। तो इस तरीके की चीजें अगर आहार में इंक्लूड करते हैं तो हमें काफी फायदा मिलता है, जिसमें हम बुजुर्ग लोगों के लिए अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज से बने हुए, जैसे हमने अगर अंकुरित चना किया है तो चना से हम चने को भुका के उसका पाउडर बना के, चने का आटा बना के हम अगर उसे रोटी के आटे में, हम अपने गेहूं के आटे में मिलाकर अगर देते हैं, जिसे हम मिस्सी रोटी भी के नाम से भी जानते हैं, अगर वो दें तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी दूध, दलिया है, इस तरीके का आहार, प्रोटीन जिससे हमको प्रॉपर मिलती रखे, इस तरीके का भी आहार हम बुजुर्गों के लिए सम्मिलित करते
1: हैं। बुजुर्गों में हम अक्सर देखते हैं कि पेट से संबंधित ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, अगर थोड़ा सा भी उन्हें वजनदार खा लिया या कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया तो परेशानी बढ़ जाती है, तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हमेशा यानी लेनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें जिनका उपयोग उन्हें इस उम्र पे आकर छोड़ देना चाहिए?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ज्यादातर ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक शरीर के अनुसार उनका आहार आयोजन होता है, जिसकी हम उससे ज्यादा अगर हम खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज के नाम से भी जानते हैं, वो होने लगता है। बुजुर्गों में ये समस्या देखी जाती है क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो धीरे हो जाती हैं, तो उस समय जो उनको आहार लेना है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मात्रा को कम करें और गुणवत्ता को बढ़ाएं। अगर हम मात्रा को नियमित मात्रा में लेंगे, जैसे अगर हमने एक गिलास दूध पीने की शक्ति है हमारे शरीर में तो हम एक गिलास दूध लेते हैं तो वो हमारे लिए शरीर के लिए फायदा करता है, अगर हम उससे ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वही चीज आप नुकसान करेगी। तो हमेशा हमें मात्रा का ध्यान रखना है कि मात्रा को कम रखें और गुणवत्ता को बढ़ाएं, और साथ में ये देखें कि जो आहार है वो हम इकट्ठा खाने की बजाय अगर उसे दिन में 3 से 4 घंटे के अंतराल में देते हैं तो उससे उनको फायदा होता है। और ज्यादातर ऐसी चीजों का सेवन, जैसे चना और दालें हैं, इस तरीके का चीजों का सेवन बुजुर्ग लोगों को अगर दिन के समय दिया जाए, दिन के आहार में अगर उन्हें सम्मिलित किया जाए तो वो इसे इजीली पचा सकते हैं।
1: तो ये तो ही बुजुर्गों की बात की उन्हें किस तरह का भोजन लेना है और कैसा भोजन नहीं लेना है जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। अब बात करते हैं हम नवजात शिशुओं की, इनके बारे में आप क्या बताएंगे कि किस तरह का हमें इन्हें भोजन तो लेते नहीं है लेकिन आहार कैसा होना चाहिए इनका?
0: बच्चे क्योंकि ग्रोथ कर रहे हैं और उन्हें ज्यादातर ज्यादा शक्ति आहार की जरूरत है, जिससे उनको ऊर्जा ज्यादा मिले, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है, उन्हें पढ़ाई भी करना है, बाकी बहुत सारी चीजों में वो खेलते भी हैं, तो ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि माताएं जो उनका आहार आयोजन करती

0: है, उसके लिए हमें चाहिए कि इकट्ठा आहार देने के बजाय, क्योंकि बच्चों के सामने अगर एक पूरी थाली आप सजा के रख देंगे तो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते। उसके लिए हम माताओं को ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका आहार है उसको थोड़े थोड़े गैप से दें, जैसे 2 से 3 घंटे के अंतराल में बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ बना के दें। अगर किसी का बच्चा दूध नहीं पीता है तो दूध की कुछ चीजें ऐसे बना के दे सकते हैं, जैसे बच्चे फलों के शेक के साथ उसे ले सकते हैं, चीकू का शेक बना के दे सकते हैं आप, केले का शेक बना के, इस तरीके की चीजें अगर बच्चों को देते हैं तो बहुत अच्छा उनको लगता है। दूसरी बात है, जैसे अगर बच्चे हमारे इकट्ठा खाना नहीं खा रहे हैं तो हम दाल का रोटी और दाल की पराठे बना के दे सकते हैं उनको, पनीर का पराठा भर के दे सकते हैं। हम उनको ज्यादातर कोशिश करेंगे जो हरी सब्जियां हैं वो भी उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर बच्चे पालक लौकी नहीं खाते हैं ज्यादातर हम देखते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्या करेंगे, जैसे पालक है तो पालक को हम रोटी का जो आटा है, जब हम आटा बनाते हैं तो उसमें पालक को के छोटे छोटे टुकड़े काटकर, उस पालक को काटकर हम आटे में अगर मिक्स कर लेते हैं, पालक की रोटी में हम अगर पनीर भर के देते हैं तो स्टफ डाइट भी हो जाएगी और बच्चों को पसंद भी आएगा। ज्यादातर बच्चों के आहार में हमें ध्यान रखना होता है कि उनको वैरायटी ज्यादा दें, क्वांटिटी से ज्यादा हम उनको अगर वैरायटी में क्वालिटी देते हैं तो उससे ज्यादा बच्चों को फर्क पड़ता है और वो बहुत अच्छे इंटरेस्ट से खाना खाते हैं। तो माताएं पीछे जो खाने की थालियां लेकर दौड़ती रहती हैं बच्चों के, वो ना करना पड़ेगा और कम समय में बच्चे ज्यादा अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो हमारी बहनों को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ बच्चे की पसंद के ऊपर ना चलें, और अगर मान लीजिए बच्चा किसी चीज को पसंद नहीं करता है और उसके लिए बहुत जरूरी है तो उसकी जगह पे वो उसी चीज को मिलाकर के दूसरी चीज बना करके भी दे सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे दालें हैं तो कई तरह की दालें मिलाकर दे सकती है,
0: पूरी दालें हैं तो उनको हम भेलपूरी जैसे बच्चों को पसंद होती है मुरमुरा लाई में अंकुरित दालें मिला के दे दीजिए, उसमें चटनी डाल दीजिए तो बच्चे बड़े स्वाद से खाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एज ग्रुप में हमें बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत है, क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है तो
1: हमें भोजन से ही मिलती
0: भोजन
1: है,
0: से ही मिलती है। और उससे हम भोजन अगर संतुलित अपना रखेंगे तो सभी बीमारियों से भी हम दूर रहेंगे। ज्यादातर लोग देखते हैं कि समय से पहले डायबिटीज हो जाती है, समय से पहले हम हाइपरटेंशन हो जाते हैं, समय से पहले हम या तो हम माल नरिश्ड हो जाते हैं, महिलाएं ज्यादातर माल नरिश्ड हो जाती है जिनको हम कुपोषित बोलते हैं, उन सब चीजों से भी बच पाएंगे जहां हम समय के अनुरूप और जो आहार की हमारी जरूरत है मात्रा को ध्यान में रखते हुए और आहार में गुणवत्ता के गुणों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सम्मिलित करेंगे तो हम अपना एक संतुलित आहार ग्रहण कर सकते हैं।
1: जैसे कि ज्योत्सना जी अभी अपन ने बात की है बुजुर्गों की, शिशुओं की और बच्चों की, कि हमें इन्हें किस तरह का आहार देना है। अगर युवाओं की बात करें,
0: युवा जैसे युवा वर्ग को अगर हम लेते हैं तो युवा वर्ग ज्यादातर समय अपने घर से बाहर बिताते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उनके पास समय का बहुत अभाव होता है, खाने के लिए उनके पास समय नहीं होता, और जब समय होता है तो ज्यादातर वो बाहर की चीजें खाना पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके लिए काफी सारी समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें कई सारी चीजें इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार जल्दी जल्दी उन लोगों को डायरिया जैसी प्रॉब्लम सामने फेस करने में आती है। तो उस कंडीशन में हमें ये चाहिए, युवाओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जब भी अपना आहार लेते हैं बाहर अगर वो कुछ खाना पसंद करते हैं तो सबसे अच्छा है कि बाहर फलों के जूस ग्रहण कर सकते हैं, और जब भी घर से निकलें तो अपना नाश्ता प्रॉपर तरीके से और लंच में प्रॉपर सभी पौष्टिक तत्वों को सम्मिलित करके लेने की आवश्यकता है उन्हें, क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है और ज्यादा कार्य करने के लिए उन्हें ज्यादा पौष्टिक आहार लेने की भी आवश्यकता रहती है।
1: जी बिल्कुल। अब हम ये चाहेंगे ज्योत्सना जी की थोड़ी सी जानकारी हम महिलाओं के भोजन के ऊपर भी डाल दें, क्योंकि वो अक्सर देखने में आता है कि वो अपने खाने पीने में बहुत एतलाली डालती हैं और खाती पीती नहीं है, तो किस तरह का भोजन उन्हें हमेशा लेना है जिससे कि वो अपने जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से करती जाएं और बीमार भी ना रहे।
0: बिल्कुल, महिलाएं चूंकि घर का स्तंभ होती हैं और उनके ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार होना बहुत आवश्यक है, और महिलाओं को चाहिए कि वो अपने आप नजरअंदाज ना करें, और सभी के आहार का ध्यान तो रखती हैं पर अपने आहार का ध्यान नहीं रखती, तो उनसे मेरा ये कहना है कि वो सबसे पहले जैसे ही सबका आहार बनाते हैं अपने लिए भी आहार की तैयारी रखें और अपने लिए भी प्रॉपर तरीके से आहार ग्रहण करें। जैसे अगर दूध नहीं पी सकते तो दूध से बनी हुई चीजें लीजिए, दाल अपनी आहार में जरूर सम्मिलित करिए, और हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरी होती हैं वो सभी अपने आहार में सम्मिलित करिए, और अगर कर सकते हैं तो फलों का सेवन और सलाद का सेवन अपने आहार में जरूर करिए, और जैसे हम रोटी बनाते हैं अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो चने का आटा रोटी में मिक्स करके हम उस तरीके की रोटी बनाकर खा सकते हैं, जिससे हमें शरीर को प्रोटीन और आयरन सभी चीजें हमें मिल पाएंगी, क्योंकि उन्हें आयरन और एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो महिलाओं को भी अपने आहार का बहुत बहुत ध्यान रखना।
1: बिल्कुल, यानी वो इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखें कि अगर उन्हें अपना घर अपने तरीके से चलाना है और स्वस्थ रहते हुए चलाना है तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के भोजन के साथ साथ अपने भोजन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, और काम से पहले आराम से बैठकर उसे जरूर लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, और बाद में ही अपने बाकी काम निपटाएं। सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव, आप आज हमारे कार्यक्रम में आई, आपने संतुलित पोषण आहार कैसे बनाए इस बारे में हमारी बहनों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

बहनों देखो, अबे आप सुन रही थी भेंट वार्ता, जाको विषय है तो संतुलित पोषण आहार, जाकी जानकारी दे रही थी सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव और उनसे बातचीत कर रही थी बहन निशा मोरे। तो बहनों देखो, आपने अब ज्योत्सना बहन से पूरे विस्तार के संग पूरी जानकारी सुनी। उन्होंने बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, युवा भैयन के बारे में और संग संग में हमारी बहनन के बारे में कि उन्हें किस तरह से आहार लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, पूरे पौष्टिक तत्वों से भरो जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, सभी तरह की चीज़ों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके बताए रास्ते पर ज़रूर चलेंगी। अब बहनों देखो, चर्चा तो आगे और भी करे हैं और मनोरंजन भी करवा हैं। पहले सुनत हैं, लेते हैं संदेश और सुनत है जी माधुरी शर्मा से लोकगीत।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

बहनो देखो, अब आप सुन रहे थे नौ नौ सौ लोकगीत माधुरी शर्मा से। बहनो अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना क्या है। बहनो जे गर्भवती और स्तनपान करावे वाली माताओं के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। बिनाहरो गर्भावस्था के समय माँ को नीको भोजन, आराम और उचित देखभाल की बहुत ही जरूरत होता है। तो ये दौरान कई महिलाओं को काम करवे में परेशानी भी होती है और परिवार पर खर्च को बोझ भी बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे सरकार आर्थिक सहायता देके माताओं को सहयोग करता है। मैंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाती है। और ये योजना को उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार करना है। मैंने ये योजना को लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लेनी चाहिए। वहाँ कार्यकर्ता पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देते हैं, जैसे आधार बैंक खाते और गर्भावस्था से संबंधित आवश्यक जानकारी की जरूरत भी पड़ सकता है। और हाँ बहनों, ग्रामीण भैया बहनों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि वे गर्भवती महिलाओं को पूरा सहयोग करें, उन्हें पौष्टिक भोजन दें, समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और जरूरी जांचन को नज़रअंदाज ना करें। और हाँ, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देवी की मजबूत नींव रखत है। इसलिए पात्र महिलाओं को योजना की जानकारी देवें और समय पर इको लाभ लेवे में उनकी मदद करें और एक स्वस्थ परिवार तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में अपन योगदान देवें। बहनों देखो, आप और उनको अपन और मनोरंजन तो करवाए हैं, पहले आज हम बताएंगे कछु व्यंजन। बहनों जब मौसम परिवर्तन होते हैं ना, तो खासकर जैसे सर्दी को मौसम हो, बारिश को मौसम हो, और बारिश के मौसम में तो मन ऐसा करता है कि कछु स्वादिष्ट खट्टो मीठो चटपटो हो। और मौसम के अनुसार देखो कछु विशेष चीज़ें भी आते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी के अनुसार, सर्दी के मौसम में सर्दी के अनुसार और वर्षा के मौसम में वर्षा के अनुसार। जैसे कि अब आ रहे हैं भुट्टा, और वो भी भुट्टा हरे हरे पीले पीले बढ़िया स्वादिष्ट, तो काहे ना अपन भुट्टे के व्यंजन बनाएं। वैसे तो भुट्टे को बहुत ही सरल तरीके से खा लेते हैं, बस अंगीठी में सेको, नींबू नमक मिलाओ और खा ले। लेकिन आज हम भुट्टे के कई तरह के व्यंजन बनाएंगे। तो बहनों उठाओ कागज कलम और लिखो व्यंजन भुट्टे की। तो सबसे पहले बहनों बताएंगे कि भुट्टे की चाट। तो भुट्टे के दाने निकालें, उबले हुए भुट्टे के दाने निकालें, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नींबू, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च और अच्छी तरह से मिलाएं और तुरंत परोसें और खाएं। ऐसे ही बहनों देखो बनाएंगे भुट्टे की सब्जी। तो भुट्टे के दाने निकालें, थोड़ा उबालें, कढ़ाई में तेल, जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मसाले खूब अच्छे से भूनें, फिर भुट्टे के दाने डाल के 5-7 मिनट पकाएं और स्वादिष्ट सब्जी तैयार। ऐसे ही मैंने बताएंगे हम भुट्टे के पकौड़े। तो भुट्टे के दाने

के दरदरे पीस लेवे। इमें बेसन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ी सी अजवाइन मिलाएं। फिर गरम तेल करें और छोटे छोटे पकौड़े तलें और स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़े चटनी या सॉस के साथ खाएं। ऐसे ही बहनों देखो भुट्टे का हलवा, तो भुट्टे को उबालें और दानों को पीस के घी में कछू देर तक अच्छे से धीमी आंच में सेकें। फिर वहाँ में दूध, चीनी डाल के धीमी आंच पर पकाएं। फिर इलायची डालकर गर्म या ठंडा होने के बाद परोसें और स्वादिष्ट हलवा तैयार है। ऐसे ही बहनों देखो बताएंगे अपन भुट्टे के पराठे। तो भुट्टों को उबले हुए दानों को पीस के उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक, मसाले मिलाएं और फिर नरम आटा गूंद के जैसे अपन आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही भुट्टे भर के बढ़िया लोई बना के घी या तेल में गरम गरम सेकें। बढ़िया स्वादिष्ट कुरकुरे पराठे तैयार हैं। मैंने देखो भुट्टे के व्यंजन बहुत ही अच्छे, स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। आप बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। अब बहनों देखो बारी है और मनोरंजन की, तो अपन देखो कार्यक्रम के अंत में चला चला सुनवाओ देते हैं आवा खरे से जो नौनी सी कजरी।

बहनों देखो, अब घड़ी इशारों कर रही है और चलने की बेरा हो गई है। हम अपनी बहन से फिर मिले, तब तक के लाने हमारी कल्पना बहन की राम राम।

सिर्फ डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे

0: रेडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: पानी सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल की कमी, भूजल का लगातार गिरता स्तर, जलवायु परिवर्तन और पानी की दिनों दिन बढ़ती मांग जैसी चिंताओं ने जल संरक्षण को भारत समेत दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ी प्राथमिकता बना दिया है। जल संरक्षण में जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी यानी कि JSJB कार्यक्रम लॉन्च किया था, जो भारत में जल स्थिरता के लिए समुदाय आधारित एक पहल है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस पहल के पिछले 2 सालों के सफर, जल संरक्षण में जन भागीदारी की बढ़ती भूमिका, और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री युगल किशोर जोशी। जोशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए।
2: मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत के जल संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी अहम क्यों है?
3: पानी, जैसा हम सब जानते हैं कि एक संसाधन ही नहीं है, बल्कि जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और मानवीय गरिमा का आधार है। और हमारे जैसे विशाल देश में, 140 करोड़ से अधिक आबादी के देश में और इतनी विविधता भरे देश में जल संरक्षण का कार्य, खासकर जब हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चातुर्मास की बात अब नहीं होती, अब 9 या 10 दिन में बारिश का पानी आ जाता है और पानी का पोल्यूशन के बारे में हर कोई चिंतित है, जानता है, तो ऐसे में यह जल संरक्षण का कार्य केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी नितांत आवश्यक है। जनभागीदारी मतलब समुदायों की भागीदारी हो, स्थानीय संस्थाओं की हो, पंचायतों की हो, नागरिक समाज की हो और हर नागरिक की सक्रिय सहभागिता हो। हमारी भारत की हाल की ही जो जल यात्रा रही है, खासकर 2014 के बाद, उसमें भी ये जल यात्रा सुनिश्चित करती है कि हम सिर्फ अब ढांचागत निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन आधारित जल सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं।
2: जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से पिछले 2 सालों में जल संचय जन भागीदारी जो ये पहल, इसमें कितनी प्रगति हुई है? इसके अंतर्गत कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं जो जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाए गए हैं?
3: जैसा कि आप जानती हैं, 6 सितंबर 2024 से यह आरंभ हुआ था और पिछले साल 2025-26 में बहुत व्यापक रूप से यह पहल आगे बढ़ाई गई और इसके केंद्र में समुदाय के स्वामित्व की भावना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत कम लागत वाली जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात है, जिसको हिंदी में भूजल पुनर्भरण कहते हैं, या वाटर कंजर्वेशन की जो संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और जो निष्क्रिय बोरवेल हैं, जो बोरवेल अभी सूख गए हैं, उनको दोबारा से रिवाइटलाइज करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक समाधान अपनाना, इन पर जोर दिया गया था। तो जैसा कि मुझे अनुमान है, जो JSJB के अंतर्गत जो पहला राउंड अभी 2 साल का हुआ है, 27 लाख से अधिक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मई 2026 तक करीब करीब 1.5 करोड़ से अधिक की संरचनाएं, और अभी सितंबर के शुरुआत तक के जो आंकड़े आए थे वो था कि 1.58 करोड़ से अधिक जो कृत्रिम भूजल का रिचार्ज है, उस तरह की संरचनाएं रिपोर्ट की गई। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये जागरूकता का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज इसको बहुत बड़े ढंग से अपना रहा है और ये एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
2: इस साल जून में जल संचय जन भागीदारी को एक और पहल, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके साथ जोड़ा गया और अब ये अभियान जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन कहलाता है। तो अभियान का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या सोच थी?
3: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद भारतवर्ष के इतिहास में अकेले और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जल को लेकर के एक चहुमुखी, एक होलिस्टिक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट या वाटर मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ, उसकी ओर ध्यान दिया। चाहे पिछले 25 वर्षों में उनका गुजरात का मुख्यमंत्रित्व का काल हो या पिछले 12 सालों से भारत के प्रधानमंत्री का, पानी और जल संरक्षण उनकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो जो जल संरक्षण के प्रयास हैं, यह 2014 से ही भारत भर में उनके विजन से आगे बढ़ते रहे हैं और इन वर्षों में हमने देखा है कि बहुत तरह की नई नई इनिशिएटिव्स उन्होंने आरंभ किए, चाहे अटल भूजल योजना हो, नमामि गंगा।

0: प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वर्ष 2019 में उन्हीं के नेतृत्व और प्रेरणा से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था, जो
1: जी
0: बहुत तरह की चीजों को, जिनमें कि जलागम विकास होता है, तालाबों का पुनरुद्धार होता है, जल स्रोतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, वर्षा के पानी का संचयन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ट्री प्लांटेशन और जो पारंपरिक हमारी ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे पुनर्जीवन दिया जाए, इन सब चीजों पर यह कार्यक्रम जल शक्ति अभियान 2019 में आरंभ किया गया था। उसके बाद अगले साल ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन के रूप में और अधिक सशक्त हुआ। इसमें बेसिकली पांच मोटी मोटी चीजों पर ध्यान था कि कैसे पानी का कंजर्वेशन किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइटलाइज करें, बोरवेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ये सब चीजें लेकर के ये चीज हमने उस समय से करनी आरंभ की थी। अब ये जन भागीदारी से इसे जोड़ देने से ये और अधिक सशक्त बनकर सामने आता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है और लोगों का जुड़ाव भी है।
1: जल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें समुदाय की भागीदारी हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में बावड़ी, टैंक, तालाबों और जोहड़ों के जरिए पानी जमा करने और बांटने के तरीके विकसित किए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि पानी की सुरक्षा हमेशा एक सामूहिक जिम्मेदारी थी। तो JSJB पहल के क्रियान्वयन और उसकी सफलता में हमारी पारंपरिक प्रणालियों और स्थानीय ज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है?
0: कुछ वर्ष पहले मैंने इस पर अध्ययन किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज या जो पानी के प्रबंधन की जो मैं कहूंगा लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजीज हैं वो सदियों सदियों से चलती रही हैं। चाहे आप उत्तराखंड जाइए, चाहे आप लद्दाख जाइए, या आप अरुणाचल चले जाइए, या अंडमान जैसी जगहों पर जाइए, हर क्षेत्र ने अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से इस तरह की टेक्नोलॉजी पुनर्जीवित की। अब अफसोस की यह बात है कि जब हमने पूरी तरह पाश्चात्य जो ये वाटर कंजर्वेशन की चीजों का, खासकर यह भावना आ गई कि सरकार ही इन सब का प्रबंध करेगी, तो लोग इससे विमुख हो गए, जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी। अब यह जो नया JSJB अभियान है, इसमें कोशिश यह है कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी ना भुलाया जाए, उनका भी जहां जहां हो समुचित उपयोग किया जाए और उनका सशक्तिकरण नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है इस देश में कि बिना जन भागीदारी के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। वो हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा, वो हम जल जीवन मिशन में भी देख रहे हैं, वो हमने आजादी के आंदोलन में भी देखा था। तो इस मिशन में हम दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, पारंपरिक टेक्नोलॉजीज को भी और नई टेक्नोलॉजी को भी।
1: इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया और डेटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग की भी सिफारिश की। इसके साथ ही इसी साल जून में जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश में जल संसाधन प्रबंधन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशन के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए। तो पारंपरिक जो हमारी जानकारी है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी समुदायों को पानी बचाने और उसके प्रबंधन के प्रयासों के लिए कितनी जरूरी है और इसमें कैसे मदद कर सकती है?
0: देखिए, जैसे अपने घर का हम बजट बनाते हैं, घर में कितनी कमाई हो रही है और घर का खर्चा कितना है, इसी तरह भविष्य में अगर हमें क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजें देखनी है तो हमें देर सबेर पंचायतों में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर राज्यों में या फिर पूरे देश का अंततः वाटर बजट बनाना पड़े। अब अगर हम जब वाटर बजट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक या एक पंचायत के पास कितना पानी उपलब्ध है। पानी की उपलब्धता सतह पर भी हो सकती है, पानी की उपलब्धता ग्राउंड वाटर पे भी होगी और पानी की उपलब्धता वर्षा के जल से भी हो या जो भी और तरीकों से पानी आ सकता है। इसके लिए कि हमें सही सही क्वांटिटी पानी की अवेलेबिलिटी की पता हो, बिना टेक्नोलॉजी के प्रयास के नहीं हो सकती। आपने बहुत सुंदर बात करी इसरो और बाकी चीजों की, कई तरह तो भुवन आदि पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध भी हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। जल शक्ति मंत्रालय के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की सूचना को पब्लिकली मुहैया कराते हैं। दूसरा पहलू है कि कितने जल का कहाँ पर प्रयोग हो रहा है। मैं अपने घर में कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर तक कितना पानी आ रहा है पीने का, मेरे लिए जो पशु हैं किसानों के लिए उनमें कितना यूज हो रहा है, कृषि में कितना यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है। जब तक इस सब का पुख्ता डेटा हमारे पास नहीं होगा, जो कि मेरा ख्याल है डेटा कन्वर्जेंस से नीचे से ऊपर तक सही डेटा आने से, टेक्नोलॉजी या IoT बेस्ड सेंसर सिस्टम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें करना पड़ेगा, उसके बिना हम वाटर सिक्योरिटी या वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा पानी के बारे में जो डेटा है वो न सिर्फ सही हो बल्कि समय पर भी हमें मिले, ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सके।
1: जोशी जी, हम चाहेंगे कि आप JSJB पहल से जो जुड़ी हुई कुछ सफलता की कहानियां हैं वो हमारे साथ साझा करें। इन 2 सालों में जब से ये पहल शुरू हुई है, विभिन्न राज्यों में ये चल रही है, किस तरह की सफलता की कहानियां आगे आई हैं?
0: यहाँ पर दो चीजें तो मैं कहना चाहूंगा।
1: जी
0: पहली बात कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जमीनी स्तर पर लोग कैसे आत्मसात करते हैं। जहां तक जल संरक्षण अभियान की बात है, ये 2019 से ही, जब मैं आरंभ में भी इससे जुड़ा था, मेरा ये देखने में आया है कि कई क्षेत्रों में, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की समस्या है, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, या इवन लद्दाख के भी कुछ
1: जी
0: क्षेत्र हैं, वहां पर महिला सरपंचों ने खासकर इसमें बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव वालों को जागरूक किया है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनते हैं, कई तो नए जो नवयुवक सरपंच हैं उनकी प्रेरणा से जानवरों के लिए अलग तालाब बन रहे हैं, मनुष्यों के पानी के इस्तेमाल के लिए अलग बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन Phase 2 के अंतर्गत अब लोग इस पर जागरूकता लेने लगे हैं कि कैसे जो यूज्ड वाटर है, जो किचन से या आपके बाथरूम से आ रहा है, उसका कैसे अलग प्रबंधन करें, सोखपुट की व्यवस्था करें, ताकि आपका भूजल जो है वो प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो अगर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटा दिया था कि
1: जी
0: लाखों चेक डैम्स बन रहे हैं, लाखों बावड़ियां बन रही हैं, एक तो बड़ा आता, मैं आपको नीति आयोग का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने एक सरोवर समृद्धि करके एक कार्यक्रम आरंभ किया ब्लॉक के सहयोग के साथ।
1: जी
0: तो 1 साल से कम समय में बहुत कम लागत में गांव वालों की ही मदद से हम लोगों ने करीब 800 के आसपास 1 एकड़ से बड़े साइज की वाटर बॉडीज का पुनरीकरण किया। तो इस तरह की स्टोरीज अगर आप जाएंगी तो पूरे देश भर में आपको मिल जाएंगी।
1: जोशी जी, पानी बचाना महज सरकारी अभियानों से जुड़ी कोई चीज ना होकर नागरिकों और समुदायों के लिए रोजमर्रा के व्यवहार का एक नियमित हिस्सा कैसे बन सकता है?
0: एक तो काम कहते हैं IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन।
1: जी
0: जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में या घरों में ही पानी के मूल्य के बारे में जागरूक नहीं करेंगे कि पानी अनमोल है, जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसकी शुरुआत तो घर से ही हो जाती है कि हम बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें एक उदाहरण बनकर दिखाएं कि पानी का बेजा इस्तेमाल न करें या अपव्यय न करें। यही बात खेती में लागू होती है कि कैसे मैं कृषि में वाटर यूज एफिशिएंसी ला सकूं। सरकार इतने इंसेंटिव देती है, आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात है या स्प्रिंकलर से सिंचाई की है या ड्रिप इरिगेशन है, बहुत तरह की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो सरकारी जो इंसेंटिव्स हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, इनके साथ कैसे हम गाँव वालों को, कैसे एक एक जन को जोड़ सकें, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज होगी लोगों को प्रेरित करने की। और सबसे बड़ी बात तो पानी का मोल पहचानने की ही है।
1: जी पिछले 2 साल में जल संचय जन भागीदारी जो एक अभियान है काफी सफल हुआ है। हमने अभी अभी आपसे बात की, इसने काफी बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन फिर भी देश में जन भागीदारी के अंतर्गत जल संचयन और प्रबंधन के प्रयासों को बड़े पैमाने पर फैलाने में क्या अब भी कुछ बाधाएं हैं, और ये किस तरह से इन्हें पार किया जा सकता है?
0: सबसे बड़ी बाधा तो मुझे लगता है अब हमारा जो पंचायत स्तर पर है, वहाँ लोग कैसे, जो पंचायत स्तर पर जिनके हाथों में नेतृत्व है या जो जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं, कैसे वह इसको आम जन से जोड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2014 से पानी से लेकर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं,
1: जी
0: उनसे एक बहुत बड़ा विकास का संदेश निकलता है। वो संदेश ये है कि जो जल संरक्षण है वो केवल पर्यावरण का ही सवाल नहीं होता। आपके पास पानी का अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ये आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है, ये सामाजिक न्याय देता है, ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करता है और महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। इसलिए ये सारे जो कार्यक्रम है, अगर आप मिला जुला कर देखें तो ये सिद्ध करते हैं कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तब परिणाम कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं।
1: युगल किशोर जोशी जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्स डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार श्रोताओं, डगर विकास की ये कार्यक्रम आज केंद्रित है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन पर। भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत संचालित 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा करना, उसका पुनर्वास करना और देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वनों को बढ़ाना है। इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के संदर्भ में जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं नागदा से प्रकाश जैन।
1: श्रोताओं नमस्कार। हमने विकास तो बहुत किया पर एक चीज मानव भूल गया, वो है प्रकृति। हमने सड़कें बनाई, बिल्डिंगें बनाई पर पेड़ काट दिए। नतीजा क्या हुआ? गर्मी बढ़ गई, बारिश कम हो गई और हवा खराब हो गई। इसी समस्या को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया है। इस मिशन के 4 बड़े लक्ष्य हैं: हरा भरा भारत, देश में 33% हरियाली लाना है। अभी भारतवर्ष में 24% हिस्सा ही ऐसा है जहां पर हरियाली है। और इसमें एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आंकड़ा भी, इसमें भी जो बढ़ोतरी हुई है वो पिछले कुछ सालों में हुई है। इसके पहले जो देश में हरियाली का प्रतिशत था वो 23% था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करने के बाद से ही लगातार आम जनमानस पर्यावरण को हरा भरा रखने में और पेड़ लगाने की श्रृंखला में जुटे और इसका नतीजा हुआ कि वर्तमान में अब भारत 24% हरियाली वाला देश हो गया है। बिगड़े जंगल को सुधारना, सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाना बल्कि जो जंगल खराब हो गए हैं उन्हें फिर से हरा करना, ये इस मिशन का दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है कार्बन कम करना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। चौथा है आदिवासियों को रोजगार। जंगल में शहद, आंवला, तेंदुपत्ता जैसे चीजों को स्थानीय लोगों को रोजगार देना, यह भी एक लक्ष्य इस मिशन में शामिल किया गया है। सरकार इसको लेकर गंभीर है और इसको लेकर कई योजनाएं सरकार ने शुरू की है, जैसे एक पेड़ माह के नाम अभियान। 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य इस अभियान के तहत लिया गया है। सरकार ने प्रत्येक शहर में एक हरित वन हो, इस उद्देश्य को लेकर नगर वन योजना का शुभारंभ किया है। जंगल के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड सरकार ने रिजर्व किया है। छत्तीसगढ़ में तो विशेष काम हो रहा है, हमारे सरनगढ़ क्षेत्र में भी सामुदायिक वनीकरण चल रहा है। मित्रों, किसी भी लक्ष्य को पूर्ति करने में अकेली सरकार सहायक नहीं हो सकती। सरकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोडमैप तय कर सकती है, लेकिन उस रोडमैप पर निरंतरता के साथ लगातार काम करने का काम आम जनमानस को करना पड़ेगा, तभी सरकार की कोई भी नीति सफल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस महानतम अभियान में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं। तो मित्रों, कम से कम हम अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। घर में पीपल, नीम और तुलसी जैसे पौधों को भी हम लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग कम करें। कपड़े को थैले को अपनाएं। हम अगर बाजार जाते हैं तो कपड़े के थैले को लेकर जाएं, ताकि बाजार से कोई भी सामान हमको पॉलिथीन में नहीं लेना पड़े। पानी बचाएं, क्योंकि पानी है तो पौधा है, इसलिए हमको पौधारोपण के साथ साथ, पेड़ लगाने के साथ साथ पानी बचाना भी आवश्यक है। अंत में मैं यही कहूंगा, ग्रीन इंडिया मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हरा भरा रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद।

0: श्रोताओं, आपने जाना ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। इस मिशन के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। इस मिशन के तहत स्थानीय समुदायों, ग्राम वन समितियों और पंचायतों को वनों के संरक्षण और प्रबंधन में सबसे आगे रखना है। इसमें केवल अलग अलग जंगलों पर ध्यान न देकर पूरे भूदृश्य जैसे बंजर भूमि, कृषि भूमि और जलग्रहण क्षेत्र के एकीकृत विकास पर जोर दिया जाता है। यह मिशन वनों के संवर्धन के साथ साथ स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीण समुदायों के लिए गैर इमारती वन उपज के जरिए रोजगार और आय के साधन पैदा करता है। आइए इस मिशन के बारे में किस प्रकार से कृषि में स्टार्टअप किया जा सकता है जानते हैं कृषि महाविद्यालय इंदौर के डीन डॉक्टर भरत सूद से।
1: नमस्कार किसान भाइयों, अभी मुद्दा ये चल रहा है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी नौकरी को लेकर के काफी परेशान रहती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि हमारे देश के युवा जितने भी हैं वो नौकरी मांगने वाले न होकर के नौकरी दाता बने। इस परिपेक्ष में मैं आपको बताना चाहता हूं कृषि महाविद्यालय इंदौर के अधिष्ठाता के तौर पर कि जो भी देश में शिक्षा प्रणाली चल रही है उस शिक्षा प्रणाली में हमारे देश में हमारे जो कृषि महाविद्यालय और कृषि विषय के छात्र हैं उन छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। उन छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे छात्र हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में देश में योगदान देने के लिए अपना कदम रखे हैं। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान और कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी उद्योग हैं वो 90% कृषि आधारित होते हैं और कृषि में अपार संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि अगर आप स्टार्टअप्स बनाना चाहें तो कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की अपूर्व संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप देखेंगे बड़े बड़े होटल्स में, मॉल्स में या अलग अलग जगह पे आप जाएंगे तो आपको खाने की अलग अलग वेराइटियाँ मिलती हैं। उन वेराइटियों में जैसे मशरूम का हो गया तो आप बहुत आसान तरीके से हमारे महाविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेकर के और आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। आगे अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो आप पादप रोग के चिकित्सक के रूप में भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने जो चिकित्सक हैं इंसान के रूप में दवाई देते हैं तो हम लोग जाते हैं तो उनसे लेते हैं तो उस संबंध में आप एक प्लांट हेल्थ के रूप में भी अपना चिकित्सक का काम करा सकते हैं। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में

अनेक स्टार्टअप्स की योजनाएं हैं, आप देखेंगे और सोचेंगे तो आपको तमाम तरह की चीजें निकल करके आएंगी बीच बीच में। बस आपको जागरूक होना है, मन से चीजों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम कृषि शिक्षा को पढ़ लिए और जा करके कोई काम कर रहे हैं। आप खेती की बात करिए, खेती की बात में आप ले लीजिए स्टार्टअप्स के रूप में, आप देखिए बहुत से ऐसे हमारे IITian हैं और MBA जो मैनेजमेंट कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों को आप देखेंगे कि अमेरिका में और बाकी दूसरी जगहों पे जा करके ढेर सारे चीज कर रहे हैं। यहाँ पे आ करके नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी का आपका चल रहा है, डेयरी में भी आप काम कर सकते हैं। डेयरी में ऐसा नहीं है कि केवल पशुपालन ही करना है, पशुपालन के साथ में पशु से जो मिल्क प्रोडक्ट के रूप में चीजें निकल के आती हैं, उस मिल्क प्रोडक्ट से बाजार में आप देखिए तमाम तरह की जो हैं प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो आप अपने यहाँ बेहतर लोगों के मन में आकर के और उनके विश्वास को लेकर के और शुद्ध प्रोडक्ट तैयार करके और अपना डेयरी का भी कर सकते हैं, पिगरी हैं, पोल्ट्री हैं, इस टाइप की चीजें भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये अगर कोई संस्था चला करके कोई आदमी प्रोडक्ट कर रहा है, कोई ये बना लिया है, तो उससे बायबैक कर सकते हैं। उनके जो मिल्क हैं, उनके जो पोल्ट्री के मुर्गी हैं, अंडे हैं या मशरूम हैं, इनको ले करके आप प्रोसेसिंग यूनिट भी बना सकते हैं। स्टार्टअप्स के कई हैं। आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है, और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि उस जगह पे स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं तो वहां की तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं कि जो स्टार्टअप्स या जो प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जहां आप अपनी यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं उस जगह पर कितनी डिमांड है, इसको भी देखना है। इसके साथ ही आपकी इच्छा क्या है, आप मन से क्या चाह रहे हैं कि किस क्षेत्र के स्टार्टअप्स को लेकर के आप आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि मन में अगर आपके विश्वास है, भाव है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित मान करके चलिए कि अगर उस क्षेत्र का स्टार्टअप्स अगर आप बनाएंगे और उसमें अगर आप काम करेंगे तो आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी ही करते जाएंगे, अनमने से नहीं। और दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को कि अनमने से कभी भी स्टार्टअप या कोई उद्योग या धंधा शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में भाव है कि हम इस क्षेत्र में जाएं तो उसी क्षेत्र में जाएं, देख करके न जाएं कि कोई दूसरा व्यक्ति एक किसी विशेष क्षेत्र में कर रहा है तो उस क्षेत्र में जाएं। तो ये आप लोगों की अपार संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। हमारे कृषि महाविद्यालय में अगर किसी को जरूरत हो तो हमारे यहाँ इससे संबंधित वैज्ञानिक भी हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं कि भारत सरकार की ढेर सारी स्किल इन्हांसमेंट की योजनाएं हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में तमाम तरह के कोर्सेज हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्किल इन्हांसमेंट के माध्यम से हम लोग अपने विद्यार्थियों को सिखाते भी हैं, केवल पढ़ाते नहीं हैं, उनको खेत में लेकर के हम सिखाते भी हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म का एक गीत, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, उषा टिमोथी और साथियों की आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और लीजिए सुनिए ये गीत।

हिमालय की गोद में ये गाना भी आपने सुना, अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्री 420 का एक गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत शैलेंद्र ने लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा, ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी है। ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही ये ट्रैफिक,
2: आकाशवाणी है ना, बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो
3: आकाशवाणी के साथ जुड़ी ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
1: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी भोपाल से जरूर सुने हमारा उर्दू कार्यक्रम कहकशां प्रत्येक मंगलवार रात्रि 10 बजे, जिसमें आप गजलों पर आधारित कार्यक्रम आबशारी गजल सुन सकते हैं, साथ ही जानकारी से परिपूर्ण विशेषज्ञों की वार्ताएं और भेंट वार्ताएं। तो सुनना ना भूलिए हमारा कार्यक्रम कहकशां आकाशवाणी भोपाल से। डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर या मीडिया वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। तो सुनना न भूलिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां प्रत्येक मंगलवार रात्रि 10 बजे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जहाँ पर, और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट दूसरा

0: 166,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
1: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की

0: दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres.

0: Department headquarters, Chief Minister Dr. Mohan Yadav has said that guilty will not be spared. The action was following the death of 10 people after consuming suspected poisonous liquor in Banda Tehsil of the district. This is Akashvani. You are listening to News at 9.
1: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Tensions between Iran and the United States continue to escalate, with both sides carrying out strikes against each other amid growing military confrontation in the region. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, today said its aerospace forces had targeted a U.S. aircraft carrier and a destroyer with several ballistic missiles. The IRGC claimed the vessels had harassed Iranian ships and participated in naval blockade against Iran. The escalation follows overnight strikes by the IRGC Navy, which said it had targeted three oil tankers in the Strait of Hormuz and three U.S.-affiliated vessels elsewhere. Iran described the attacks as retaliation for U.S. strikes on Iranian tankers earlier in the day. The seven core OPEC Plus countries have decided to keep its oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision was taken during their virtual meeting held today to review the global market conditions and outlook. OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting came amid continued disruptions to oil exports, including those caused by the conflict involving Iran and the U.S., and disruptions around the Strait of Hormuz. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries and heads of international organizations. As part of the security preparations, Delhi police today conducted motor carcade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji Ting and Ring Xiang Yu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. It is also the Indian pair's second title of the season. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. Three persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a three-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines four-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives. Calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China's Masters. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साल खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मनशियात के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल जिंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपोलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शेंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और बहुत से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली की वज़ीरे आला रेखा गुप्ता ने जाए हादसा का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक 11 अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत पुरानी थी और इसकी तजदीद और तामीर का काम जारी था। मोहतरमा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, खा वो इमारत का मालिक हो या कोई अफसर।
3: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
2: वज़ीर आला ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और हर एक की तवज्जो लोगों को महफूज तरीके से बचाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू जाए हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि तेज तर बचाव कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ज़रूरतमंदों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सके। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारत मुनहदिम होने के इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम जाए हादसा पर काम कर रहे हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीरे आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल से बातचीत करके सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि मकामी इंतजामिया और NDRF करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं और जख्मियों को सभी तरह की जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। NDRF के IG NS बुंदेला ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि NDRF की दो टीमें जो अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं जाए हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
4: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
2: इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक 6 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि मकामी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि यह इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी और हादसे के वक्त इमारत के तहखाने में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने का एक 3 साल खाका जारी किया। उन्होंने नशीले मादों की रोकथाम की तालमेल के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी सतह की एक मुहिम के लिए कहा। जनाब शाह गोवा के अपने 3 रोज़ा दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2019 से कानून लागू करने, एजेंसियों के माबैन एक दूसरे को सुराख फराहम करने, माली तहकीकत और बाज़ आबादकारी के इकदाम को मुस्तहकम बनाया है।
5: 2014 से 2024 तक की मुद्दत में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले मादे जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1,89,000 करोड़ रुपए है जबकि 48

0: लाख 66,000 किलोग्राम नशीले मादों को खत्म किया गया।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: जनाब शाह ने कहा कि इस खाके के चार सुतून हैं, सुराग रसानी और कार्रवाई पर मबनी कानून का नफाज, पेशगी मालूमात और मसनूई तौर पर तैयार किए गए नशीले मादे, मांग और नुकसान में कमी, ने सलाहियत साजी और तालमेल।
1: चार स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: हुकूमत ने अगले 3 साल में नशीले मादों के बैन अल-अक़वामी और बैन रियासती सतह के 100 नेटवर्क्स को खत्म करने, नशीले मादों के कारोबार में मुलविस 100 फरार अफराद को भारत लाने और नशीले मादों से मुतालिक 100 खुफिया लेबोरेटरीज को तबाह करने का मकसद तय किया है। बाद में वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इन्हदाम की जगह से बचाए गए और तिब्बी इलाज के लिए लाए गए अफराद से मुलाकात के लिए एम्स के ट्रोमा सेंटर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी तलबा का इलाज जारी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को हिदायत दी कि वो हर जरूरी मेडिकल इमदाद को यकीनी बनाएं। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मुतासरीन के कुनबों के साथ भी रबते में है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो सेहतमंद और उसूल पसंदाना जिंदगी गुजारें, नशीले मादों से दूर रहें और नशा मुक्त भारत की तामीर में ताउन दें। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें और इसे हद से ज्यादा वक्त न दें। वह आज गुवाहाटी में सेहत उलूम की श्रीमंत शंकरा देव यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे।
2: And restrict your social media usage. Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को उनकी पेशेवराना जिंदगी से आगे बढ़कर तैयार करें और जमहूरियत और समाज के लिए जिम्मेदार शहरी बनाने पर तवज्जो दें। आज गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्वालिटी तालीम, तहकीक और किरदार साजी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया ने आला तालीम में खवातीन की बढ़ती हुई हसूलियाबियों को उजागर करते हुए इसे खुशाइन तब्दीली और नारी शक्ति का इजहार करार दिया। नायब सदर जमहूरिया आज से आसाम के दो रोजा दौरे पर हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और जमीनी उलूम के मरकजी वजीर मुल्कत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के तेजी से वसी होते हुए स्टार्टअप इको निजाम को मेट्रोपोलिटन मरकजों से आगे ले जाने और साइंस, स्टार्टअप्स और सनत के माबेन मजबूत तर राबते तश्कील देने के लिए कहा है, ताकि मुल्क में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज के लेबोरेटरीज से लेकर मार्केट प्लेस तक के सफर में तेजी लाई जा सके। कोलकाता में आज छठे राइस कॉन्क्लेव 2026 के इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बात की जरूरत बढ़ती जा रही है कि दूसरे और तीसरे दर्जों के शहरों की इख्तराई सलाहियतों को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के 50-60% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का ताल्लुक मेट्रो शहरों से नहीं है। उन्होंने कहा कि इनमें से 15% से ज्यादा कारोबार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के नौजवान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियों में अब भी तुगयानी है और 24 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। कानपुर में 4 अफराद हलाक हुए हैं और बदायूं में शदीद बारिश के सबब हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इंतजामिया ने गारा और खाकरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। श्रावती जिले में राप्ती नदी के पानी की सतह में इजाफे के सबब कटाव हुआ है और आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने

0: आज चित्रकूट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया और रामघाट का जमीनी मुआयदा भी किया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा 800 कुनबों को इमदादी सामान फराहम किया और बेघर हुए कुनबों को मुतबादिल जमीन के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वजीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गंगा में बढ़ती हुई पानी की सतह के पेश नजर नशीबी इलाकों में खसूसी निगरानी रखी जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज गिद्धों के तई बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर पंचकुला में एक कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में जनाब भूपेंद्र यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत किसी मखसूस नस्ल के जानवर के तहफ़ तक महदूद रहने के बजाय एक जामे और इको निज़ाम पर मबनी मॉडल के माहौलियाती तहफ़ के नुक़ नज़र पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कोयले की वजारत ने मीडिया की उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें पंजाब के हरारती प्लांट्स में बिजली की पैदावार की कमी की वजह मरकज की तरफ से कोयले की नाकाफी सप्लाई करार दी गई थी। वजारत ने वजाहत की कि पंजाब के बिजली प्लांट्स को कोयले की वाफर दस्तियाबी कराई गई थी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता रोज उनकी तकरीरी को मंजूरी दी थी। जस्टिस त्रिपाठी इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 7 कलीदी ओपेक प्लस मुल्कों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने आज वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसका मकसद आलमी मार्केट के हालात और मजमुई तौर पर खाके का जायजा लेना था। उन्होंने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की। यह मीटिंग ईरान और अबनाए हुरमुज के आसपास तनाज़े में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदाद में लगातार रखनांदाजी के पस मंजर में मुनक़िद की गई। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का डबल्स का खिताब जीत लिया है। शिंजेन में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन की ही जिंगटिंग और रिन जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13 और 21-17 से शिकस्त दी। चाइना मास्टर्स में भारत की पहली खिताबी जीत है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं। बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साला खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क के खात्मे के लिए 4 निकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल जिंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर भी जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निज़ाम को मेट्रोपोलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शिंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक, राखी गढ़ी, मिट्टी के नीचे सोया, महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा की हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह

0: किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
2: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहाँ से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहाँ पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
0: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखी गढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखी गढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
1: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके 4 द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हांसी हिसार किसवाल मातर श्याम घाघरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
0: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: नदी के किनारे है अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके जहां तक सरस्वती संगम होता था, ये सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दशरथ भक्त्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदी ही। इसका मतलब है कि दशरथी आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियां थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
0: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
4: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 एवं 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
1: राखीगढ़ी से कई हड़प्पाकालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
2: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिली।
1: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
4: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई है। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
0: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग

0: के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
1: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार

0: ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहां से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
2: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है उसमें इसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियंस बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा। तो उससे पता चलता है कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोग हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
3: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुराई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और

0: घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती है, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
2: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
3: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान विश्वद्रती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया भी राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल सब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, दशरथवती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए, जब साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे गए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विखंड हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था। जो वहाँ पॉलिटिकल उठा पता भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले विशेषकर टीला नंबर 4।

0: जो इस चीज के जो है साधन है उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं, और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं, ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा, और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
1: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
2: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी खास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है, और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
3: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
1: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
4: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं, और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं, और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया है राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है, और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
3: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा। राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
5: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, पर राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं, और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत

0: ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे, जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका यू नो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरपन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी, इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
0: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें, और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है, और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल

0: लीजिए, अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, देवी रमे मामवाब्दि तनये, इन द राग वसंता, सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनी आवर्तनम played on the मृदंगम by ए राधेश and on the घटम by शरद कौशिक।
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru and the broadcast came to you from Akashvani Delhi. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
3: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
5: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
6: We have prepared a roadmap to make India drug-free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on 4 key pillars. First, intelligence and operations-based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity.